सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 मई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फालता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया रद्द करने का असाधारण कदम उठाया है। इस विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को नए सिरे से वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर चुनावी अपराधों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन की खबरों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन को जानबूझकर काले टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदान में बाधा आई। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 बूथों पर कल पुनर्मतदान हुआ। मगरहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर वोट डाले गए। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी परिस्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। तमिलनाडु में कल सुबह 8 बजे से सभी 62 निर्धारित मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए कुल 10,545 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इनके सहयोग के लिए 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के मौजूदा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे तक समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद खत्म करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में आयोजित शौर्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्ण अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाना था। इन हमलों के कारण 4 दिनों तक भीषण झड़पें हुई, जो बाद में 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति के साथ समाप्त हुई। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने युद्ध के मैदान में और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सेवा में साहस का प्रदर्शन किया है। उन्होंने नागरिकों से देश के गुमनाम नायकों की कहानियों और बलिदान को दूर दूर तक साझा करने का भी किया। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम अनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। श्री मोदी ने उनके नए कार्यकाल के बेहद उपयोगी और प्रभावशाली होने की भी कामना की है। रोहित जैन को रिजर्व बैंक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन केंद्रीय बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्यरत हैं। वे 3 मई 2026 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।
0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

जिनके मन में सत्य का वास है, उन्हें प्रभु की खोज में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर तो सदा सर्वदा सत्य स्वरूप में उसके मन में विराजमान रहते हैं।

गुरु को देव रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से आप सुन रहे हैं वंदना कार्यक्रम।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 8700014242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात direct to home की और direct to heart?
3: ये सारे चैनल्स होंगे free to air, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात direct to heart की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।

परमात्मा को पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है अमरवाणी।

0: ललिति भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति नाथेति नागशयनेति जगन्निवासे त्यालापिनं प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद।
1: हे मुकुंद, कुछ ऐसा कर कि जिससे मैं प्रतिदिन हे श्री वल्लभ, हे वरद, हे दयानिधान, हे भक्त प्रिय, हे जन्म मरण का नाश करने में कुशल, हे नाथ, हे नाग शयन, हे जगन निवास आदि आदि रटता ही रहूं।
0: मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्।
1: हे मुकुंद, सिर झुकाकर नमस्कार करके केवल इतनी ही एक चीज मैं तुझसे मांगता हूँ कि तेरी कृपा से मैं अपने किसी भी जन्म में तेरे चरण कमलों को न भूलूं।
0: कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः।

0: नमस्ते।
1: हे कृष्ण, मेरा चित्त रूपी मानस हंस आज ही तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, क्योंकि प्राण निकलते वक्त जब कफ वात और पित्त से कंठ रुंध जाएगा तब तेरा स्मरण कैसे हो सकेगा।
0: भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्रत्राण भारावृतानां विषम विषयतोयि मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। भव जलधिगतानां द्वंद्ववाताहतानां सुत दुहित्रिकलत्रत्राण भारावृतानां विषम विषयतोयि मज्जताम् अप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्।
1: भव सागर में पड़े हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूपी वायु के थपेड़े खाने वाले पुत्र पुत्री पत्नी आदि की रक्षा के भार से दबे हुए नाव के अभाव में विषम विषयों के पानी में गोते खाने वाले मनुष्यों के लिए विष्णु रूपी नाव ही एक शरण है।
0: भव जलधिम मगाधम दुस्तरम निस्तरेयम कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वं सरसि जदृशि देवे तावकी भक्तिरेका नरकभिधि निषण्णा तारयिष्यत्यवश्यम्। भव जलधिमगाधं दुस्तरं निस्तरेयम् कथमहमिति चेतो मास्मगाह कातरत्वं सरसि।

0: हे चित्त, तू ये डर मत रख कि इस अगाध और दुस्तर भवसागर को मैं किस तरह पार कर सकूंगा। यदि कमल से नेत्रों वाले और नरकासुर का नाश करने वाले देव में तेरी अनन्य भक्ति होगी तो वो तुझे जरूर पार लगाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे अमरवाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। सुबह 6:40 पर मानस गान और सेहतनामा का समय है 6:50 पर। आज आपको हम अरुचि के बारे में जानकारी दी जाएगी। बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंच दिन में 12:00। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी रंजना मिश्रा और दिन में 1:15 पर नारी जगत कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मीडिया में महिलाओं की भूमिका और फेक न्यूज़ पहचानने के तरीके, इस विषय पर बातचीत करेंगी लता चंदोला। रात्रि 8:00 रजनीश पांडे की वार्ता शो सुनिएगा। विषय रहेगा अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 7:31 पर पूर्वा सुहानी कार्यक्रम के, और हिट सुपर हिट्स का समय रहेगा सुबह 8:45 से। हेलो फरमाइश, ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे अन्नपूर्णा सिंह सुबह 10:50 पे। गीतांजलि का समय है सुबह 11:30 और गाने सुहाने 12:30 पे। गीत मंजरी 12:45 से। श्रोताओं, सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:50 दिन में 12:55 पे और रात्रि में 8:15 से। आज के कलाकार हैं सदा ठाकुर और मासूम ठाकुर। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे और साथ ही रात्रि 10:00 रविवासी अखिल भारतीय कार्यक्रम संगीत सभा, ये हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है, उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने, उसके लिए क्या अंतर पड़ता है? वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्स और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सेहतनामा।
1: में आज का विषय है अरुचि यानी भूख का न लगना। अधिक घी, तेल एवं मसालेदार भोजन से हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रिया को काफी नुकसान होता है। भोजन ठीक से पचता नहीं और मल आंतों में एकत्र हो जाता है। इसके कारण अरुचि की विकृति उत्पन्न होती है और रोगी को कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ तक कि उसे भोजन की गंध भी कई बार बहुत अच्छी नहीं लगती है। इससे बचने के लिए पहले तो अपने भोजन में ऐसी चीज़ें आप इस्तेमाल करें या ऐसी चीज़ों का समावेश करें जो पेट के लिए बहुत ही लाभदायक हों। जैसे ये खीरा हुआ, मूली हुआ, टमाटर हुआ, गाजर का सलाद हुआ, यानी जिस मौसम में जो भी चीज़ आपको मिल रही हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़ासतौर से सलाद ज़रूर खाएं और उसको जब आप सलाद बनाएं तो उसमें काली मिर्च और काला नमक पीस कर मिलाएं और ऊपर से नींबू अगर आप मिलाएं उसमें तो ये बहुत ही हितकर होगा। और अगर आप इसका नियमित सेवन करें इससे पेट ज़रूर साफ रहेगा और अरुचि की विकृति अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा नींबू और अदरक का रस, दोनों का रस बराबर 5 ग्राम लें, यानी नींबू का 5 ग्राम रस और 5 ग्राम अदरक का रस, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें। इसका सेवन करने से भी अरुचि की जो विकृति होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा नींबू के रस में अदरक के बारीक बारीक टुकड़े काट लें और किसी कांच के बर्तन में मिलाकर रख लें। उससे ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आपके पास तत्काल चीज़ उपलब्ध है। आप जिस तरीके से हम अचार डालते हैं उसी तरीके से आप करिए कि जो अदरक है उसके बारीक बारीक टुकड़े काट लीजिए, उसी में आप चाहे तो अदरक का रस मिला लें या अदरक जो ये नींबू है उसका रस मिला लें या नींबू को काट के उसके साथ थोड़ा सा रस निचोड़ के उसी में डाल दें तो ये आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। और बजाय सादे नमक के उसमें सेंधा नमक डाल के रख लें। और जब भी आपको इस तरीके की परेशानी हो तो ज़रूर मुंह में एक टुकड़ा डाल के उसे चूसें और 2-3 दिन तक लगातार इसका सेवन करें। आप देखिए आपका पेट एकदम साफ होगा और भूख भी आपको खुल के लगेगी। इसके अलावा अनार के रस में जीरा और शक्कर मिलाकर सेवन करने से भी अरुचि नष्ट होती है और रोगी को भूख लगने लगती है। इमली को जल में डालकर रख दें और 3-4 घंटे के बाद उस इमली के जल को छान लें, यानी जो इमली भीगी हुई है उसको मसल लें और उसका रस छान लें, बाकी जो उसका वेस्ट है उसको अलग कर दें। और उस रस में आप जो पानी है उसका इमली का उसमें आप पुदीना और काली मिर्च का चूर्ण, यानी पुदीने को अगर मौसम का है तो उसे पीस लें और अगर मौसम नहीं सूखा पुदीना है आपके पास तो उसका चूर्ण बना लें। वो चूर्ण और काली मिर्च का चूर्ण, थोड़ा सा काला नमक भी मिला लें और इसको मिलाकर आप इसका सेवन करें। आपके देखिए आपकी भूख खुलेगी और आपको अरुचि नहीं रहेगी। इसके अलावा संतरे के 100 ग्राम रस में काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक तथा शक्कर मिलाकर सेवन करने से अरुचि की शिकायत दूर होती है। मट्ठे में सौंठ, सेंधा नमक, राई, भुना जीरा और भुनी हुई हींग का मिश्रण का 3 ग्राम चूर्ण मिला लें। एक बार फिर सुने से, मट्ठे में सौंठ, सेंधा नमक, राई, भुना जीरा और भुनी हुई हींग का इस सब का जो मिश्रण है वो 3 ग्राम चूर्ण लें और इसका प्रतिदिन मट्ठे में डालकर सेवन करें, अरुचि नष्ट हो जाएगी।
0: अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा और इसमें बताया जा रहा कि अरुचि का निवारण कैसे हो। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फौलता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम मानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 330.0 3 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct।

0: Plus.
1: For details, log on to www.ddindia.com.
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रादेशिक समाचार होंगे अब से थोड़ी देर में।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा। दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। आपदा की स्थिति में स्थानीय भाषा में मिलेगा अलर्ट का संदेश। और स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन आज। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदाई का काम करते हुए समय सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करने और कार्य संपन्न होते ही खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों से उन्होंने कहा कि काम को समय से पूरा नहीं करने, अधूरा छोड़ने या इसमें लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं और ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने के साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाए। श्री योगी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश किया कि जल समाधान पोर्टल पर आपूर्ति, लीकेज व खुदाई से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण की मकान सूचीकरण की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी। उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने कल लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि पहले चरण में घरों की गणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घरों की गणना के लिए पूरे प्रदेश को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटा गया है। प्रगणक इन ब्लॉक में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही स्वगणना में वेबसाइट के जरिए जनता भाग ले सकती है। साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने प्रगणक को उपलब्ध कराना होगा।
1: समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज टू होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी। उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी।
0: मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इस अवसर पर पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में गुरुवार को क्रूज पलटने की घटना के बचाव कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली जा रही है। आगरा से भी विशेष टीम भेजी गई है। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव मिले हैं। उधर जबलपुर क्रूज त्रासदी के बाद वाराणसी में पुलिस ने एक सुरक्षा अभियान शुरू किया। दशाश्वमेध एससीपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने बताया कि वाराणसी जल पुलिस और घाट के विभिन्न थानों द्वारा लगातार तलाशी की जा रही है।
2: वाराणसी जल पुलिस और जो घाट के विभिन्न थाने हैं उनके द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही है। पूर्व में भी की जा रही थी, जिसमें नाविकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि जो नाव पर श्रद्धालु बैठे हैं सभी को लाइफ जैकेट पहनाएं, प्रॉपर तरीके से पहनाएं, साथ साथ में ओवरलोडिंग ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें। लेकिन कई बार चेतावनी देने के बावजूद जिन नाविकों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, श्रद्धालुओं को जैकेट नहीं पहनाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वह श्री अजय राय के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को एक दिन पूर्व अचानक तबीयत बिगड़ने पर लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री जोशी अपने लोकप्रिय फिल्मी गीतों और विज्ञापनों के लिए देश भर में जाने जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊर्जा, उद्देश्य और रचनात्मक शैली के साथ कार्य करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए कल दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। इसे दूर संचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। संचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आयोजित उत्तर प्रदेश में एनीमिया निवारण प्रगति की ओर बढ़ते कदम कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार करने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज देश भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक है। नीट के सूचना बुलेटिन के मुताबिक अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे निर्धारित किया गया है। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति होगी। एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के समोसे को जिले का आधिकारिक सिग्नेचर डिश घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को पहचान देकर उसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध बनाना है। वहां के सहायक आयुक्त उद्योग सारिका सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक परम्पराओं और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया।
4: प्रयागराज के हर कोने कोने में समोसे की एक नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक दुकान पहुंची हुई। इसी की पॉपुलरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। खुशी है ODOP के तौर पे, जैसे ODOP में हमारे डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिले, उसी तरीके से ODOC भी बहुत ही आगे गए हैं यह स्कीम, क्योंकि हर चीज का सवाल पेट से होता है, स्वाद से होता है, तो ये उससे भी आगे गए।
0: सिद्धार्थनगर में कल ICDS द्वारा आयोजित एक समारोह में 350 नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आंगनवाड़ी संस्थाएं न केवल प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए कार्य करती हैं, बल्कि उनके द्वारा राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हुई वर्षा के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में छिटपुट बादल छाए हुए हैं और पूर्वा हवा चलने का क्रम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के इस बदलाव का प्रभाव अगले 3-4 दिन तक बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 5 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों और गड्ढों को तत्काल भरने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बरतने वाली संस्थाओं और ठेकेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण में 22 मई से शुरू होगी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया। 7 मई से मिलेगी स्वगणना की सुविधा। दूसरे चरण में होगी जातिगत जनगणना। केंद्र सरकार ने नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए शुरू किया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम। आपदा की स्थिति में स्थानीय भाषा में मिलेगा अलर्ट का संदेश। और स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी परीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
6: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
7: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरवा सुहानी। कार्यक्रम का पहला नगमा है विजयपथ फिल्म से। संगीत अनु मलिक का, आवाज अलका याग्निक और कुमार शानू की है।

कार्यक्रम का अगला नगमा है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं।

परवीन सुल्ताना की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कुदरत फिल्म का ये गाना। संगीत आर डी वर्मन का था, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की थी। कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं याराना फिल्म का ये गाना। संगीत राजेश रोशन का है, शब्द रचना अनजान की, आवाज किशोर कुमार।

0: इस गीत के साथ ही पूर्वासुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने की 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश

0: करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
1: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है, जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उपरक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, CBS और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले दो दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर तीन देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के

0: के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया

0: ये आकाश आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुस से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरिकी और जजीरानुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के वस्ती मैदानी इलाकों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने भुवनेश्वर में नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिला के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द करने का गैर मामूली इकदाम किया है। इस महीने की 21 तारीख को फाल्टा असेंबली हलके के तमाम 285 पोलिंग मराकज पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई को की जाएगी। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
1: इंतखाबी कमीशन ने गैर मामूली कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को रद्द कर दिया है। 21 मई 2026 को तमाम 285 पोलिंग मराकज में दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। वोटों की गिनती 24 मई 2026 को की जाएगी। चुनाव कमीशन ने अपने बयान में वजाहत की कि यह फैसला 29 अप्रैल 2026 को वोटिंग के दौरान शदीद इंतखाबी धांधली और बेजाबतगी नीज जमहूरी अमल को बड़े पैमाने पर मुतासिर करने की रिपोर्ट्स के बाद किया गया है। इंतखाबी मुशाहिदीन की रिपोर्ट्स में संगीन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की गई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़, वोटरों को धमकाना और पोलिंग कवानीन की खिलाफ वर्जियां शामिल हैं। कई बूथ्स पर बैलेट यूनिट के बटन को जानबूझकर स्याह टेप से ढांप दिया गया था, जिससे दुरुस्त वोटिंग मुमकिन नहीं हो सकी। गैर मजाज अफराद को भी पोलिंग स्टेशनों में

0: एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका की वजीर खारजा कैरमीना जे स्मिथ ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो अगले दो दिन के दौरान जमैका की क्यादत, कारोबारी बिरादरी और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से मुलाकात के मुंतजर है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहने वाले इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर मजकूरा तीनों मुल्कों की क्यादत से मुलाकात करेंगे। अपने हम मनसबों के साथ बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। उनके इस दौरे का मकसद जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ भारत के सियासी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना और देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना है। ये दौरा आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की भी अक्कासी करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में अपनी फौज की मौजूदगी को नुमाया तौर पर कम करेगा, जिससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तनाज़े मजीद बढ़ गया है, क्योंकि वो यूरोपीय सलामती के लिए अमेरिकी अहद बस्तगी को कम करने के ख्वाहां हैं। पेंटागन ने जुमे को इब्तदाई तौर पर ऐलान किया था कि वो जर्मनी से तकरीबन 5,000 फौजी वापस बुलाएगा, लेकिन जब हफ्ते के रोज़ उनसे इस इकदाम की वजह पूछी गई तो जनाब ट्रंप ने कोई वजाहत पेश नहीं की और कहा कि इससे भी बड़ी कमी आने वाली है। उन्होंने फ्लोरिडा में नामानिगारों को बताया कि अमरीका फ़ौज में बहुत ज़्यादा कटौती करने जा रहा है और वो 5,000 से कहीं ज़्यादा फौजियों को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने आज कहा कि जर्मन में अमरीकी फौज की मनसूबाबंद कमी यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतें मजबूत करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने यूरोप में जोर दिया कि वो अपनी सलामती की ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं और इस बात का जिक्र किया कि जर्मन अपनी फौज और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसत दे रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मारूफ नगमानिगार मुसन्निफ और मवासलात के माहिर परसून जोशी को भारतीय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ने जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और झालाबारी का इम्कान है। मध्य प्रदेश में नुमाइंदगी करने वाले कुलदीप कुमार ने नेशनल मेंस पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भुवनेश्वर में जारी इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट मुकाबले के पहले दिन सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में शसुर्खी है, मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। जबकि अखबार इनकलाब ने बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में 90% वोटिंग की खबर को नुमायां किया है। आज शहरियों को फौरी अलर्ट्स की सहूलत, हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन मुकर्रर। अखबारात ने बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के म्यांमार दौरे से मुतल्लिक खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैन अलाक़वामी खबरें इस तरह हैं, मकसद हासिल किए बगैर जंग ख़त्म नहीं करेंगे ट्रंप का बयान, अमेरिका के साथ नई जंग का इम्कान मौजूद है ईरानी फौज का बयान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुरमुज से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जजीरा नुमा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

0: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
1: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
0: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
1: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
2: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
2: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
3: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
4: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है।

0: आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

अभी आप सुन रहे थे जख्म फिल्म का ये गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। संगीतकार थे MM करीम और गीतकार आनंद बख्शी।

कार्यक्रम का अगला गीत है कुदरत फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत है राहुल देव बर्मन का, गीत लिखा है मजरूर सुल्तानपुरी ने।

आप सुन रहे हैं हीरो फिल्म का ये गाना। एक बार फिर से लता मंगेशकर की आवाज। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। गीतकार है आनंद बख्शी।

कार्यक्रम के आखिर में आज सुनते हैं तेजा फिल्म का ये गाना। एक बार फिर से संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, आवाजें अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की हैं।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।

0: दाता ओम अवस्थी।
1: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
2: धन्यवाद ओम जी।
1: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
2: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। तो हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए, इसीलिए बहुत व्यापक स्तर पे हम लोग प्रशिक्षण करा रहे हैं और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। अन्य राज्यों में यह व्यवस्था ऑलरेडी लागू है जो हमसे पहले जनगणना जिनकी नियत थी, 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी, आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें, आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे। तो सभी तरीके की सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध हैं। हमारी आशा यह है कि इतने व्यापक स्तर पे जनमानस तक हम लोग पहुंच रहे हैं और इतनी अधिक संख्या में कार्मिकों की तैनाती की गई है तो इस कार्य को हम सुगमता से 30 दिन के मध्य कर लेंगे।
1: मैम जैसा आपने बताया तो पहले चरण में घरों से किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जाएगी?
2: पहला जो हमारा चरण होता है उसको मकान सूचीकरण कहा जाता है। सेंसस के दो फेजेस होते हैं, पहला जो हम अभी करने जा रहे हैं मई में वो है मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना और दूसरा चरण होता है जनगणना मतलब एक एक व्यक्ति की गणना। सो पहले चरण को आप इस तरीके से समझिए कि हमें घर के लेवल का एक हाउसहोल्ड लेवल का क्वेश्चनेयर प्रश्नावली हम लोग पूछते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है कि एक ही घर में बहुत सारे अलग अलग समुदाय के अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग रहते हो बट वो फेज टू में पूछा जाता है। फेज वन में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो उस घर से संबंधित होता है, किस प्रकार की फर्श है, कितने कमरे हैं, क्या सुविधाएं हैं उस घर में, क्या एसेट्स हैं, क्या परिसंपत्तियां हैं, उस घर के जो परिवार है जो उस घर में रह रहा है उनके निवासियों का मुख्य अनाज क्या है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देश में एक बहुत बड़ा स्वच्छता अभियान का बार बार हम लोग संकल्प लेते हैं तो स्वच्छता से संबंधित प्रश्न भी होते हैं कि क्या शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, जल की निकासी का क्या माध्यम है, बिजली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है। तो बेसिकली हम हाउसहोल्ड लेवल डेटा फर्स्ट फेज में कलेक्ट करते हैं और 34 जो ये प्रश्न है वो इसी प्रकार के प्रश्न है जो आपके घर की स्थिति के बारे में आकलन करते हैं।
1: अच्छा मैम, ये जो स्वगणना होगी उसमें भी यही 34 सवाल होंगे और इनकी क्या उपयोगिता मतलब इससे क्या तय करते हैं इससे?
2: ये जो हमारा मकान सूचीकरण का जो भी डेटा इकट्ठा होता है यही हमारी सारी मुख्य योजनाओं का आधार बनता है क्योंकि जब हमारा डेटा प्रकाशित होता है तो राजस्व ग्राम और वार्ड तक प्रकाशित होता है और उससे भी नीचे छोटी छोटी इकाइयों पे भी हमारा डेटा उपलब्ध होता है तो हम ये देख सकते हैं कि किस क्षेत्र में बिजली का कनेक्शन हम लोग नहीं दे पाए हैं, कहां पर ऐसा है कि अभी भी लोग पुराना स्रोत यूज कर रहे हैं ईंधन का, तो शायद हमें एलपीजी देने की जरूरत है। कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर जल का कोई अच्छा साधन नहीं है, लोग अभी भी पानी लेने के लिए दूर जा रहे हैं, तो हम इस प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं। बेसिकली देश की जितनी भी मुख्य योजनाएं हैं उनका सबका डेटाबेस इस माध्यम से आता है। मैं ये भी बताना चाहूंगी सभी श्रोताओं को कि जो ये प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं ये एक टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी समस्त मंत्रालयों की उस पर मंथन करती है। फिर ये निर्धारित किया जाता है कि हम किन प्रश्नों पर अपनी जनसंख्या से बात करना चाहते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही सोच विचार करके निर्धारित किए जाते हैं और ये प्रश्न कहीं ना कहीं हमारी आने वाली योजनाओं में रिफ्लेक्ट करते हैं।
1: जी, जैसे आपने बताया ये सवालों के जवाब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे योजनाओं का बनाने में मदद मिलेगी। तो स्वगणना पोर्टल पर जानकारी देते समय लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
2: स्वगणना पोर्टल पर जानकारी देते वक्त आपको ठीक उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है जो आपको अपने प्रगणक को जानकारी देते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे आप पोर्टल के माध्यम से जानकारी दे रहे हों चाहे आप प्रगणक को जानकारी दे रहे हों, आपके 34 प्रश्न जो हैं वो नियत हैं, वो पूरे देश के लिए एक समान है। स्वगणना पोर्टल पे जो दो मुख्य चीजें मैं बताना चाहूंगी कि एक तो एक परिवार एक मोबाइल नंबर को एक ही बार यूज कर सकता है। एक पहली चीज ये है कि आप जिस मोबाइल नंबर को दे रहे हैं उस पे आपके पास एक कोड आएगा, वो कोड आपको रखना है अपने एन्यूमरेटर को देने के लिए। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि स्वगणना के पोर्टल में कहीं ना कहीं आपको अपनी एक लोकेशन निर्धारित करनी होती है और ये सभी जितने भी हमारे एप्स जितना भी हमारा डेटा कलेक्शन का है सभी कुछ ऑफलाइन है, तो आपको वो लोकेशन ढूंढनी होती है मैप पे। तो आप चाहे अप्रोक्सीमेट लोकेशन दे दें, 200 मीटर इधर उधर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग शायद एकदम टेक्निकल लोकेशन ना दे पाए, बट आपको कहीं ना कहीं ये बताना जरूरी है कि आप कहां पर स्थापित हैं, जिससे कि जब प्रगणक आपके घर आए तो वो ये पहचान कर पाए कि किस व्यक्ति ने स्वगणना की है और वो सुगमता से आपका जो यूनिक आईडी आपको मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे वो प्राप्त कर पाए।
1: मैम, जैसे शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं या एक ही परिवार में कई छोटे छोटे विभाजन के बाद अलग अलग रह रहे हैं लोग, उन जिनका मकान एक ही है, तो स्वगणना करते समय उन्हें किस तरह से खुद को रजिस्टर करना है, क्या उन्हें अलग अलग करना होगा? वो मकान एक ही है बट उसमें परिवार अलग अलग रहते हैं।
2: जब हम सेंसस की बात करते हैं तो हम परिवारों के लेवल पे गणना करते हैं और परिवार का हमारा कॉन्सेप्ट होता है किचन, यानी क्या हम एक ही कॉमन जगह से खाना खाते हैं। तो बिल्कुल संभव है, ऐसा बहुत सारे शहरों में और बहुत सारे में हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा घर है, पैतृक संपत्ति थी, आज की तारीख में दो भाइयों का अलग अलग परिवार उसमें निवास कर रहा है, दो जगह अलग अलग खाना बन रहा है। तो बिल्डिंग जरूर एक है परंतु उसमें दो जनगणना मकान एवं दो जनगणना हाउसहोल्ड स्थापित हैं, दोनों परिवारों की गणना हम लोग अलग अलग करेंगे।
1: मैम, आपने मोबाइल ऐप का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताएं ये किस तरह का ऐप है और इसमें किस तरह की सहूलियतें मिली हैं इस बार जनगणना के लिए?
2: ये जिस मोबाइल ऐप की हम बात कर रहे हैं ओम, वो ऐप है HLO ऐप, मकान सूचीकरण ऐप, जिसका प्रयोग प्रगणकों द्वारा किया जाएगा। अर्थात पहले प्रगणक जहां पर आपके यहां कागज लेकर पहुंचते थे, वर्तमान में भी उनको कागज दिया जाएगा परंतु उनको ऐप के माध्यम से अपने डेटा को संग्रहण करना है। तो ये ऐप उनके फोन पे इंस्टॉल्ड होगा, ये बहुत लाइट ऐप है, इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कोई विशेष फोन चाहिए, ये एक बेसिक एंड्रॉइड या आईफोन पे भी चल सकता है, जो बहुत हाई लेवल मॉडल नहीं चाहिए। ये ऑफलाइन ऐप है, ऐसे हमारे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पर सिग्नल नहीं आता, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने जनगणना कंप्लीट की और आपका डेटा उड़ गया, तो आपका डेटा एकदम सेव्ड रहेगा जब तक कि आप उसको किसी ना किसी जगह पर आके ऑनलाइन सिंक नहीं करते हैं। तो एक विशेष रूप से विकसित ऐप है भारत की पूरी विषमताओं को देखते हुए, और हम लोगों ने प्री टेस्ट में भी देखा कि ऐप ने बहुत अच्छा काम किया, सभी प्रगणकों को बहुत सहूलियत महसूस हुई इस ऐप को यूज करने में क्योंकि उनके लिए बहुत सुगम हो गया, किसी भी परिवार के पास जाओ और उसको 10-15 मिनट में कवर करके नेक्स्ट परिवार तक, और इनफैक्ट उन्होंने चूज किया हमारे सभी प्रगणकों ने कि वो ऐप के माध्यम से जनगणना कराना चाहे।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
2: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे, अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे, और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे, और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच ओमरी।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
4: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 323.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम लखनऊ केंद्र से होगा।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम। पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: उर्दू प्रोग्राम सुनने वालों की खिदमत में फर्रुख जमाल का आदाब कबूल हो। सामिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में पहले आप समाअत फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला, दारुल मुसन्नफीन शिबली एकेडमी का तारीखी रेसाला अलमारिफ, और कलामी शायर के तहत आज हमने मुंतखब किया है जनाब खुर्शीद जफर हल्लोरी के कलाम का। सामईन, आज डॉक्टर जाकिर हुसैन का योम वफात है। समाअत फरमाइए इस हवाले से ये मुख्तसर तकरीर इल्म के रोशन चराग डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जदीद हिंदुस्तान के उन रोशन ख्याल मेमारों में से थे जिन्होंने गांधी जी के साथ नई तालीम और हिंदुस्तानी ज़रूरियात के तकाज़ों के दरमियान मुताबकत पैदा करने की और हिंदुस्तानी मिजाज से हम आहंगी करने की कोशिश की। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो तारीखी कारनामा है जिसकी बदौलत उनकी खिदमात को हर्फ जली से लिखा जाएगा। गांधी जी की जौहर शनास निगाहों ने हिंदुस्तान में बुनियादी तालीम के लिए अहम तरीन मगर मुश्किल तकमील के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का इंतखाब किया था। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की लियाकत पर गांधी जी के एतमाद का बयन सबूत है। जाकिर हुसैन के नज़रिये तालीम की सदाकत में गांधी जी को अपने तालीमी ख्वाब की ताबीर नज़र आने लगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के तालीमी नज़रिये की बुनियाद सदाकत, मुस्तकिल मिजाजी, खलूस, सलीक़ाई कारकर्दगी, बेपनाह कुव्वत व अमल और काम को इबादत का दर्जा समझना इन तमाम अनासिर पर मुनहसर था, और यही वजह है कि मशहूर राधा कृष्ण स्कीम को डॉक्टर जाकिर हुसैन की निगहदाश में चलाया गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन तालीम की अहमियत और अफादियत से बखूबी वाकिफ थे। वो ये जानते थे कि तालीम ही वो जरिया है जिसके हवाले से इंसान और हैवान में फ़र्क किया जा सकता है। तालीम ही इंसान को उसका जायज़ मकाम अता करती है। डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात से भी बखूबी वाकिफ थे कि इस्लाम में तालीम को कितनी अहमियत दी गई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये चाहते थे कि उनके तमाम हमवतन आला तालीम के जेवर से आरास्ता हों ताकि मुल्क की तरक्की में मुआविन और मददगार साबित हो सकें। सामान ये तो थी चंद बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन के हवाले से। आज उनका योम वफात था, और आइए अब रुख करते हैं एक मकाले की जानिब। समात फरमाइए जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका मकाला, दारुल मुसन्नफीन शिबली एकेडमी आजमगढ़ का तारीखी रिसाला अलमारिफ। ये मकाला पेश कर रहे हैं जनाब कलीम सिफात इस्लाही।
3: रिसाला मारिफ उर्दू दुनिया का वो रिसाला है जिसने अपनी ज़िंदगी के 100 साल मुकम्मल करके दूसरी सदी में कदम रख दिया है। पूरी उर्दू दुनियाए सहाफत में कोई दूसरा रिसाला उसके इस इम्तियाज़ में शरीक व सहीम नहीं हो सकता। दारुल मुसन्निफ़ीन के बानी अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस इदारे की बुनियाद रखी तो उनके पेश नज़र एक रिसाले का इजरा भी था। इसका नाम उन्होंने मारिफ तजवीज़ किया था और इसका पूरा खाका भी तैयार कर लिया था, लेकिन इस खाके में रंगामेजी का मौका उन्हें नहीं मिला और नवंबर 1914 ईस्वी में उनकी रूह कफसे उनसुरी से परवाज़ कर गई। उनके बाद उनके शागिर्द रशीद मौलाना सैयद सुलेमान नदवी

सोम ठाकुर को। इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। चुनाव अधिकारी ने कहा है कि मतगणना केंद्रों पर सभी तैयारी पूरी हो गई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रिक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना जरूरी होगा। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज सड़क की आग लगने की घटना में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दमकल विभाग ने बताया है कि आग बुझाने के लिए 14 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। इस बीच शाहदरा पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि घटनास्थल से अब तक 4 शव मिले हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी अभियान जारी है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता पहलों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की आज़ादी की स्थिति का आकलन करने का एक अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इस वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा नव मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद की थी। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी का मूल्यांकन करने का है। ये दिन प्रेस की आजादी और स्वायत्ता के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सरकारों को प्रेस की आजादी की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है।

विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। शहर के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई जिससे लोगों को राहत मिली। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा।

0: आइए सुनते हैं हेलो फरमाइश।
1: 0551220586 हेलो
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
1: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं आपकी होस्ट अन्नपूर्णा। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम आज की पहली कॉल के साथ। हेलो फरमाइश।
6: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
6: अनु पांडे कोंडा से।
0: क्या हाल चाल अनु?
6: हम तो बहुत अच्छे हैं मैम, बस आप बताइए आप कैसे?
0: मैं बढ़िया, क्या करती है अनु आप?
6: मैं तो रेडियो सुनती हूँ और रेडियो पे कॉल लगाती
0: हूँ। अच्छा, रेडियो सुनती हैं? तो क्या आपको पता है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं?
6: हाँ।
0: आपको पता है तो हाँ। इस मौके पे क्या कुछ खास आपके मन में विचार है रेडियो के बारे में, वो शेयर करना चाहेंगी तो करें।
6: रेडियो के बारे में मेरे मन में तो मैम बहुत खास विचार है, बहुत अच्छे विचार है। रेडियो से हमें क्या नहीं मिला है, ज्ञान, मनोरंजन, हर एक चीज मिला है। वीडियो से कैसे बातें करना है, सब कुछ रेडियो सिखाता है।
0: जी जी, दूर दराज के गांव में जहाँ पे कोई हाँ। साधन नहीं पहुँच पाता है, वहाँ भी आकाशवाणी अपनी आवाज के माध्यम से पहुँच कर लोगों को जागरूक करता है। खेती बाड़ी के कार्यक्रम, न्यूज हुआ, मनोरंजन के लिए रेडियो खास करके लोग सुनते हैं ना, तो हाँ। वहाँ तक भी हमारी पहुँच है ना
6: मैम? वहाँ तक की आप लोगों की पहुँच भी है और एक दूसरे से रेडियो जोड़ता भी है।
0: हाँ बिल्कुल,
6: और देश के किसी भी कोने में रहो, कोई भी दूर दराज के क्षेत्र हो, कुछ भी हो, पर एक दूसरे को रेडियो जोड़ता है।
0: जी बिल्कुल जोड़ता है। तो अनु जी, इसी के साथ साथ अपनी फरमाइश भी बता दें।
6: मैम तेरे नाम मूवी से गाना है तुमसे मिलना बातें करना।
0: चलिए अनु
6: और
0: जी,
6: ये गाना आपको डेडिकेट है।
0: थैंक यू।
6: मुझे ना आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और आपकी आवाज बहुत मीठी
0: आपकी भी आवाज बहुत मीठी है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
6: बिजी रहती हूँ पर जब भी टाइम मिलता है तो कॉल लगाने की कोशिश करती हूँ।
0: चलिए बढ़िया है, कॉल लगाते रहिए, आकाशवाणी को ऐसे ही सुनते रहिए। चलिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये।

0: हेलो फरमाइश
1: जी राधे राधे।
0: राधे राधे, किससे बात हो रही है मेरी?
1: हम धनंजय बात कर रहे हैं, फाइल नंबर
0: फाजिल
1: से।
0: नगर से बात कर रहे हैं। बताएं धनंजय जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: ठीक हैं आप? बताइए, गोरखपुर
0: मैं बढ़िया।
1: का मौसम क्या हाल चाल?
0: गोरखपुर का मौसम अभी
1: हाँ
0: बहुत अच्छा हो गया है, बारिश हुई है तो मौसम ठंडा हो गया है, काफी गर्मी के बाद राहत मिली।
1: हाँ
0: जी जी चलिए धनंजय जी, फरमाइश बता दें अपनी।
1: जी, ससुराल फिल्म का गाना सुना दीजिए, मोहम्मद रफी की आवाज में। मेरी प्यारी प्यारी सूरत पे किसी की नजर ना लगे।
0: चलिए धनंजय जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।
2: तेरी

0: हेलो फरमाइश।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: दीदी मैं आगरा उत्तर प्रदेश ताज नगरी से राजू लवानिया बोल रहा हूँ। जी
0: राजू जी, बताएं क्या हाल चाल आपके?
1: दीदी, हाल चाल बिल्कुल ठीक है। और हमारी आकाशवाणी गोरखपुर टीम कैसी है? अरे
0: बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हैं
1: फरमाइश,
0: ये बताएं।
1: हम बिल्कुल ठीक हैं दीदी। मंद मंद हवाओं का आनंद लेते हुए, गुनगुनी गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए आपको फोन लगा रहे थे, तो सौभाग्य से फोन लग गया।
0: अच्छी बात है। कुछ खास बताएं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके बारे में आपको पता है?
1: ये बिल्कुल दीदी, देखिए आकाशवाणी सदा से ही बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का संदेश लेके चला है, और मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी सुनने को मिलते हैं। और यही कामना है कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने की उपलक्ष्य में आकाशवाणी दिनों दिन तरक्की करे, आसमान तक की ऊंचाई तक पहुंचे, ताकि श्रोताओं को और भी अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिले।
0: आपको अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिले, यही कामना हम भी करते हैं और पूरी कोशिश के साथ करते हैं, है ना?
1: बिल्कुल दीदी, आप लोगों की मेहनत तो है ही है,
0: तो
1: बहुत मेहनत करते हैं आप लोग हम श्रोताओं के लिए।
0: जी, मेहनत तो है, लेकिन आप श्रोताओं की वजह से ही ये मेहनत है। आप सुनते हैं तो हमें और अच्छा लगता है, आप अप्रिसिएट करते हैं तो हमें और मेहनत करने का मन करता है ना?
1: बिल्कुल दीदी,
0: तो
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कार्यक्रमों का आनंद ऐसे ही लेते रहिए और फरमाइश भी बता दे साथ में।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: ठीक है राजू जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते मैम,
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है मेरी?
1: विजय कुमार गीता प्रेस से बोल रहा हूँ।
0: गीता प्रेस से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम,
0: पहले भी बात हो चुकी है आपसे मेरी।
1: जी मैम,
0: क्या हाल चाल आपके? आप वहाँ पे सिक्योरिटी देखते हैं?
1: जी मैम,
0: जी।
1: गाना सुनना था मैम,
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चले गए।
0: चले गए।
1: जी मैम,
0: चल
1: हाँ
0: दिए। हाँ
1: मैं ये गाना सुनना।
0: चलिए विजय जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: विकास दादनपुर प्रयागराज से ट्रक ड्राइवर
0: विकास जी, क्या
1: जी।
0: हाल
1: मैम
0: चाल
1: अभी
0: आपके?
1: कोलकाता। बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बढ़िया।
1: जी मैम, हम भी बहुत अच्छे हैं। आपका कार्यक्रम सुनते हैं, जुड़े रहते हैं गोरखपुर आकाशवाणी से, और बहुत अच्छे कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए जाते हैं।
0: आपको
1: दिक्कत
0: पता
1: कोई?
0: है 90 वर्ष जल्दी ही पूरे होने वाले हैं आकाशवाणी के।
1: हाँ जी, हाँ, असल में आकाशवाणी इस 90 वर्ष में हमें बहुत कुछ ऐसा दे गया है।
0: जी
1: आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है, यहाँ हर चीज को मिलता है, हर चीज सीखने को मिलता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो मिलता नहीं यहाँ पे।
0: जी बिल्कुल। स्वास्थ्य से संबंधित हो, खेती बाड़ी से संबंधित हो, न्यूज़ समाचार, देश दुनिया, चाहे किसी विषय की बात कर लें, हम मनोरंजन की बात कर लें, हर क्षेत्र में आकाशवाणी ने अपनी धाक बनाई है ना?
1: जी, और
0: तो
1: हम लोग आकाशवाणी बहुत बहुत लगाव रखते हैं, आकाशवाणी हमें बहुत अच्छी लगती है।
0: जी, चलिए बढ़िया है, सुनते रहिए आकाशवाणी यूं ही। और 90 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में बताइए, आज कौन सी फरमाइश है आपकी?
1: फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम और गाने का बोल है बंगला गाड़ी।
0: चलिए विकास जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी दीदी, सादर नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है मेरी?
1: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति शिवराधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: शारदा जी, बताएं क्या हाल चाल आपके, मथुरा के क्या हाल चाल?
1: दीदी मेरा हाल समाचार तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मथुरा में गर्मी बढ़ गई है,
0: तो गर्मी
1: ऐसी
0: बढ़ी तो
1: है
0: है हर
1: गर्म गर्म
0: जगह,
1: हवाएं चलती
0: लेकिन
1: हैं।
0: 2 दिन से यहाँ पे तो मौसम काफी अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है।
1: जी, गोरखपुर में तो बरसात हो रही थी, कल परसों की बारिश हुई थी
0: जी जी जी
1: और बहुत ही खूबसूरत सुहाना
0: तो
1: मौसम है
0: क्या
1: ठंडा
0: वहां
1: ठंडा
0: पे
1: आपके
0: ऐसी स्थिति
1: गोरखपुर में।
0: नहीं है?
1: नहीं, हमारे यहाँ 2 दिन पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी रिमझिम बरसात हुई थी
0: जी
1: और
0: जी
1: ठंडी ठंडी हवाएं चली थी। थोड़ा सा तापमान में गिरावट जरूर आया 2-3 डिग्री का,
0: जी
1: लेकिन गर्मी और उमस भरी गर्मी।
0: जी जी जी मतलब वहां बारिश बहुत जम के नहीं हुई, हल्की बारिश हुई है ना?
1: बहुत हल्की बारिश हुई थी।
0: जी। चलिए उम्मीद करते हैं आने वाले समय में वहां भी बारिश होगी और मौसम के मिजाज में थोड़ी नरमी आएगी, है ना?
1: जी बिल्कुल, आपकी
0: तो
1: शुभकामनाएं हमारे साथ में है। और दीदी
0: तो
1: आपको बताना चाहता हूँ कि
0: जी
1: मथुरा वृंदावन जो ब्रज का क्षेत्र है,
0: जी जी
1: इसमें बरसात के दिनों में भी बारिश बहुत कम होती है। यहाँ
0: अच्छा
1: पर गिरिराज महाराज है और भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था, गिरिराज पर्वत को उठाकर यहाँ पर गिरिराज पर्वत विराजमान है, इसलिए बरसात में बारिश कम होती है।
0: अच्छा अच्छा तो इसकी वजह से गर्मी थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है वहाँ पे, ऐसा कुछ
1: जी
0: है।
1: निसंदेह।
0: जी चलिए उम्मीद करते हैं इस बार बरसात में अच्छी बारिश हो और मौसम का मिजाज अच्छा हो वहाँ भी। लेकिन इस
1: इच्छा पाई
0: गर्मी से
1: जाती
0: बचने के लिए हम लोगों को आने वाले टाइम में ऐसी स्थिति बनी रही तो टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, तो हमें भी चाहिए कि अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लें और प्लांटेशन करें, पेड़ पौधे लगाएं अपने चारों तरफ, है ना? पॉल्यूशन कम से
1: है।
0: कम
1: जी
0: करें तो उससे
1: जी जी
0: गर्मी से में
1: बिल्कुल
0: थोड़ी बहुत राहत, और हर एक बंदा प्रयास करेगा तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। और फलदार वृक्ष, बड़े वृक्ष लगाने की कोशिश करें।
1: अपने घर के चारों तरफ आसपास जो पौधे लगाए तो उसे भी काफी राहत मिलती है।
0: और कोई
1: आइए
0: ज़रूरी
1: हमारे
0: नहीं,
1: पास
0: आप
1: जगह
0: अपने
1: जगह
0: घर के
1: काफी।
0: आसपास, आप ऐसी जगहों पे भी लगाएं जैसे कि हम सड़कों के किनारे भी देखते हैं, आप कहीं भी दूर दूर तक चले जाते हैं, कहीं छाया तक नहीं मिलती, है ना? तो वो सारे इनिशिएटिव सिर्फ गवर्नमेंट ही ले, ये ज़रूरी नहीं है। हम अपने नियरेस्ट जो रोड हो हमारी, वहाँ पे हम चाहे तो वृक्ष लगा सकते हैं, टहलने के बहाने वहाँ पानी दे आ सकते हैं, है ना? हर एक इंसान
1: जी
0: अगर
1: जी
0: एक
1: बिल्कुल
0: पेड़ की जिम्मेदारी ले ले तो सोचिए हमारे वातावरण में कितने हरे पौधे, हरे वृक्ष हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी, है ना?
1: सारी परिवर्तन आ जाएगा।
0: चलिए तो
1: वार्तालाप
0: शारदा
1: कर रहे
0: जी
1: हैं
0: इसी के साथ में फरमाइश भी बता दे।
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, और फिर राम तेरी गंगा मैली लता जी ने गीत गाया है, तुझे बुलाए मेरी बाहें आ जाए।
0: चलिए बढ़िया, सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है मेरी?
1: प्रदीप बोल रहा हूँ।
0: प्रदीप जी बताएं।
1: मैं एक सॉन्ग सुनना था।
0: प्रदीप जी पहले तो ये बता दे कहाँ से बात कर रहे हैं आप।
1: मैं ललितपुर से बोल रहा हूँ, बुंदेलखंड रीजन में आता है।
0: चले प्रदीप जी बताएं फरमाइश अपनी।
1: मैम एक सॉन्ग सुना दिया प्रेम रोग का, भंवर ने खिलाया फूल फूल को।
0: सुनवाते हैं प्रदीप आपको आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल। किससे बात हो रही है मेरी?
1: मैम, शिवा लोहट विदिशा नगरी से बातचीत कर रहा हूँ आपसे। ये एमपी में है मैम,
0: अच्छा
1: भोपाल के पास।
0: अच्छा अच्छा जी।
1: जी मैम,
0: तो शिवाजी, वहां से उज्जैन कितनी दूर है आपके विदिशा शहर से?
1: यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा, तो मतलब बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, आपका आना जाना हमेशा लगा ही रहता होगा।
1: जी मैम, हम लगे ही देता
0: और
1: है
0: मुझे
1: आना
0: लगता है
1: जाना।
0: आप महाकाल के भक्त भी हैं।
1: जी मैम, वो तो देखिए, एमपी के सभी जो सनातनी लोग हैं उनके दिल के, और एमपी के वो यहाँ के राजा हैं,
0: जी
1: महाकाल जी।
0: जी जी जी जी
1: जी
0: चलिए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। वहाँ के राजा हैं, और वहीं के नहीं, हर दिल के ऊपर राज करते हैं हमारे भोलेनाथ, है ना?
1: बिल्कुल मैम, उज्जैन जितनी ऐतिहासिक नगरी है, और अभी वहाँ पे सिंहस्थ की भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और आप कभी भी उज्जैन घूमने जाए तो महाकाल लोक जो के बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, तो उसका लुत्फ जरूर उठाएं। और काफी अच्छा, मनमोहक और काफी अच्छा शहर है उज्जैन।
0: बिल्कुल, मौका मिलेगा तो जाते रहते हैं और जाएंगे भी।
1: सभी सुनने वालों से ये निवेदन करता हूँ मैम कि देखिए, जिंदगी में हम अपने आपके लिए समय निकालना चाहिए, और एक टूर जरूर एक साल में एक बार कहीं ना कहीं ऐसी ऐतिहासिक जगह पे घूम के आना चाहिए
0: जी
1: सभी
0: जी
1: लोगों
0: जी
1: को।
0: बड़ी अच्छी बात कही आपने। सचमुच इस बिजी लाइफ, भागदौड़ भरी जिंदगी से हमें जरूर समय निकालना चाहिए अपने लिए, और साल भर में एक बार कम से कम एक बार तो रिफ्रेशमेंट बनती ही है, कहीं ना कहीं
1: जी बिल्कुल।
0: घूमना
1: और
0: जरूर
1: देखिए
0: चाहिए।
1: मैम, सबसे बड़ी बात यह है, जब अपन जवानी के इस पड़ाव पे रहते हैं तो हम पैसे कमाने में लगे रहते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता फिर जाके कहीं सोचते हैं कि हम यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं। पता
0: और
1: ये
0: तब
1: पड़ता
0: शरीर
1: है
0: साथ
1: अपना
0: नहीं देता
1: शरीर, हाँ अपना
0: जी
1: शरीर साथ नहीं देता
0: जी
1: है।
0: तो वो स्थिति ना आए इससे पहले ही हमें जागरूक हो जाना चाहिए, क्यों
1: जी
0: शिवाजी,
1: बिल्कुल
0: और हमें
1: बिल्कुल
0: घूम के
1: मैम,
0: आना चाहिए। कम से कम अपने अपनी कंट्री को तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए
1: जी बिल्कुल। और लक्ष्य ये रखना चाहिए ना कि मैम, साल में एक बार बच्चों के साथ हमको कहीं ना कहीं जाना है।
0: जी। उम्मीद करते हैं आपकी ये बात हमारे देश के लोग सुन रहे होंगे और आपकी बात पे अमल भी करेंगे। जो जाते हैं घूमने उनकी तो बात ही अलग है, जो नहीं जाते हैं वो भी अपने बिजी शेड्यूल से कुछ पैसे बचा कर घूम के आए, है ना? चले,
1: जी
0: और अपनी
1: बिल्कुल मैम,
0: फरमाइश भी बता दे।
1: मूवी है जन्नत, जन्नत में एक गाना रहेगा, जरा सी दिल में दे जगह तू।
0: बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा शिवाजी। सुनते हैं आपकी फरमाइश पे ये गीत।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश जी, मुझे गाना सुनना था।
0: कौन बात कर रही है?
1: हम सीमा बोल रहे हैं
0: हाँ जी सीमा जी, बताएं कौन सा
1: जी।
0: गीत सुनेंगी?

0: यही गाने।
1: बहुत बहुत अच्छा। और गाने यूं ही गुनगुनाते रहिए, आपकी आवाज अच्छी है। और
0: नहीं,
1: हम
0: हम गाते हैं, यहाँ सामने मंदिर है उसमें गाते हैं।
1: अच्छा, अपने शौक को
0: जी
1: यूं ही उड़ान दीजिए। और चलिए सीमा जी, सुनवाते हैं आपकी
0: धन्यवाद।
1: फरमाइश पे ये गीत।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अब कार्यक्रम को यहीं पे विराम देने का वक्त हो चला है। चलते चलते आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नूर मोहम्मद और तकनीकी सहयोग रहा कन्हैया कुमार, अनिल कुमार पाठक और नम्रता श्रीवास्तव के। अब अन्नपूर्णा को दीजिए इजाजत, ऐसे ही हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए, हमें कॉल करते रहिए। नमस्कार।
1: 0551220386 हेलो
2: हेलो
3: हेलो
4: हेलो
1: हेलो फरमाइश
5: हेलो फरमाइश।
6: अभी आप सुन रहे थे हेलो फरमाइश का कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11 बजने को आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आईं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से

0: सुनिश्चित करेंगे।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत में लगी।
3: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। श्री संधू ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत तथा सहायता प्रदान की जाए। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2:00 बजे से शुरू होगी और 5:00 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश 1:30 बजे तक होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज श्रीकाकुलम जिले के सोमपेटा मंडल में मुलापालेम गांव के उदय एक्वा उद्योग का दौरा किया। यहां राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों के लिए मछली उत्पादन बढ़ाने, आय के स्रोत बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने पर विचार विमर्श किया गया। श्री नायडू ने कहा कि श्रीकाकुलम जिले को प्रमुख एक्वा केंद्र के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में यूनेस्को के 1991 में 26वें महासभा सम्मेलन की सिफारिश के बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से पराजित किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba.
5: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: नफरत की आग ना समाज में लगावा हमारा भैया हो।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: अभी आप सुन रहे थे लोकरंग का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म लगान से इस गीत को। आइए सुनते हैं सोनू निगम और महालक्ष्मी की आवाज में फिल्म बंटी बबली से अगला गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
3: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
4: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
4: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
3: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
4: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
3: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान और अंतरा की आवाज़ में फिल्म राजनीति से यह गीत। आइए सुनते हैं कृष्णा और सलीम की आवाज़ में फिल्म चक दे इंडिया से अगला गीत।

मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक के आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे यूरो किड्स स्कूल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बाल मंच। विषय है हमारा सौर्य मंडल। प्रतिभागी बच्चे हैं आहान, अंबर, आखी, आध्या और श्रेया।

0: जय हिंद बच्चों।
1: जय हिंद दीदी।
0: बच्चों हम एक बार फिर आ गए हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम लेके बाल मंच, और बाल मंच में हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जिनसे हम आज बहुत सारी बातें करेंगे और हम सब करेंगे बहुत सारी मस्ती। क्यों बच्चों?
1: हाँ दीदी।
0: तो भाई आवाज में तो बहुत दम है, आज लगता है बच्चे खूब मस्ती करने के लिए तैयार है। क्यों? तो चलिए बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे उत्साहित हैं कुछ न कुछ सुनाने के लिए और बताने के लिए।
1: हाँ दीदी।
0: तो सबसे पहले हम बच्चों से उनका नाम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो किस क्लास में पढ़ते हैं। आप बताइए भाई आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम आरपी है और मैं क्लास फोर्थ में पढ़ती हूँ।
3: मेरा नाम आद्या है, मैं क्लास फोर्थ में पढ़ती हूँ।
0: और आप आइए भाई आगे आइए, नाम बताइए।
4: मेरा नाम तोरल है और मैं क्लास फोर्थ में पढ़ती हूँ।
0: बहुत बढ़िया।
5: मेरा नाम श्रेया है, मैं क्लास थर्ड में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम अंबर यादव है, मैं क्लास फोर्थ में पढ़ता हूँ।
7: मेरा नाम आन सानी है और मैं क्लास थर्ड का बच्चा हूँ।
0: बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे और नाम भी बहुत प्यारे प्यारे हैं। तो चलिए बच्चों बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप सब ये बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या काम लगता है, यानी अपनी अपनी हॉबीज बताइए हमें।
8: मुझे पढ़ना अच्छा लगता है।
0: तो श्रेया ने बताया कि उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। और भाई और आपको क्या अच्छा लगता है?
9: मुझे गाना गाना अच्छा लगता है।
0: और आपको?
10: मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है।
0: वाह भाई वाह, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पे। और आप बताइए?
11: मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है।
0: और आपको?
12: मुझे भी सिंगिंग अच्छा लगता है।
0: वाह भाई क्या बात है,
13: मैं भी गा लेता हूँ अच्छा गाना।
0: आप भी गा लेते हैं अच्छा गाना? वाह भाई, यानी कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि गाना बहुत अच्छा गाते हैं, तो गाने भी हम सुनने वाले हैं आगे।
14: मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है।
15: मुझे भी क्रिकेट खेलना पसंद है।
0: बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए अब सबके सबके पसंद की बातें हो गई, अब हम उसके पसंद का काम भी कराने वाले हैं। भाई खेल तो होगा ही, साथ में गाने भी होंगे और पहेलियां भी होने वाली हैं। आगे हम कहानी भी सुनेंगे और कविताएं भी होंगी। क्यों तैयार हैं आप लोग?
1: Yes!
0: तोरल आने वाली हैं कुछ सुनाने।
4: आज मैं आपको भजन सुनाने वाली।

0: देव।
1: अब क्या सुनाने वाले हैं?
0: मैं एक पोएम सुनाऊंगा। तितली रानी रंग बिरंगी दिखने वाली, छोटी बड़ी दिखने वाली, प्यारी प्यारी तितली रानी, ना जाने किस देश से आती, ना जाने किस देश को जाती, इधर उधर उड़ती रहती, गुड़िया रानी उसे बुलाती, पास नहीं है उसकी जाती, छोटी बड़ी दिखने वाली, प्यारी प्यारी तितली रानी। थैंक यू।
1: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बहुत अच्छी कविता। अब भाई श्रेया आ रही हैं, क्या सुनाने वाली हैं आप?
2: कविता
1: सुनाइए।
2: पेड़ हमारे पापा होते, मम्मी होती चिड़िया, तब कितना अच्छा होता, हम उड़ते जैसे परिया।

0: धूप सताती हमको पत्तों में छुप जाते, पक्षी जैसे कुतर कुतर के कितने ही फल खाते, संग हमारे इन बागों में उड़ती रोज तितलियां, गुनगुन करती भौरे से कितनी बतियाती कलियां। धन्यवाद।
1: श्रेया के लिए जोरदार तालियां।
2: आज मैं आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ, मूर्ख बिल्लियाँ। एक बार एक बिल्ली ने सड़क पर रोटी का एक टुकड़ा पड़ा देखा, एक और बिल्ली ने देखा और दोनों एक ही समय में उस पर झपट पड़े। बिल्लियाँ लड़ने लगी। कुछ समय बाद पहली बिल्ली ने सुझाव दिया कि वह रोटी को दो बराबर टुकड़ों में बांट ले। इसी बीच एक बंदर वहां आ गया। बिल्ली ने बंदर से रोटी को दो बराबर भागों में बांटने को कहा। बंदर बहुत चालाक था, उसने रोटी को दो टुकड़ों में बांट दिया और उनके आकार की जांच की, लेकिन एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा था, इसलिए उसने बड़े टुकड़े से काट लिया। फिर उसने देखा कि दूसरा टुकड़ा बड़ा था और उसने उससे भी काट लिया। वह कुछ देर तक ऐसे ही करता रहा और आखिर में उसने सारी रोटी खा ली और बिल्लिया के पास कुछ नहीं बचा। नैतिक शिक्षा: मूर्ख वह है जो दूसरों मूर्ख पर भरोसा करता है। धन्यवाद।
1: कैसी लगी कहानी आप लोग को?
3: अच्छी।
1: अच्छी कि बहुत अच्छी?
3: बहुत अच्छी।
1: तो आरवी के लिए जोरदार तालियां। तो बच्चों, इस कहानी के बाद आइए सुनते हैं एक गाना। सुनना है?
3: हाँ दीदी।
1: तो कौन सा गाना सुना जाए?
3: चंदा।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: धूप खुद देते सभी को छाव, अपनी मदद करने को बढ़ाते डालियों से बहा, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती है इनसे प्राण वायु शुद्ध सारी, सींचते धरते हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसात खेत उपन भी सभी हाँ लहलाते, जाए उनको काट दे तो मिलेगी छाव कैसे, मदद करने को बढ़ेंगे डालियों से बहा कैसे, कैसे लेंगे सांस फिर प्राण वायु कहाँ मिलेंगे, प्राण वायु नहीं लेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये बताइए कि चॉकलेट किसे पसंद है?
2: मुझे, मुझे।
1: तो भाई चॉकलेट तो सबको पसंद है। अच्छा चॉकलेट हम सबके लिए फायदेमंद होता है?
2: नहीं,
3: नहीं
1: नहीं होता है। बहुत ज्यादा जब खाते हैं तो चॉकलेट नुकसान करता है। क्या होता है?
2: दांत खराब होते हैं।
1: इसीलिए मम्मी मना करती हैं कि बहुत ज्यादा चॉकलेट
2: नहीं खाना चाहिए।
1: बच्चों चॉकलेट खाने के बाद हमको रात में क्या कर लेना चाहिए?
2: ब्रश।
1: रोज रात में हमें ब्रश करना चाहिए। तो चलिए आज हम लोग थोड़ी सी बातें साफ सफाई की करते हैं कि हमें स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि स्वच्छता क्यों जरूरी है?
3: उससे हम स्वस्थ रहते हैं।
1: और कौन कौन सी आदतें हमें रखनी चाहिए सफाई के लिए?
3: हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए। खाने से पहले हाथ धुल लेना चाहिए।
0: खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए।
4: हमें रोज नहाना चाहिए।
5: हमें रोज अपने बाल में कोम करने चाहिए।
0: हमें नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए।
1: और क्या करना चाहिए भाई, और कोई बताए?
3: हमें साफ कपड़े पहनना चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और
6: हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
7: मुझे अपने घर के साथ ही साथ अपने आस पड़ोस का भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सड़क पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। स्कूल में भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बच्चे बता रहे हैं कि हमें स्कूल में भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमारे घर के आसपास के नालियों में भी कचरा
2: नहीं फेंकना चाहिए।
1: हमें घर की साफ सफाई में मम्मी का
2: हाथ बटाना चाहिए।
7: हमें अपने बिस्तर को साफ सुथरा रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात। और क्या करना चाहिए मम्मी के साथ? और जो सामान जहाँ से हम उठाते हैं ना, फिर वहीं पे जाके रखना चाहिए। अक्सर ये आदत होती है ना आप लोगों की, हम सामान जो है बिखरा के रख देते हैं। करते हैं ऐसा? दबी आवाज में बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हम ऐसा करते हैं, लेकिन हमें ऐसा
2: नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल भी नहीं। अब से सब लोग जाके अच्छे से रखेंगे ना।
2: हाँ।
1: अपने जो भी सामान अगर हम बाहर निकालते हैं बैग से, तो वो फिर सामान को अच्छे से बैग में अलमारी में रख देंगे, जो बिखरे सामान रहेंगे रखेंगे।
2: हाँ।
1: तो अब जाके आप सब लोग ये सब काम करेंगे घर पे, ताकि मम्मी हो जाएंगी खुश और आप लोग को मिलेंगे डबल चॉकलेट। तो भाई इतनी सारी बातों के बाद बच्चों आपको कोई गाना सुनना है? कौन सा गाना सुनना है?
2: बम बम बोले।
1: तो चलिए सब लोग मिल के गाएं पहले, फिर हम सुनाएंगे गाना।
2: बम बम।

0: इस गाने के बाद हम फिर आते हैं बच्चों के पास और अब होगा हंसाने का सिलसिला और बच्चे लेकर आ रहे हैं कुछ चुटकुले। भाई चुटकुला अभी शुरू नहीं हुआ और बच्चे आपस में हंस भी रहे हैं कि मैं अब देखो क्या पिटारा लेकर आया हूँ और क्या सुनाने वाला हूँ। तो हंसाने के लिए भी तैयार हो जाइए और हंसने के लिए भी।
1: हाँ दीदी।
0: तो सबसे पहले कौन लेके आ रहा है भाई? तोरण। तोरण तो चलिए भाई बच्चे तैयार हैं हंसने के लिए और आप चलिए सुनाना शुरू करिए।
2: जब हम रोते हैं तो आंसू गिरते हैं, बट जब हम लोग हंसते हैं तो दांत क्यों नहीं गिरते?
0: भाई देखो इतने जोर से मत हंसना, किसी के दांत ना गिर जाए।
3: तो गिर ही गए।
0: हाँ देखो उसके गिर भी चुके हैं।
2: गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
3: कैरेट।
2: नहीं आपको इतना भी नहीं आता, गाजर को इंग्लिश में कहते हैं कैरेट।
0: ओहो कैरेट कौन कौन खाता है?
4: मैं।
0: और सबसे ज्यादा कैरेट पता है किसको पसंद है? खरगोश को। आरवी आई है आप सबको हंसाने, तैयार हो जाइए भाई।
5: बचपन में जब हम दूध नहीं पीते थे तो मम्मी कहती थी दूध पीने से गोरे हो जाएंगे, तो आज तक भैंस क्यों नहीं गोरी हुई, वो भी तो दूध पीती थी। काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे, मैं कर लूंगा।
0: बहुत बढ़िया। अब कौन आ रहा है भाई? अब आ रही हैं आद्या।
6: अगर माँ कहे मोबाइल रख दो तो रख दिया करो, क्योंकि माँ के पैरों में जन्नत के साथ साथ चप्पल भी होते हैं। एक बात बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग।
0: मोबाइल चलाना किसे किसे अच्छा लगता है?
7: चलाना नहीं मिलता है।
0: अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि मोबाइल के नुकसान क्या होते हैं?
7: मोबाइल से आंखें खराब होती
8: हैं, याददाश्त कम होती है,
9: और मम्मी से डांट भी मिलती है।
10: जीवन में हंसते रहो मुस्कुराते रहो, क्या पता कल सामने के दो दांत रहे या ना रहे।
0: बिल्कुल सही बात है, हंसते रहिए और अपने दांतों को दिखाते रहिए, है ना? लेकिन भाई दांत जरूरी है कि दिखाने से पहले वो साफ सुथरे रहे, चमकते रहे, है ना?
11: कि टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, कि टीचर की डांट को लेक्चर कहते हैं, बिना पढ़े एग्जाम में जाने को एडवेंचर कहते हैं, और एक रात पर के पास हो जाने वाले को बैक बेंचर कहते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कौन आ रहे हैं?
12: अंबर।
0: अंबर आप क्या लेकर आए हैं?
12: शायरी।
0: शायरी, क्या बात है भाई, बच्चे शायरी भी सुनाने लगे हैं।
13: अगर चाय में शुगर नहीं तो पीने का क्या मजा, अगर चाय में शुगर नहीं तो पीने का क्या मजा, अगर जिंदगी में दोस्त ना तो जीने का क्या मजा।
0: दोस्त रखना बहुत जरूरी है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन ये शायराना अंदाज देखिए इनके, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने शायरी बोली है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां। मजा आ रहा है ना? वो तो दिख रहा है, बच्चों के चेहरे पे कुछ ज्यादा ही हंसी आ गई है और बच्चे और उत्साहित हो गए हैं कुछ न कुछ सुनाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे ले करके तैयार हैं कुछ पूछने के लिए, है ना? यानी कि अब हम आ गए हैं पहेलियां लेकर के, बच्चे आ रहे हैं बारी बारी सबके दिमाग का टेस्ट लेने, है ना? सबसे पहले कौन आ रहा है?
5: ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्यास लगने पे पी सकते हैं, भूख लगने पे खा सकते हैं, और ठंड लगने पे उसमें आग डाल के जला सकते हैं?
0: क्या है भाई बताइए बताइए।
14: नारियल।
15: नारियल।
0: बहुत बढ़िया।
2: ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लोग सोते समय भी देख सकते हैं?
0: सोते समय भी देख
2: सपना।
15: सपना।
0: सपने तो सब लोग देखते हैं ना, और किसको किसको डर भी लगता है सपने में।
16: बहुत खतरनाक सपना देखती हूँ।
0: हाँ और कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे सपने भी आते हैं ना। और अच्छे सपने के बाद लगता है ना कि ये सपना था,
16: काश ये सच हो।
0: तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे सपने भी अच्छे होंगे। इसलिए हमेशा ही हम लोगों को पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और वो सपने देखने चाहिए हमें खुली आंखों से, बंद आंखों से नहीं। जैसे हम अभी सोचते हैं ना कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, हमें खूब नाम करना है, हमें बहुत अच्छा बनना है, सबके मन में है ना? तो ये सपने होते हैं, सब लोग देखते हैं ना? और सब लोग उसे पूरा करेंगे? और भाई अब कौन आ रहा है? दिमाग दौड़ाइए और बताइए क्या
2: तीन पैर की तितली नहा धो के निकली।
16: समोसा।
2: इसको हम फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते हैं।
16: एयर।
0: आरवी लेकर आई है एक पहेली और आप लोग ध्यान से देखिए भाई, वो कागज कलम लेकर बैठी है और पूछ रही है,
5: अगर हम एक लाइन खींचते हैं और हमें उसे छोटा करना है लेकिन बिना उसे टच किए बिना मिटाए तो हम उसे कैसे छोटा करेंगे?
16: हमें नहीं पता है।
5: अच्छा मैं बताऊं, इसके आगे एक और बड़ी लाइन खींच देंगे तो वो अपने आप ही छोटा हो जाएगा।
0: चलिए चलते हैं, कुछ बातें जानकारी की करते हैं और इस क्रम में हम बात करेंगे कुछ अपने सौर मंडल से जुड़ी और अंतरिक्ष की। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप सब? तो प्रश्न लेकर आ रही है तोरण और आरवी और बाकी लोग तैयार है आंसर देने के लिए। ठीक है
16: ठीक है।
5: सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है?
16: बृहस्पति।
5: सही जवाब।
2: सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है?
16: सूर्य।
5: सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं?
16: 8।
0: क्या बात है, एक के बाद एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सब बच्चे उसके आंसर्स को देते जा रहे हैं।
6: चलो सब लोग बताओ, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
16: बुध।
5: लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है?
16: नहीं पता।
5: अच्छा मैं बताऊं?
16: हाँ।
5: मंगल ग्रह।
6: तो चलो ये बताओ, हम किस ग्रह पे रहते हैं?
16: पृथ्वी।
0: ये तो सबको पता है ना?
16: हाँ।
2: सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है?
16: नेपच्यून।
0: और अब आरवी आप फिर से पूछ रही हैं कुछ?
5: हाँ।
0: पूछिए पूछिए।
5: सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं?
0: शुक्र।
2: सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है?

0: तो बच्चों ने सवाल भी पूछ लिया है और उसके उत्तर भी बच्चों ने बखूबी दिया है। इसका मतलब ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं घर में, है ना? और बच्चों हम आपको बताते चले कि नासा का आर्टेमिस 2 मिशन ने चांद की परिक्रमा करते हुए इंसानों द्वारा तय की गई सबसे लंबी दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस मिशन द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित यात्रा तय की गई है और बच्चों आने वाले समय में यह मिशन चंद्रमा पर आधार बनाने, नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में और मंगल ग्रह के लिए भी नए रास्ते खोलेगा, ताकि चंद्रमा और मंगल ग्रह से जुड़ी और जानकारी हम सभी को मिल सके। तो बच्चों, इस जानकारी भरी बातों के बाद चलिए सुनते हैं गीत। सुना जाए?
1: हाँ।
0: कौन सा सुनना है?
1: नन।

0: Ocak Mişri. और बच्चों चलते चलते हम सब मिलकर बोलते हैं
1: जय हिंद।
0: आज के बाल मंच कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दीपांकर मिश्र।

अभी आपने सुना बच्चों का कार्यक्रम बाल मंच, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने सुहाने। पहले सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म उपकार से इस गीत को।

माफ करिएगा, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का सफर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।

0: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
0: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
1: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
2: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के जरिए फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए मुंतखब 357 जूनियर एनालिसिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल हेल्थ के मुंतखब 252 डेंटल हाइजीनिस्ट के तकर्री लेटर तकसीम प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत में तकर्री का अमल पूरी शफाफियत के साथ मुनक़िद किया जा रहा है, किसी के भी साथ कोई तफरीक नहीं की जा रही है। रियासत में आज 81 मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर वजीर आला ने कहा
1: कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा स्टे क्यों है? उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं, ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए? जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की, माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी, हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं।
0: उत्तर प्रदेश में मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले की मकान फेरिस्त कार्य का अमल 22 मई से शुरू होगा। उससे 15 दिन कबल 7 मई से खुदशुमारी की सहूलत शुरू की जाएगी। रियासत की मर्दमशुमारी डायरेक्टर ऑफ वर्क्स और चीफ प्रिंसिपल सेंसेस शीतल वर्मा ने कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पहले मरहले में घरों की गिनती की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि घरों की शुमारी के लिए पूरी रियासत को 3,90,000 छोटे छोटे ब्लॉक में तकसीम किया गया है। शुमार कुनिंदा इन ब्लॉक में जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर ने बताया कि 7 मई से शुरू हो रही खुदशुमारी में वेबसाइट के जरिए अवाम हिस्सा ले सकती है। साथ ही ऑनलाइन मिलने वाले कोड को अपने शुमार कुनिंदा को मुहैया कराना होगा।
2: समिति ने यह निर्णय लिया कि हम 22 मई से 20 जून तक अपनी मकान सूचीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसी प्रक्रिया से 15 दिन पहले आम जनों के लिए स्वगणना की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फेज 2 होगा हमारा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच में, जिसमें एक एक व्यक्ति की गणना होगी, उस पर पुनः आप लोगों से एक बार वार्ता होगी।
0: चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर ने बताया कि मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले में जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर दिलीप शुक्ला भी मौजूद रहे। वजारत इत्तला और नशरियात ने ममासिलात स्पेशलिस्ट प्रसून जोशी को हिंदुस्तान के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती का सदर मुकर्रर किया है। जनाब जोशी मकबूल फिल्मी नगमों और इश्तेहारात के लिए पूरे मुल्क में जाने जाते हैं। वजीर बराए इत्तला और नशरियात अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनकी क्यादत में प्रसार भारती नई तवानाई, मकसद और तख्लीकी अंदाज के साथ काम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस सदर अजय राय के सेहत को लेकर तशवीश का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि वो जनाब अजय राय के जल्द सेहतयाब होने की दुआ करते हैं। वाज रहे कि कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय को एक दिन कबल अचानक तबियत बिगड़ने पर लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। ग्रेजुएट मेडिकल तालीम में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी आज मुनक़िद किया जाएगा। ये इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे खत्म होगा। नीट के तला बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान मराकज में आखिरी दाखिला दोपहर 1:30 बजे तक होगा। कौमी इम्तिहान एजेंसी साल 2019 से नीट यूजी इम्तिहान का इनेकाद कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए खसूसी गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक ओरिजिनल फोटो शिनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी है। आज आलमी यौमे प्रेस आजादी का दिन है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने दिसंबर 1993 में यूनेस्को के जनरल असेंबली की सिफारिश के बाद यौमे प्रेस आजादी का ऐलान किया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी सहाफियों को मुबारकबाद पेश की है। और रियासत के बेशतर इजला में गरज चमक के साथ मौसम खुशगवार हो गया है। अम्बेडकर नगर, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत लखनऊ में सुबह बारिश हुई। अभी भी आसमान में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं और पुरवाई हवा चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम की इस तब्दीली का असर आइंदा 3 से 4 दिनों तक बना रहेगा। मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से आइंदा 5 मई से रियासत के कुछ मकाम पर गरज चमक के साथ हल्की से मुतवस्सित बारिश होने का इम्कान है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।

0: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजियों का बहाव होगा। कहीं मिलेंगे सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं का दुर्भाव मिलेगा। तो चला चल राही अपने कर्म के पथ पर, तेरा जैसा भाव वैसा ही प्रभाव होगा। तो बहनों, मेरा प्रभाव मेरा भाव दोनों ही आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं आ गई आपकी रेडियो सखी लता चंदोला। आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत में स्वागत और मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज अपने कार्यक्रम में हम बातें जो करेंगे भाई, वो है भाई कुछ खास दिवस की और भाई मीडिया में महिलाओं की भूमिका की और कुछ जानकारी की बातें और कुछ स्वास्थ्य की भी जानकारियाँ। तो बहनों देखिए, आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रेस से या मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं। बाधाएँ आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं बहनों। आंधी आए, तूफान आए, चाहे किसी भी तरह का प्रलय हो जाए, लेकिन हमारे जो प्रेस के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, वो अपने आप को हमेशा अलर्ट रखते हैं और जागरूक रखते हैं विश्व की, समाज की और देश की खबरों को हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो बहनों, आज है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। यह हर वर्ष 3 मई को यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है मीडिया की स्वतंत्रता के महत्व को समझाना और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा करना। इस दिवस की शुरुआत 1993 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा की गई थी। यह दिवस यूनेस्को की पहल पर मनाया जाता है, जिसमें प्रेस की आज़ादी को लोकतंत्र की नींव बताया गया है। एक स्वतंत्र प्रेस किसी भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है। प्रेस ही वह माध्यम है जो हमें सही जानकारी, सच और समाज की वास्तविकता की तस्वीर दिखाता है। लेकिन बहनों, आज की दुनिया में कई हिस्सों में पत्रकारों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। कई बार घर परिवार के सदस्यों को भी धमकियों का सामना करना पड़ता है। भारत के संविधान में भी प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, पर सत्यता और निष्पक्षता बनाए रखते हुए। आज के दौर में जब सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा है, सही और गलत खबरों के बीच में अंतर करना बेहद जरूरी हो गया है। ऐसे में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। बहनों, ये जो दिवस है, यह हर वर्ष किसी न किसी थीम के आधार पर मनाया जाता है। तो इस बार का थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस, प्रमोटिंग द प्रेस फ्रीडम फॉर द ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सरल भाषा में यदि समझें, शांति भरे भविष्य के निर्माण में स्वतंत्र प्रेस की भूमिका। भाई, इस थीम का जो मुख्य जो जिस चीज़ पे फोकस कर रही है करा जाएगा, वो है प्रेस की स्वतंत्रता मानव अधिकारों के लिए क्यों ज़रूरी है। सही पत्रकारिता समाज में शांति और विकास लाती है। देखिए ना, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ कहीं कहीं पे ऐसी खबरें जो हैं झूठी फैला दी जाती हैं, जिससे जो है जनमानस में आक्रोश की भावना एक आ जाती है। तो ये दायित्व हमारा और प्रेस का बनता है कि हम सही और ऑथेंटिक खबरें आप तक पहुंचाएं, और चाहे उसके लिए हमें किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। मीडिया सच दिखाकर संघर्ष और गलत जानकारी को कम करने में मदद करता है। यह थीम खास करके आज के समय में महत्वपूर्ण है, जब दुनिया में कई जगह पे पत्रकारों के को खतरों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बहनों भाई, ये तो हमारे दिवस की बात हो गई, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जब भी हम मोबाइल उठाते हैं तो एक गाना जो है वो बहुत ज़्यादा हमें बजता हुआ दिखता है। जब देखो वो महिलाएं जो हैं गाती गुनगुनाती नजर आती हैं, क्योंकि भाई अपने गोरखपुर का मौसम ही इतना गजब हो चुका है ना। कौन सा गाना पता है? मौसम मस्ताना, ये गाना। तो चलिए भाई, हम लोग भी गुनगुनाते हैं इसी गीत को।

बहनों भाई, वाकई में गाना तो बहुत ही अच्छा था और मौसम वाकई में गोरखपुर का बहुत मस्ताना हो चुका है। और बहनों, अभी तो खैर गर्मी की समय तो चल ही रहा था, तो कुछ लोग जो हैं भाई अपने टूर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, घूमने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बहनों, कुछ चीज़ों की सावधानियां हमको ले रखनी होंगी, जैसे भाई खाने पीने की क्या चीज़ें लेके जानी है, अनावश्यक हम सामान ना लेके जाएं, और ये सारी चीज़ें तो हैं ही, और सुरक्षा का भी हमें ख्याल रखना है। क्योंकि भाई देख रहे हैं ना, आजकल बहुत सारी ऐसी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं जिसकी वजह से जरा सी हमारी जो असावधानी है वो गंभीर परिणाम दे लेती है। तो भाई बहनों, हम बातें कर रहे थे आज जो है विश्व प्रेस दिवस की, तो अब हम बातें करेंगे भाई महिलाओं का इस क्षेत्र में क्या भूमिका है और उनको क्या क्या आगे करना चाहिए भाई, कैसी कैसे वो कर रही हैं, या पुराने समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था या आज़ादी की जंग लड़ रहा था, तब उस समय में क्या क्या महिलाओं ने किया। तो भाई महिलाओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज के समय बनाई है, लेकिन बहनों इस उद्योग में पूर्ण लैंगिक समानता अभी भी एक चुनौती है। सुरक्षा और समान अवसर मिलने पर महिला पत्रकार अधिक न्याय संगत और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती हैं। पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही,

के साथ साथ महिलाओं के ने इस क्षेत्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है। आज महिलाएं न केवल न्यूज एंकर रिपोर्टर के रूप में बल्कि संपादक, खोजी पत्रकार और युद्ध संवाददाता के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। और बहनों, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, पत्रकारिता क्या कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं को अवसर मिल रहा है और वो अपना परचम नाल फहरा रही हो। भारत में कई ऐसी प्रेरणादायक महिला पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी निर्भीकता और ईमानदारी से समाज को नई दिशा दी। महिलाओं को सबसे बड़ी ताकत उनकी संवेदनशीलता और सूक्ष्म दृष्टि होती है। महिला अधिकार, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उनकी मानवीयता और गहराई से जो एक भावना जो होती है ना, वो झलकती है। अब हम बहनों बात करेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका है आज के डिजिटल युग में। अवसरों को की कोई कमी नहीं है। प्रिंट मीडिया, टीवी चैनल, रेडियो, ऑनलाइन पोर्टल, सोशल मीडिया, हर जगह महिलाओं के लिए नए नए प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। डिजिटल पत्रकारिता जैसे प्लेटफॉर्म में महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करने का एक सशक्त माध्यम दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में चुनौतियों की कमी नहीं है। कार्य के दौरान सुरक्षा, असमान वेतन और कभी कभी सामाजिक दबाव जैसी समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपनी पहचान बना रही हैं। भाई, अगर हम स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो भारतीय पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका अत्यंत साहसी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी रही है। इस दौर में जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी सीमित था, उन्हें मनाही थी कि बाहर नहीं निकलना है, तब पर भी पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने अनौपचारिक रूप से शासन के देश जो शासी जो लोग थे जिन्होंने भारत पर शासन कर रहे थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज को जागरूक किया। कस्तूरबा गांधी व अन्य महिलाओं ने उस समय के आंदोलन के दौरान कई ऐसे लेख लिखे जो जागरूक करते थे उस समय के लोगों को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने गुप्त रूप से भूमिगत रेडियो का संचालन कर सूचनाओं का प्रसार किया। मोक्षदायिनी देवी ने इन्हें भारत की पहली पत्रकार माना जाता था। तनुबाई बिरजे महज 14 साल की उम्र में समानता पर अपना लेख लिखा उन्होंने। होमाबाई व्यारावाला ने भारत की जो पहली भारत की फोटो पत्रकार थी, उन्होंने 1930 से 40 के दशक में ब्रिटिश के आखिरी दिनों में ऐतिहासिक लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर लिया। सरोजनी नायडू, अरुणा आशफ अली और भी भीकाजी कामा ने अपने लेखों और भाषणों ने जन जागरूकता फैलाई। विद्या मुंशी भारत की पहली मुख्यधारा की महिला पत्रकार के रूप में व्यापक रूप से उनको मान्यता प्राप्त हुई थी। तो बहनों, ये क्षेत्र भी एक हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए है, तो क्यों ना हम लोग भी इसके लिए प्रयास करें। क्योंकि देखिए बहनों, मैंने पहले ही बताया कि महिलाएं जो है ना, वो एक किसी भी चीज़ से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती हैं। यदि वो जुड़ेंगी तो मानी बात है कि वो न्याय संगत ही बात करेंगी। भाई, आगे हम लोग और भी बातें करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए और एक प्यारा सा गीत हो जाए।

बहनों भाई, अब थोड़ा सा हम लोग स्वास्थ्य की बातें भी कर लेते हैं। और आज जो हम बात करेंगे भाई, बायो हैकिंग की। भाई लंबी उम्र जीने का सभी जीना चाहते हैं और स्वस्थ उसके साथ रहें, लेकिन कहीं कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां हमारे साथ आती रहती हैं। तो बहुत सारे प्रयास करने के बावजूद भी हम अपने आप को फिट नहीं महसूस करते, तो उसके क्या कारण है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। भाई लंबी उम्र जीने का एक नया फॉर्मूला जो आजकल चला है वो है बायो हैकिंग का। लोगों के बीच में ये काफ़ी ट्रेंड में है। यह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस समय ट्रेंड में है। बायो हैक वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से अपनी शरीर और मानसिक कार्य प्रणाली को डीकोड कर जीवन शैली में बदलाव लाकर आपके स्वास्थ्य में मनचाहा परिवर्तन हम ला सकते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक बायो हैकिंग के दो उद्देश्य हैं। पहला तो है सेहत की खामियों को समझना और उसे ठीक करना, और दूसरा है जीवन की गुणवत्ता पूर्वक सुधार लाना और लंबी उम्र पाना। भाई इसके अंतर्गत हमारे शरीर व मन की स्थिति पर लगातार नज़र रखनी पड़ती है। रक्त जाँच, हृदय गति, नींद की गुणवत्ता, वजन की जाँच जैसे परिणामों का पता इससे हमें चलता है। कभी कभी बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हमारा जो है ना वजन जो है घटता नहीं, चाहने के बाद भी। और कभी कभी अनावश्यक बिना मतलब में कुछ नहीं खाया पिया रहता तब भी एसिडिटी हो जाती है। कभी ना अनावश्यक हमारा मन अशांत हो जाता है, चिड़चिड़ापन सा महसूस करता है। ऐसे में यदि हम स्वयं की आदतों को हैक करें, है ना, हैक भाई शब्द तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन यदि हम अपने आप को हैक करें तो हम ऐसी जो समस्याएं हैं, जो छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, उससे हम निजात पा सकते हैं। बायो हैकिंग का मतलब है अपने शरीर और जीवन शैली में वैज्ञानिक तरीके और स्वयं प्रयोगों के जरिए छोटे छोटे बदलाव करके स्वास्थ्य, ऊर्जा, प्रदर्शन और लंबी उम्र को बेहतर बनाना, जिससे आहार, व्यायाम, नींद और तकनीक का प्रयोग शामिल है, ताकि शरीर को ज़्यादा कुशलता से काम करने के लिए किया जा सके। भाई ये बात तो सही है कि स्वस्थ हम जीना चाहते हैं, लंबी आयु हमें चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा होता है कि भाई 30, 35, 40 साल की उम्र के बाद खास करके महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं शुरू हो जाती। तो ऐसे में ध्यान रखें, जैसे अगर आज हमें एसिडिटी हो रही है तो हम बैक पीछे जाएं कि हमने कल क्या खाना रात में खाया था, या हमने टाइम पे खाया था, या हम डेली अगर 8 बजे खाते हैं तो ऐसा तो नहीं हमने कल 10:30 बजे खाया हो, 10 बजे खाया हो। इन सारी चीज़ों को यदि हम हैक करें, इन सारी चीज़ों पे हम ध्यान रखें, नज़र रखें, तो हम अपने आप को ज़रूर स्वस्थ कर पाएंगे और ये गाना गुनगुना पाएंगे।

बहनों, इस समय जो है बहुत सारी बहनें हमारी सोशल मीडिया से जुड़ी रहती हैं और हम भी साथ में जुड़े रहते हैं, और हमने पता ही है कि भाई फेक न्यूज़ और फर्जी जो न्यूज़ आती हैं वो जो है हमें बहुत सारी भ्रामक जानकारियां दे देती हैं, जिन्हें जानबूझकर कभी कभी समाचार के रूप में फैलाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को गुमराह करना, वित्तीय लाभ कमाना या राजनीतिक सामाजिक विचारधारा को प्रभावित करना होता है। यह सोशल मीडिया के माध्यम से तेजी से फैलती है और कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर देती है। तो भाई अब ये प्रश्न उठता है कि हम इन्हें पहचाने कैसे और इनसे हम कैसे बचें। सबसे पहले बहनों, स्रोत की जांच कर लें कि खबर की स्रोत जो है विश्वसनीय पटल से आई है या नहीं, उसको परखें और जानें। हेडलाइन पर ही ना जाएं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हेडलाइन देखकर पूरे में प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। तो हेडलाइन पर ना जाएं, पूरी खबर पढ़ें और जो है उसकी गहराई से उसका थोड़ा सा मनन कर लें, तब जाके उस खबर को आगे तक फैलाने की कोशिश करें। भाई अन्य माध्यमों से पुष्टि करें कि क्या ये जो खबर आ रही है या क्या ये जो कोई दुखद घटना है या कोई आक्रोश फैलाने वाली जो घटना घटित हुई है वो और चैनल पे भी और पटल पे भी ये चल रही है या सिर्फ किसी वेबसाइट पर ही इसकी खबर चलाई जा रही है। तारीख और लेखक भी देखें। कई बार पुरानी खबर को वर्तमान बनाकर भी उसको शेयर कर दिया जाता है। फैक्स फेक चैटिंग वेबसाइट का भी हम ध्यान रखें। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि फेक भी बना देते हैं चैटिंग की साइट्स, और उस पर भी इस तरह की हरकतें होती हैं। तथ्यों की पुष्टि करें। यदि खबर सच्ची लगती है तो उसे मुख्यधारा में मीडिया में आउटलेट्स में भी उसे खोजें। फोटो या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके उसे सर्च करके मतलब असली उसके स्रोत के में जाने की कोशिश करें। यदि कोई खबर आपकी भावनाओं को ज़्यादा उकसा रही है तो उस पर भरोसा करने से पहले दो बार सोचें। अगर खबर बहुत ही अजीब या अविश्वसनीय लगे तो उसे फॉरवर्ड करने से बचें। तुरंत सबको भेजें जहां लिखा हो यह न्यूज़ भी फेक हो रही है, मतलब ये न्यूज़ फेक हो सकती है, यदि फॉरवर्ड करी गई है तो उसको ये ज़रूर बताएं। ये सारी चीज़ों का यदि हम ख्याल रखेंगे तो मानी बात है कि इस तरह की फेक न्यूज़ों से, न्यूज़ से हम बच सकते हैं।

0: ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए, जो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। तो बहनों, अब अपने कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार प्लास्टिक कागज सबका सही ढंग से निपटान स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे खेती किसानी का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। वार्ता का विषय है कृषि आधारित उद्योग एवं कृषकों को लाभ। वार्ताकार हैं डॉक्टर राजू कुमार गुप्ता जी।
4: जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कृषि आधारित उद्योग और उससे कृषकों को होने वाला लाभ। आपको पता है कि भारत जैसे विकासशील देश में कृषि को अर्थव्यवस्था की आत्मा माना जाता है। आजादी के 76 वर्ष गुजरने के बाद भी भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित उद्योगों का पूर्ण विकास न होना एक विडंबना ही है। ग्रामीणों की आजीविका का मूल आधार कृषि ही है। गांधी जी ने कहा है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है, जहां कृषि लाभदायक नहीं है वहां स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। कृषि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। देश का सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण कृषि देश के 70% से भी अधिक जनसंख्या की आजीविका का स्रोत है। इसके साथ साथ उनकी आर्थिक सुदृढ़ता का सरल स्रोत भी कृषि ही है। लेकिन अत्यधिक खेद का विषय है कि जो किसान ग्रीष्म की तपती दोपहरी में खून जलाकर तथा पसीना बहाकर जाड़े की कठोर असह्य शीत को कड़कड़ाते दांतों और कांपते बदन सहकर तथा वर्षा और तूफानों की मार झेलकर फसल उगाता है, उसे उसकी कठोर मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। आर्थिक समृद्धि के लिए निहायत जरूरी है उद्योग धंधे। यदि किसान ग्रामीण कृषि आधारित उद्योग धंधे अपने घर आंगन में विकसित करें तथा

0: हाँ, विपणन व्यवस्था भी अपने हाथों में लें तो निश्चय ही उन्हें न केवल अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिलेगा बल्कि खूब लाभ भी मिलेगा। हाँ, इस कदम के सफल क्रियान्वयन में आवश्यक तत्व होगा पूंजी प्रबंधन तथा किसानों के अपने आपसी सहयोग। यदि वित्तीय संस्थानों के जरिए पूंजी प्रबंध तथा आपसी सहयोग से विपणन समितियों का गठन कर लिया जाए तो ग्राम स्तर पर कृषि आधारित उद्योग सफलतापूर्वक विकसित किए जा सकते हैं। इस दिशा में सुशिक्षित तथा समृद्ध किसानों को अगुवाई करनी होगी, तभी गांव के घर घर में उद्योग स्थापित हो सकेंगे और हमारा ग्रामीण भारत अतीत की भांति समृद्ध हो सकेगा। कृषि उत्पादों पर आधारित अनेक ऐसे उद्योग हैं जिन्हें ग्रामीण अपना कर अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते हैं। आइए हम कुछ ऐसे ही कृषि आधारित उद्योगों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न आधारित उद्योग की बात करें तो गेहूं इसके अंतर्गत प्रमुख खाद्यान्न है। पारिवारिक उपभोग आवश्यकता से ज्यादा पैदा किए गए गेहूं से अनेक ऐसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। मसलन बेकरी उद्योग, दलिया उद्योग, सूजी उद्योग, बिस्किट उद्योग, मैदा उद्योग आदि। इस तरह के उद्योगों की स्थापना से कौड़ियों के मोल गेहूं बेचने की नौबत नहीं आएगी, तब सारा पैसा किसानों के हाथ में आएगा। इसी प्रकार धान भी एक प्रमुख खाद्यान्न है। धान पर आधारित उद्योगों में कुछ प्रमुख हैं चूड़ा उद्योग, लाई उद्योग, चावल तथा भुजिया चावल उद्योग। आपको पता है कि भुजिया चावल में लाइसिन होता है जिसकी वजह से इसे मधुमेह और रक्तचाप जैसे रोगों के रोगी भी खा सकते हैं। धान की भूसी के तेल का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधनों व साबुन में किया जाता है। धान की भूसी से कार्डबोर्ड बनाने, पुआल से कागज बनाने का उद्योग स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा मक्का भी एक उपयोगी खाद्यान्न है। यदि मक्के के व्यावसायिक स्वरूप की ओर ध्यान दिया जाए तो इससे कई लाभकारी उद्योग भी स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे पॉपकॉर्न उद्योग, नमकीन परमल उद्योग, कॉर्न फ्लैक्स उद्योग आदि। मक्के के तने से कागज भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार एक प्रमुख खाद्यान्न है जौ, जो कि खाद्यान्नों का राजा माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों में जौ का प्रयोग कलश गूंथा तथा वेदिका और हवन सामग्री में किया जाता है। जौ से सत्तू और जौ दलिया भी बनाकर बेचा जा सकता है। आइए बात करते हैं दलहन उद्योग की। चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर आदि ऐसी दलहनी फसलें हैं जिन्हें लाभ की दृष्टि से शस्य योजना में विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रोत्साहन देती है। दलहन पर आधारित उद्योग सफलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। चने से बेसन उद्योग, भुने हुए दाने के पैकेट, अंकुरित दाने के पैकेट, नमकीन के पैकेट, बड़ी उद्योग, सत्तू उद्योग आदि लगाए जा सकते हैं। समर्थ किसान अरहर की दाल की मिल स्थापित करके अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं। तिलहन आधारित उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत सूरजमुखी एक नगदी फसल है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है। तेल निष्कासन संयंत्र को लगाकर सूरजमुखी से तेल निकालने का उद्योग सफलतापूर्वक स्थापित किया सकता है। इसकी खली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। कुसुम की खेती का भी प्रचलन अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। तिल का तेल तथा खली दोनों का प्रयोग खाद्य पदार्थों में सत्तू उद्योग आदि लगाए जा सकते हैं। समर्थ किसान अरहर की दाल की मिल स्थापित करके अच्छा धनोपार्जन कर सकते हैं। तिलहन आधारित उद्योग की बात करें तो इसके अंतर्गत सूरजमुखी एक नगदी फसल है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए विशेष उपयोगी है। तेल निष्कासन संयंत्र को लगाकर सूरजमुखी से तेल निकालने का उद्योग सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सकता है। इसकी खली के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। कुसुम की खेती का भी प्रचलन अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। तिल का तेल तथा खली दोनों का प्रयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। सरसों का तेल और खली दोनों उपयोगी हैं। यदि शुद्ध तेल के पैकेट अथवा डिब्बे उद्योग के रूप में तैयार किए जाएं, तो यह उद्योग गांव में विशेष रूप से सफल हो सकता है। तीसी का तेल साबुन निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसके तेल का व्यापारिक महत्व है। सोयाबीन से अनेक उद्योगों की स्थापना संभव है। सोयाबीन से दूध दही मट्ठे के साथ इसकी बढ़िया बनाई जाती है। इसकी मांग आजकल बाजार में काफी है। महुआ के फसल से तेल निकाला जाता है। विभिन्न वनस्पति तेल उत्पादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जाड़े के दिनों में महुए की खली या महुआ जानवरों को खिला देने से उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अतः महुआ की कोयने और महुआ दोनों के विपणन से धनोपार्जन किया सकता है। नीम एक ऐसा पौधा है जिसके गुण अपार हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में नीम की उपयोगिता के विषय में विशद विवेचन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही देश के पौधे नीम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापारिक समझौते में पेटेंट कानून के तहत इस पर अमेरिका का अधिकार हो गया है। नीम का तेल कीटाणुनाशक होता है। सब्जी आधारित उद्योग की बात करें तो हरी पत्तियों वाली सब्जियों जैसे पालक, मेथी, धनिया, चौराई आदि को छाया में सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जा सकता है। इस पाउडर को ऑफ सीजन में प्रयोग किया जा सकता है। यह पोषण युक्त होते हैं। इनके पैकेट तैयार करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। कंदीय सब्जियों तथा ट्यूब दोनों के विपणन से धनोपार्जन किया सकता है। नीम एक ऐसा पौधा है जिसके गुण अपार हैं। हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में नीम की उपयोगिता के विषय में विशद विवेचन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अपने ही देश के पौधे नीम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापारिक समझौते में पेटेंट कानून के तहत इस पर अमेरिका का अधिकार हो गया है। नीम का तेल कीटाणुनाशक होता है। सब्जी आधारित उद्योग की बात करें तो हरी पत्तियों वाली सब्जियों जैसे पालक, मेथी, धनिया, चौराई आदि को छाया में सुखाकर उनका चूर्ण बनाया जा सकता है। इस पाउडर को ऑफ सीजन में प्रयोग किया जा सकता है। यह पोषण युक्त होते हैं। इनके पैकेट तैयार करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। कंदीय सब्जियों तथा ट्यूबर जैसे आलू को भविष्य के लिए सुरक्षित किया सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आलू को आधा उबालकर उसमें हल्दी और नमक मिलाकर तथा धूप में सुखाकर सुरक्षित कर लेते हैं और ऑफ सीजन में इसका उपयोग करते हैं, यानी चिप्स बनाते हैं। टमाटर के जैम, जेली, रस आदि उत्पाद तैयार करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। फूलगोभी तथा पत्ता गोभी को भी छाया में सुखाकर आरक्षित किया जा सकता है। इन्हें पैकेट में रखने से पूर्व धूप में भी एक बार सुखा लेना आवश्यक होता है। इनके रंग तथा पोषक तत्वों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मोथा की बात करें तो मोथा खरपतवार है। इससे हमारे किसान भाई ज्यादा परेशान रहते हैं। एक तरफ फसलों के लिए जहां यह हानिकारक है, वहीं दूसरी तरफ इसकी उपयोगिता भी विशिष्ट है। इसके राइजोम का पाउडर बनाकर यदि बाजार में बेचा जाए तो अच्छा धनोपार्जन किया जा सकता है। इसका बाजार विशेषकर लखनऊ है। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड तथा सुगंधकों मोथा पाउडर खरीदता तथा बेचता है। दक्षिण भारत में अगरबत्ती बनाने में इसका खूब प्रयोग होता है। आजकल शहरों में प्रचलित ब्यूटी पार्लरों में इसका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ज्वर को दूर करने में भी मोथा पाउडर तथा ताजे राय पुनः गाँव में स्थापित कर गाँव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कटिबद्ध है। अनेक वित्तीय संस्थाएं ऋण सुविधा मुहैया करा रही हैं, जिनका लाभ उठाकर ग्रामीण आय के स्थायी स्रोत के रूप में इन उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम विधानसभा की 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को लगभग 79% मतदान हुआ था।
2: वरिष्ठ अधिकारियों ने केरलम के सभी 140 मतगणना केंद्रों पर तैयारियों के अंतिम दौर की समीक्षा की है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे ये प्रक्रिया सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। अधिकारियों को कल सुबह 6 बजे तक मतगणना केंद्रों पर पहुंचने का निर्देश दिया गया है। मतगणना एजेंटों को भी मतगणना शुरू होने से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए जारी किए गए QR कोड वाले पहचान पत्र को साथ रखना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। स्मिथ एम पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कारिक्काल, यनम और माहे में होगी।
2: पुदुचेरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना लासपेट इलाके में स्थित 3 केंद्रों पर होगी। ये मतगणना केंद्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इन जिलों में निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में पुलिस विभाग और अर्धसैनिक बलों द्वारा 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
3: सुपरविजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
4: सभी पार्टियों ने मतगणना प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई है। DMK और TVK ने मतगणना के दिन गड़बड़ी की आशंका जताते हुए राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के 234 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। सभी मतगणना केंद्रों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। EVM और VVPAT मशीनों को पूरी सुरक्षा और व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम से केंद्रों में भेज दिया गया है। राज्य भर के प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मतगणना केंद्रों के पास यातायात को भी डायवर्ट किया गया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। राज्य में 9 अप्रैल को लगभग 86% मतदान हुआ था।
5: जनादेश 2026।
6: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
5: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
6: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
5: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
7: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य में कदाचार, शासन व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में आयोजित 1 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र में नशे की हालत में भाग लिया, जो चिंता का विषय है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल मोहाली में लोक मिलनी के दौरान कहा कि विपक्षी दल उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल जनता के कल्याण के लिए राज्य सरकार के कार्यों से ईर्ष्या करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के ओपेक प्लस से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस तेल का अधिक उत्पादन करेगा। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी।
8: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
9: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोग।

0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। और बात मौसम की, उत्तराखंड में कई इलाकों में रुक रुक कर वर्षा जारी रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों में विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार आज और कल भी राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना है। विभाग ने इस दौरान गर्जन के साथ बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: आज पूर्वोत्तर भारत, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराया था। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक चलेगी। संयुक्त अरब अमीरात में भी भारतीय मूल के विद्यार्थी नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र करुणा, सेवा और जीवन भर सीखने की प्रतिबद्धता का क्षेत्र है। ईरान ने संघर्ष विराम के लिए अमेरिका को 14 सूत्री प्रस्ताव सौंपा है। इसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करने की रूपरेखा पेश की गई है। प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि कूटनीतिक प्रयासों में युद्ध विराम को केवल बढ़ाने के बजाय युद्ध की समाप्ति को प्राथमिकता दी जाए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल इस प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त किया, लेकिन कहा कि वे इसकी समीक्षा करेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच दूसरे सैन्य अभ्यास सिनबैक्स के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी कंबोडिया रवाना हो गई है। सेना के अपर लोक सूचना महानिदेशक ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह अभ्यास 4 से 17 मई तक होगा, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेना के बीच अर्ध शहरी परिवेश में किसी भी अभियान के लिए तालमेल को और बेहतर बनाना है। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सभी इंतजाम पूरे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा सीट के सभी 285 केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली के विवेक विहार क्षेत्र में भीषण आग में 9 लोगों की मृत्यु। पश्चिम एशिया में वर्तमान संकट के बीच ओपेक प्लस देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4 बज रहे हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। अब से कुछ ही देर में हम पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। नमस्कार, जय हिंद।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को ए मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहाँ ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्ण चंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इस पे बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
2: जी।
1: तो कादर खान हमारे प्ले में मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
2: अच्छा।
1: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे जेल आउट के बाहर और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा, यार मुझे दो मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चल रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया, तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
2: हाईजेक हो गया प्ले।
1: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
2: हाँ।
1: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन बंदर प्ले खेला
2: जी,
1: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
2: इस बार वो ले गए
1: लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे।
2: हाँ।
1: के एम मुंशी की वाइफ
2: जी
1: भारतीय भवन की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
2: हाँ हाँ।
1: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था या 50 से चलता आ रहा था और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
2: बाद में फिर शुरू हुआ,
1: फिर वो उधर बहुत बाद में किया, अभी किया
2: जी।
1: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
2: जी,
1: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
2: तब तक आखिर क्या थी?
1: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था समझिए 23 साल,
2: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल
1: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
2: जी।
1: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे। और प्ले ख़त्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा सर। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूँगा फिर करूँगा आपके लिए। तो उन्होंने बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से तो मैं काफ़ी
2: आगे
1: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसने उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर,
3: हाँ हाँ,
1: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
3: yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठंडी में
3: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
3: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, विशाल राम की सारी,
3: मतलब
1: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे, जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: एक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो ये सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती शूटिंग, रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया कहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमच भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं, प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसा क्यों, उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ। और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, अचानक और बी आर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा, मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी, बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था, कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था, मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा, और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा, साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई, मैं भी अपने उस तरह सोचने लग गया, जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं, इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई, तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया, तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे, मैंने कहा ऐसा कर ले, तो सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है,
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे, और एंड में लोग सब थक के सो गए, कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं, विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी,
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना।
1: हाँ।
0: लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे, जोश वाले, तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया।
1: हाँ।
0: और वो शॉट ले लिए,
1: वाह वाह।
0: तो यश जी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो, तो यश जी हमने लिए आप देख लीजिए, पर वो उस वक्त तो देख नहीं सकते, तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया, और ये भी ले लिया, वो चीज उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे, और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई एक महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही, और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया, कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया, एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे, तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन।

0: फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ।
0: हाँ, और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया। मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं, तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए। तो कह रहे हैं बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, चार पांच शो के बाद आता हूँ। मैं बोला आज देख लीजिए, फिर पांचवें में फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊँ यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे मैं आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं तीन पिक्चर बनाऊँगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए, पाँचवा रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसे ही तब यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए, असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर, मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए आप। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आज़ाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सच्चे वाले में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैंने यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूँगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फ़ायदा था कि कोलीवाड़ा

0: में जो लिंक वाले बातें हुआ ये कि कुछ बंबई बंद हो गई। हम
1: जी
0: वापस जब जाते थे ना तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ
0: रमन कुमार,
1: हाँ
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे। तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी।
1: जी जी
0: तो ट्रक वाला चोनी लेता था, 8 आने लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त ज्ञान। वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे उसमें। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए और हम लोग सब जो है बैठे वो, तो हम दादर सब लोग उतरते थे वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे। फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से किंग सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज़्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था। कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसका जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर BA जब इन्होंने इनके संग की थी, वहाँ नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके,
1: हाँ हाँ।
0: तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर,
1: हाँ
0: भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीज़ें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आता था मुझे, टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीज़ों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

0: आप चाहे लग जाए करिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली मन तुझ पे नियत कर ली
1: मैंने हंसकर हामी भर ली
0: ओ यारी छूटे ना
1: हाथ

0: चेहरा उठे या दुनिया मैंने तेरी बाह पकड़ ली, मन तुझे नियत कर ली,
1: मैंने हंसकर हामी भर ली,
0: ओ यारी छूटे ना
1: छूटे ना
0: चाहे सर फूटे या माथा।

0: सब करते करते पहले में, और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहां कर लिया था, और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था, क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा, अपने आप खाओ, ठीक है, ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले, और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया, उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश, तू क्या कर रहा है? मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है, वो ले गया मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदा नहीं होगा। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना हीरो
1: हो गई।
0: हाँ, और अपनी दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी, बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है तो बोलो रमेश लिख दो वहाँ पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो वो मैंने लिख दिए वहाँ पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आता था ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश खन्ना की यूं क्यों गया।
2: हाँ।
0: तो ऐसा भी था। तो अलबत्ता खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की, अब मुझे यशजी ने कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो। मैं
1: लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर यश जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब, राखी, हेमा मालिनी जी, और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने

0: जाते हैं, शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डालें, कुछ अभी भी ऐड कर डालें,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज़ ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है, वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे। वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन मेक निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे।
1: जी जी,
0: तो वैसे ही पॉइंट मैं बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वही है, तो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर है बहुत देखिए, ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है, ये आपको हूट कर रहे हैं।
1: जी जी,
0: तो इंटरकॉलेजेट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्त एनी वेज वहाँ देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी। देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं?
1: अरे बाप रे।
0: तो जज जी ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था,
1: हाँ।
0: पहले मुझसे बोला हुआ, पूछो, मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने,
1: हाँ हाँ।
0: तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं,
1: हाँ।
0: तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया।
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई, उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों, लिखा बच्चे के हाथ में,
1: हाँ।
0: मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं, तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है,
1: हाँ।
0: फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई,
1: हाँ।
0: मैं यहाँ बैठा हूँ वो फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: हाँ, तुम मुझे
0: हाँ, कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ
1: बैठा हूँ,
0: हाँ, समथिंग लाइक दैट। मैंने 25 हफ्ते
1: आए, आए।
0: फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश हाँ। प्लीज निरीक्षण में ये सब मत बोलो,
1: हाँ।
0: चुप रहो, पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटें नहीं थी,
1: हाँ।
0: और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को
1: जी।
0: पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का
1: हाँ।
0: इंग्लिश
1: शॉर्ट
0: शॉर्ट शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे, अब हाँ। तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी होगी थी वो
1: हाँ। जंजीर,
0: तो अब तो मैं हीरो हिट होगा
1: हाँ।
0: तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर लें समथिंग
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज़्यादा करता है अमिताभ बच्चन
1: हाँ।
0: अगर आप जंजीर देखें उस हिसाब से ये ज़्यादा शूट करेगा, तो उन्होंने कहा अच्छा मान गए, और इनकी डेटें भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की। शशि कपूर जो थे
1: हाँ, वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था हाँ। उनको छोटे भाई का रोल करना था
1: हाँ।
0: अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे। तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है
1: हाँ।
0: अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना उससे बेटर रोल है कभी कभी मैं आपका, दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक
1: गुलशन राय के,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए
0: हाँ, कोई बोल देता बीच डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है जो बोलने में ऐसा ना लगे कि मैसे बनावटी। तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया
1: हाँ।
0: कि भाई देखिए लेंथ वाइज वो है, पर छोट लो मैं इसका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे बालों का ये कर लेंगे उसका ये कर लेंगे, जो यश जी ने कन्विंस किया वो मान गए। ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है, इन लोगों ने भी सलीम जावेद ने कहा अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे, बेस्ट एक्टर का अवार्ड ना मिला, तो उनको मिला
1: बिल्कुल,
0: रोल भी मिला उसमें।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया, आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकला आया, तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट हो गई साहब,
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे।
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना अभी।
1: आप चीफ असिस्टेंट हो
0: गए। अब हो गया सब जगह। तो वो मैंने कहा ना, पहली पिक्चर करते करते दाग में चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे। जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें सब
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट रमेश तलवार।
1: दीवार में गाने नहीं थे शुरुआत?
0: गाने शुरू में दो गाने थे, एक नौकरी मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम बेलो, दो ही गाने थे। कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए। क्या होता था, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए अपने
1: मंगेश देसाई। री रिकॉर्डिस्ट बहुत बड़े,
0: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जज जी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते फौरन, कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो जजी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: आपने नरेशन के समय
0: वही क्या? तो कहने लगे नहीं बेटा वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है देवन और हमारे गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पर गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवन वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट लिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो उसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो यश जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम पीछे, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, यश जी बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज़्यादा वो सब बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपकी अगली पिक्चर नहीं करेंगे। गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से भी कहा,
1: सिर्फ इस कबाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पाँव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना?
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी।
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा के, शुरू में रिलीज से पहले काट दी, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था। बाद में कुछ आपस में जो भी होगा, नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके
0: थे। मैं बन चुका था,
1: तब तक तो बसेरा
0: बसेरा आगे थी। हाँ। बसेरा आगे थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए,
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा, और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ,
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है, ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है ख़राब हो चुका था, ख़राब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी, मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था
1: जी जी,
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं इसमें, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे, हमारे पास है ऑलरेडी जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी।
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं, हमको 21 अभी मिले नहीं हैं, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उस
1: पिक्चर। अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए या आप खुद प्रोड्यूस भाई। तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे साथ ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या, कहा आपने। मैंने कहा नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पर, जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जुहू पे
1: जी,
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को ऐसा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ, थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफ़ी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज़्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी।
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए ओए।
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था कि वो मान गए हैं, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने। और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।

मीडियम एफ 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:59 और 44 सेकंड हो रहे हैं। कुछ पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: उधर केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकाल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 पर आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार तीसरा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश अधिक उत्पादन करेंगे। अमेरिका ने निक स्टीवर्ट को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए काम कर रही राजनयिक टीम के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की टीम में शामिल निक एक अनुभवी नीति विशेषज्ञ हैं। उन्होंने पहले ट्रंप प्रशासन के दौरान विदेश विभाग में ईरान से संबंधित मुद्दों पर काम किया है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 18वें ओवर में 9 विकेट पर 156 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। उधर अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से शाम 7:30 से होगा। आज पूर्वोत्तर भारत, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में बादल गरजने और बिजली गिरने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम युववाणी।

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के युवाड़ी कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में आप हैं अपनी दोस्त ज्योति।

रचना के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी होंगी आपसे ढेर सारी बातें, कुछ रोचक जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक सुविचार से। दोस्तों, सफलता का एक मूलभूत नियम है कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। दोस्तों, ये था आज का सुविचार, और अब इस सुविचार के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और बात करते हैं विश्व हास्य दिवस के बारे में, जो कि हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है, और इस साल ये दिवस आज के दिन यानी कि 3 मई को मनाया जा रहा है। ये दिन हंसी के स्वास्थ्य लाभों और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जिसकी शुरुआत 11 जनवरी 1998 को मुंबई में किया गया था, और इस दिवस की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है, जिन्होंने विश्व हास्य दिवस का आरंभ संसार में शांति की स्थापना और मानव मात्र में भाईचारे और सद्भाव के उद्देश्य से किया था, और तब से हर वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, और हर वर्ष इस दिवस को एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि दोस्तों, इस वर्ष का थीम हंसी के माध्यम से विश्व शांति है। इस थीम का उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य, मजबूत रिश्ते और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण करना है। इस दिन कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को हास्य दिवस के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, वर्ल्ड लाफ्टर डे एक वार्षिक कार्यक्रम है जो विश्व स्तर पर हंसी और इसके अनेक स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ दुनिया भर के हजारों सामुदायिक समूहों, जिन्हें आमतौर पर लाफ्टर क्लब के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये समूह नियमित रूप से हंसी के सरल तकनीकों का अभ्यास करते हैं, जो स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बढ़ावा देती है, जिससे कि समाज में शांति और भाईचारा बनी रहे। इसी के साथ दोस्तों, आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

बेहतर शिक्षा ग्रहण करते हैं और पढ़ाई के दौरान भी जमकर मेहनत करते हैं, जिससे कि वे एक अच्छे करियर की ओर अग्रसर हो सकें। वैसे देखा जाए तो एक अच्छे करियर बनाने के कई क्षेत्र हैं जो कि आप चूज़ करके उसमें अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो आसमान की ऊंचाइयों में ही अपना करियर बनाने की चाह रखते हैं। और यदि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए ये फील्ड एक बहुत ही बढ़िया विकल्प हो सकता है। अंतरिक्ष की तरह ही अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई की भी कोई सीमा नहीं है, इसमें भी कई शाखाएँ हैं जिसकी पढ़ाई करते हुए आप खुद को इस फील्ड में ही आगे बढ़ा सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स, कार्टोग्राफ, नॉन अर्थ प्लैनेटरी साइंस और बायोलॉजी ऑफ अदर प्लैनेट जैसी और भी कई शाखाएं हैं जिसमें विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है। और स्पेस साइंटिस्ट के इस पदों के अलावा मेट्रोलॉजिकल सर्विस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा स्टडी के फील्ड से जुड़कर भी एक बेहतर करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात इस फील्ड के लिए काफ़ी साहसी, दृढ़ और वैज्ञानिक प्रवृत्ति का होना आवश्यक है, क्योंकि यह रोजगार के लिए एक ऐसा सेक्टर है जिसे काफ़ी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। यह फील्ड जितना रोचक है इसमें मेहनत भी उतना ही है। तो यदि आप भी इस फील्ड का चुनाव करते हैं तो इसके लिए आप चाहें तो 12वीं के बाद से स्पेस साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं या फिर इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए आपको गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र से 12वीं या स्नातक पास होना जरूरी होता है। देश भर में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो स्पेस साइंस में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कोर्सेज करवाती हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर जैसी कई संस्थाएँ हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर स्पेस साइंस की पढ़ाई पूरी करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बातें अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाने के बारे में। आइए इन्हीं बातों के साथ सुन एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हर युवा चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब हो, उसका जीवन स्तर बेहतर हो और वो पूरी तरह से सफल हो। इसके लिए वे कई तरह से प्रयास भी करते हैं, जैसे कि एक अच्छी और

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब इस गीत के बाद हम पुनः चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस के बारे में, जो कि हर साल आज के दिन यानी कि 3 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मीडिया की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों का जश्न मनाना, प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन करना, मीडिया पर हमलों से रक्षा करना और कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाने वाले पत्रकारों को श्रद्धांजलि देना है। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना भी इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस की यदि हम इतिहास के बारे में बात करें तो साल 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को यह दिवस की घोषणा की थी और साल 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और तब से लेकर अब तक हर साल 3 मई को यह दिवस मनाया जाता है और हर साल ये दिवस एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। जैसे कि इस वर्ष का थीम शांतिपूर्ण भविष्य को आकार देना है, जो पत्रकारिता, तकनीकी विकास और मानवाधिकारों के बीच अंतर संबंधों पर केंद्रित है। यह थीम संघर्ष और संकट के समय में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका और ऑनलाइन मीडिया की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर जोर देता है। इसके अलावा इस दिन कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को आज के दिन के प्रति अधिक से अधिक जागरूक करना है। तो दोस्तों, बातें हम आगे और भी करेंगे, वक्त हो चला एक और गीत सुनने का, तो चलिए सुन लेते हैं इस प्यारे से गीत को।

दोस्तों इसी के साथ समय हो चला है प्रश्नोत्तरी का, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं हमारे कल के पूछे गए प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों कल का प्रश्न था, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जिसका उत्तर है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों इसी प्रश्न के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ ऐसी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। ग्रामीण भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: मौसंगी हर पल चंदन का एहसास।
1: पंचो जय हिंद।
2: हाँ तो पंच भाई यही नारा के साथ आज का अपनी बैठकी शुरू भेल। पंच भाई हमन के बैठकी का इंतजार कर रहे हैं कि हमन के बैठकी में नए नए विषय पे चर्चा कर जाला।
1: सही कर
2: और नई नई जानकारी दिया जाला। पंच भाई आज पूरे विश्व में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाओल जात
1: बाटे। सही कर भैया। भैया आप जौन बा ना अपन प्रेस जौन बाटे ओकर मुख्य भूमिका यह रहला कि बाकी कौनो के दबाव में कोनो बात ना केहू कही चाह सुनी। प्रेस के ही इतना कर जा स्वतंत्रता रहे ताकि निष्पक्ष भाव से अपन वो सब बात अपने कहें।
2: और भैया जौन ई दिवस मनाओल जात बाटे ई शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा एकर घोषणा मनौले के कई रहल। और ए दिन के मनौले के बदे 1991 में यूनेस्को में अपने 26वें महासभा के सम्मेलन में सिफारिश कई गई है कि विश्व के जो जितना प्रेस बाटे ओके स्वतंत्र कह दिया जाए। मतलब केहू के दबाव में काम नहीं कहीं
1: राजनीतिक दबाव रहे न सामाजिक दबाव केहू के दबाव में न रहे बल्कि निष्पक्ष भाव से अपन जौन चीज सच्चाई भाव के सामने सबके समाज में पेश कर।
2: और ये सबसे बड़ी बात है सबसे पहले अफ्रीकी पत्रकार लोगन ख्याति सबसे पहले एक जवाब दिल गए विंडहॉक घोषणा पत्र में 1991 में एक मतलब एक पत्र प्रकाशित कर गए और कहल गए कि पूरे विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनावल जाए।
1: अच्छा।
2: और पूरे विश्व में प्रेस की आज़ादी दिवल जाए कि पूरे विश्व में कहीं भी वो राजनीतिक दल या कोनो संगठन या अन्य मतलब पदाधिकारियों के दबाव में वो काम नहीं करें।
1: केहू के दबाव में नहीं काम करें बल्कि निष्पक्ष भाव से अपने बात तो रखें।
2: हाँ और ये जैसे जो दिवस मनावल जात बाटे ओकरे पीछे कोनो कोनो उद्देश्य लेके मनावल जाला। और एक उद्देश्य ही है कि पूरे विश्व समुदाय के प्रेस के स्वतंत्रता के विषय में जागरूक बनाए बा।
1: अच्छा।
2: हाँ और प्रत्येक वर्ष जब जब भी मतलब दिवस मनावल जाला कौन कौन विषय के केंद्र में रख के मनावल जाला।
1: जैसे ये बारी कौन कौन विषय रखल
2: बा भैया इस बार के केंद्र के विषय बाटे जौन शांतिपूर्ण भविष्य के निर्माण।
1: अच्छा।
2: यानी कि भविष्य के जो निर्माण कैरे बाटे ओके शांतिपूर्ण तरीके से कैसे कैल जा वो विषय के केंद्र में रख के
1: समाज में सामाजिक समरसता बनल रहे अपन भाईचारा बनल रहे एकर मुख्य रूप से
2: ध्यान में रख के अब केंद्र मनावल जात बाटे। और आज के समय में जौन बाटे हम सब बाटी जौन सत्य स्वतंत्रता और डिजिटल युग में जवाबदेही के साथ साथ स्थायी शांति के खातिर मतलब ई दिवस मनावल जात बाटे कि सबके स्थायी शांति मिल सके।
1: हाँ।
2: और स्थायी शांति मिलने के बाद से हम लोग ओकरे प्रति जवाबदेह बन सकें।
1: सही कर भैया।
2: और सबसे बड़ी बात बाटे कि प्रेस के स्वतंत्रता जोन बाटे विभिन्न मीडिया माध्यमन के द्वारा स्वतंत्र रूप से संचार और विचार के अभिव्यक्ति के प्रकाशित करे खातिर संरक्षक करेगा। और जब संरक्षित कर जाए केहू के संरक्षण देवल जाए तो अपन अपन आवाज वहां तक पहुंचावल जा सकाला।
1: सही कर भैया।
2: तो यह नाते प्रेस के स्वतंत्रता बहुत जरूरी बाटे। और ऐसे जोन बाटे जहाँ कहीं के कमी होला ओके उजागर कर जा सकाला।
1: भैया कहल जल ने जब जब कोनो भी प्रेस अगर नहीं रहे तो समाज में अपन बाटे की अराजकता फैल जाए कोनो विवाद कहते इन प्रेस का कला कि सच्चाई दिखावला और उससे समाज में एक शांतिपूर्ण माहौल के अपन बनौले के काम करला।
2: और जो ई दिवस मनावल जालवा ओमे का है कि जोन पेशेवर मीडिया कर्मचारी बाटे उनके खातिर प्रेस के स्वतंत्रता और इनके नैतिकता के जुड़न मुद्दा के चिंतन कैल जाला ऊपर चर्चा कैल जाला।
1: सही कल भैया देखा चर्चा तो होते रही हम चाहते लगल आज सुनल जा पंच भाई झलकी दरवाजा मत खोलना अपन पंच भाई सुना।

0: अरे शीला, ओ शीला,
1: क्या है?
0: अरे देखा तो कौन आ गया सवेरे सवेरे।
1: अब तुम ही देखो ना जाकर, मैं चाय बना रही हूँ।
0: अरे भाई मैं भी तो मंजन कर रहा हूँ, तुम ही देखो ना जाके कौन आ गया।
1: ओफो, देखती हूँ।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: क्या बात है, कौन है आप लोग?
2: जी वो राजेश बाबू हैं।
1: हाँ हाँ है, क्या काम है?
0: जी हम लोग वो वोट मांगने आए हैं।
2: ऐसा है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: चुनाव हो रहे हैं ना?
3: क्या बात है।
0: नमस्ते नमस्ते।
3: शीला तुम अंदर जाओ। हाँ कहिए।
2: जी जी ये कहना है कि वोट हमें ही दीजिएगा।
0: जी, जी।
2: ये रहा मेरा चुनाव चिन्ह।
3: अच्छा अच्छा,
2: ये थोड़े से बिल्ले हैं, रख लीजिए,
3: आप
2: भी लगा लें और अपने मित्रों को भी बांट दें।
3: अच्छा अच्छा,
2: धन्यवाद धन्यवाद।
3: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो इन्हें भी जेब में डाल लो, मौके पर काम ही आएंगे। अरे भाई शीला, देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, कपड़े बाहर रख दो।
1: जी अच्छा। अजी सुनते हो, ये जेब में इतने सारे चुनाव के रंग बिरंगे बिल्ले क्यों भर रखे हैं?
3: अरे भाई अब इस समय जेब क्यों छुछवाई जा रही है? अरे पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेती, आदत से मजबूर हूँ, हजार बार कह चुका हूँ जेब में हाथ मत डाला करो।
1: सात भावरे घूम कर आई हूँ, तुम्हारी जेब पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। हाँ अच्छा अब बता दो, ये रंग बिरंगे बिल्ले क्यों जेब में भरे घूम रहे हो? उफ, मैं तो समझी थी रेस गाड़ी है, इसीलिए हाथ डाला था, उल्टी मुई आलपिन उंगली में घुस गई।
3: मेरी प्रिय पत्नी जी, इसीलिए कहता हूँ जेब में हाथ मत डाला करो, वो सुई नहीं आलपिन होगी। कभी कभी तो मेरी जेब में बिच्छू और ततैया भी होते हैं, कहीं काट काया तो ढूंढती फिरोगी।
1: तो बताते क्यों नहीं, ये इतने सारे बिल्ले जेब में क्यों रखे हो?
3: क्यों, तुम्हें अच्छे लगते हैं लोगी? अच्छा ले जाओ, जाओ जाकर खेलो।
1: जाओ, मैं नहीं बोलती तुमसे। हाँ
3: ओह मेरी बला से ना बोलो। अरे बोलने वाले आजकल बहुत हैं, पहले जो अजाई मुंह घुमाकर चले जाते थे वही आजकल तलवे चाटते हैं, क्या समझी?
1: अब समझी, इसीलिए आजकल तुम ऑफिस से देर में लौटते हो। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं आज ही अपने मायके जाती
3: हूँ। अभी नहीं, ऐसा शीला कल चुनाव है, वोट डालकर चली जाना और फिर चाहे कभी मत आना।
1: ठीक है चली जाऊंगी, नहीं आऊंगी कभी नहीं।
3: आखिर तुमने आठवां अवगुण प्रकट ही कर दिया। चलो ठीक है, अब ज्यादा तंग करना अच्छा नहीं, बता ही तू। अरे भाई ये बिल्ले उन सभी प्रत्याशियों के हैं जो इस बार चुनाव के अखाड़े में ताल ठोक कर उतरे हैं, और तुम तो जानती हो आजकल वोट मांगने वाले किस तरह गली कूचों में चक्कर लगा रहे हैं। अरे भाई सबका मन रखना पड़ता है, जब जैसा मौका देखा उसी पार्टी में बिल्ला लगाकर शामिल हो गया।
1: अच्छा तो अब मैं समझी, अवसरवादी हो तुम। बड़ी पहुंची हुई चीज हो भाई।
3: अब हंसी आई है तुम्हें क्यों? अच्छा तुम ठीक से दरवाजे बंद कर लेना है, मैं चलता हूँ। और हाँ कोई चाहे कितना ही बुलाए, सर पटक पटक के मर जाए, मगर तुम दरवाजे मत खोलना, जमाना बहुत खराब है।
1: वाह ये भी खूब रही, दरवाजे बंद रखना दरवाजे मत खोलना, जैसे कोई मुझे उठा ले जाएगा।
3: ये बात नहीं है शीला, तुम समझती क्यों नहीं? अरे भाई रोज अखबारों में पढ़ती हो, टीवी ठीक करने के बहाने से, मीटर रीडिंग के बहाने से, टेलीफोन ठीक करने के बहाने से बदमाश घरों में घुस आते हैं, खासकर जब उन्हें पता होता है कि घर में अकेली औरत है, दबा दिया गला और लूट कर चलते बने।
1: हाय राम, अरे बाप रे, मैं नहीं रहूंगी अकेली, मुझे भी साथ ले चलो ना।
3: अरे तुम तो खा घबरा गई डार्लिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम दरवाजे मत खोलना। अच्छा मैं चलता हूँ।
1: ठीक है मगर जल्दी आना, ज्यादा रात मत करना, मुझे डर लग रहा है।
0: मैं आ जाऊंगा।
4: पोस्टमैन मनी ऑर्डर, पोस्टमैन।
2: क्या बात है, कोई बोलता क्यों नहीं?
4: अरे राजेश बाबू, राजेश बाबू।
1: क्या पोस्टमैन पोस्टमैन लगा रखा है, मैं सब समझती हूँ, भाग जा। नहीं तो शोर मचाऊंगी चोर उचक्के कहीं के। बड़ा आया है पोस्टमैन बनके मुझे लूटने। चल भाग जा।
3: अरे अरे बहन जी, आज आपको क्या हो गया है? कोई बात नहीं, मत लीजिए मनी ऑर्डर, मैं चला जाता हूँ।

0: अगर राजेश बाबू आए तो उनको बता दीजिएगा।
1: हाँ हाँ चल फूट यहाँ से, बड़ा आया है पोस्टमैन।
0: अरे दूध, दूध वाला, अरे दूध ले जा बहन जी।
1: अच्छा तो अब पोस्टमैन दूध वाला बन गया। नहीं खोलूंगी। मैं सब जानती हूँ तुम लोगों के हथकंडे, अब की सब्जी वाला बन के आना। नहीं खोलूंगी दरवाजे, चल भाग यहाँ से।
0: अरे अरे बहन जी, आज आपको ही कहा हुई गवाह है। अरे दरवाजा खोलो, अरे दूध तो ले लियो, खोलो दरवाजा।
1: नहीं लेना है मुझे दूध वूध, चल फूट यहाँ से।
0: अरे कहा हो गए आपके, खैर जैसा तुम्हार मर्जी, जाए था हम अपने ना लियो दूध।
2: अरे क्या बात है दूध वाले।
0: अरे पता नहीं बहन जी, अंदर का लफड़ा है, आज सीला बहन जी दरवाजे नहीं खोल रही है, अरे दूध है नहीं ले रही है।
2: दरवाजा नहीं खोल रही है, जरूर कोई गड़बड़ है। अरे दूध वाले परसों ही मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी अकेली जिंदगी से बहुत ऊब चुकी हूँ, ये दिन दिन भर बाहर रहते हैं, रात को भी देर से आते हैं, मैं तो किसी दिन अपनी जान दे दूंगी।
0: जान दे दी है?
2: हाँ लगता है जान देने की तैयारी कर रही है। हाय राम, चलो चलो मोहल्ले वालों को बताओ, अरे नहीं तो अनर्थ हो जाएगा अनर्थ।
0: अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो।
3: कौन है? अच्छा आइए आइए सुधा जी, आप क्या बात है?
2: बात क्या है उमेश, अरे बड़ा अनर्थ हो गया है।
3: क्या हुआ सुधा, क्या बात है?
2: अरे वो अपनी शीला है ना, शीला,
3: हाँ हाँ।
2: उसने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है।
3: अच्छा?
2: खोलती ही नहीं है। पोस्टमैन आया चला गया, दूध वाला आया वो भी लौट गया।
3: अच्छा?
2: मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है उमेश, चलो चलो जरा चलकर देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो चलो। ऐसा है सुधा,
2: हाँ।
3: मोहल्ले के कुछ और लोगों को भी हम लोग बुला लेते हैं।
2: हाँ, हाँ,
3: चलो।
2: हाँ ठीक कहते हो, तो चलो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे डरो नहीं, चलो चलो आप।
2: शीला, अरे दरवाजा खोलो शीला। अरे ये क्या पागलपन है, अरे मैं कहती हूँ, अरे सबके आदमी इसी तरह के होते हैं, तो कोई जान थोड़े ही दे देती है। पागल मत बन शीला, शीला अरे दरवाजा तो खोल शीला।
1: मैं सब जानती हूँ, तुम औरतें भी कम नहीं होती हो। हाँ अब समझी, पूरा गैंग है तुम लुटेरों का, आवाज बदल कर बोलने में तो तुम माहिर होती ही हो, अकेली जानकर मुझे लूटने आए हो सब लोग। हाँ लेकिन मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी।
2: हे भगवान, हे भगवान, अरे कैसी पागल औरत है। उमेश सुनो, तुम ऐसा करो कि हाँ वो तुम ना पीछे पाइप है ना, पाइप पे चढ़ के आंगन में उतर जाओ और देखो तो क्या बात है।
3: हाँ ये ठीक है, मैं देखता हूँ। अरे अरे
4: संभल के, देखो ठीक है चलना।
3: अरे सुधा, शीला भाभी तो आराम से आंगन में बैठी हुई भुट्टे खा रही है।
2: क्या?
3: हाँ।
2: ए, पर तू अंदर से दरवाजा तो खोलना।
3: अच्छा
2: अरे शीला, तू यहाँ बैठी आराम से भुट्टे चबा रही है, तू ये कंटाक्ट खींच के पागल कहीं की, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी।
1: क्या करूं सुधा, इन्होंने ही तो मना किया था दरवाजा खोलने को।
2: अरे तो कौन सा डाका पड़ रहा है दिन दहाड़े जो तूने दरवाजा बंद कर रखा है।
1: अब क्या करूं, इन्होंने ही तो कहा था कि अकेली औरत को घर पे जान के बदमाश आवाज बदल कर, वेश बदल कर किसी न किसी बहाने से घुस आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि मार भी डालते हैं।
2: पागल है क्या? हाँ अरे आज तक हमारे मोहल्ले में कभी ऐसा नहीं हुआ।
1: मगर इन्होंने ही तो मना किया था दरवाजा खोलने को।
2: बड़ी आई दरवाजा ना खोलने वाली, बड़ी आज्ञाकारिणी है ना तू पति की। अरे पागल, पोस्टमैन आया वो लौट गया।
1: हाँ पोस्टमैन।
2: हाँ और तो और दूध वाले की आवाज भी नहीं पहचानती, ये तो खूब रही। अरे इतना तो तू समझ सकती है ना पागल कि कौन अपना है कौन पराया। खैर जाने दे, कोई बात नहीं, देख काफी रात हो गई है, अब तू दरवाजे बंद कर ले।
1: अच्छा,
2: और सो जा, और देख अब रात में दरवाजे मत खोल देना। हम लोग जाते हैं, चलो मैं, आइए आइए मेरे साथ, चलिए चलो।
1: नहीं खोलूंगी दरवाजे, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मना करके गए हैं मुझे।
5: अरे भाई मैं हूँ, दरवाजा खोलो, मैं हूँ,
1: मैं हूँ या वो, नहीं खोलूंगी। मैं सब चालबाजी जानती हूँ तुम लोगों की।

0: अरे अरे अरे ये क्या तमाशा है? अरे शीला, मैं हूँ राजेश। आवाज भी नहीं पहचानती हो? दरवाजा खोलो।
1: ना मुराद, भाग जाए यहाँ से। तुम लोग आवाज बदलकर बोलने में माहिर होते हो।
0: हे भगवान, इसे क्या हो गया? भूख प्यास के दम निकला जा रहा है और ये पागल है कि दरवाजे ही नहीं खोलती। क्यों मैंने इससे मना कर दिया था? अरे मैं क्या जानता था कि इसकी बेवकूफी मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। अरे दरवाजा खोलो शीला। अरे मैं हूँ तुम्हारा पति देव, पति परमेश्वर।
1: चल फुट, बड़ा आया है पति परमेश्वर। दरवाजे खोल सकती तो चप्पलों से पीटती तुझे। पति देव
0: चप्पलों से? हे भगवान,
2: क्या बात है भाई, दरवाजा नहीं खोल रही है भाभी।
0: अरे उमेश भैया, तुम ही कुछ करो। बड़ी देर से विनती कर रहा हूँ, बोलती है मगर खोलती नहीं। अच्छी मुसीबत है।
2: अरे भाई शीला भाभी, शीला भाभी दरवाजा खोलिए। ओहो, अरे आप मेरी आवाज तो पहचानती हैं। अरे मैं हूँ उमेश, उमेश।
0: अरे बहुत हो गई नौटंकी। हे भगवान, मैंने कौन सी मनहूस घड़ी में इसे कह दिया था दरवाजे मत खोलना। ये थोड़े ही जानता था कि मेरी ही बात पत्थर की लकीर हो जाएगी। अरे मूर्खता की हद कर दी तुमने तो। अरे भाई अब तो दरवाजा खोलो।
2: अरे राजेश, अभी 2 घंटे पहले ही तो हम लोगों ने खुलवाया था दरवाजा, शाम से ही बंद है। पोस्टमैन आया, वो लौट गया।
0: क्या?
2: हाँ,
0: पोस्टमैन।
2: दूध वाला आया और वो भी लौट गया। आखिर शीला भाभी ने ना खोला तो ना खोला दरवाजा। और फिर मैं पाइप से चढ़कर भीतर उतरा तो देखा मजे से बैठी शीला भाभी भुट्टा चबा रही है। पूछा तो बोली आप मना कर गए थे कि कोई सर पटक पटक कर मर जाए तब भी दरवाजा ना खोलना।
0: अरे भाई मैं ही मना कर गया था, मगर ये थोड़े ही कह गया था कि मुझे ही गेट आउट कर देना। 2000 रुपए आने वाले थे, पोस्टमैन भी गया और रुपए भी लौट गए। अजीब बेवकूफ औरत है ये। हे भगवान, अब क्या करूं।
1: अरे तुम? हाँ, अब फुर्सत मिली घर आने की। हाँ, रात भर डर के मारे मेरी तो जान निकल गई, मैंने दरवाजे भी नहीं खोले। हाँ,
0: धन्य हो महारानी, धन्य हो। रात भर भूखा प्यासा कंडा हो गया बाहर पड़े पड़े
1: है?
0: और महारानी ने दरवाजा खोला सुबह सुबह। अब पहचाना तुमने मुझे शीला?
1: हाय राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा अच्छा, अंदर तो आओ। देखो गुस्सा थूक दो ना।
0: मैं नहीं आऊंगा।
1: तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाऊंगी। हाँ
0: पिलाऊंगी।
1: देखो तुम्हीं ने तो कहा था ना, कोई सर पटक पटक कर मर जाए दरवाजा मत खोलना।
0: अच्छा तो अभी ये भी बाकी है, अब कहो तो सर पटक पटक कर खोल लूं।
1: नहीं नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा करते हो, चलो चलो अंदर चलो।
0: मैं नहीं जाऊंगा।
1: देखो तुम्हीं ने तो कहा था ना दरवाजे मत खोलना।
0: महारानी न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने कह दिया था दरवाजे मत खोलना।
3: हाँ पंच भाई, देखल जा अभी झलकी सुने थे दरवाजा मत खोलना। अपने कार्यक्रम का आगे बढ़ाओ तो देखल जा। आज एक और दिवस है विश्व हास्य दिवस। भैया कह जा ना, कितनों तबीयत खराब रहे, कितनों अपन रहे, अगर हंसत खेलत रहे तो सब तबीयत बाटे अपन ठीक हो जाए।
4: हाँ भैया, और ये दिवस जो बाटे मई महीना के पहले रविवार के मनावल जाला।
3: हाँ।
4: और ये दिवस मनावले के खातिर मतलब हंस के रहे के और हंसे के प्रेरित करे बदे, साथ साथ तनाव मुक्त जीवन
3: मतलब कोनो तरह से दुनिया जो बाटे हर दिन अपन कोनो बाती के दे के अपन तनाव में जिया ताटे।
4: हाँ।
3: ये नाते हास्य दिवस के मुख्य माने उद्देश्य ही है कि अपन बाटे हंसी खुशी से अपन हर दुख दर्द अपन भूल के हंसत खेलत रहे। भैया
4: पूरे विश्व में सबसे पहले ये दिवस 1998 में मुंबई में मनावल गई रहा, और ये अवसर पर विश्व में बहुत से शहरन में रैली, गोष्ठी और सम्मेलन का आयोजन कई जाला।
3: अच्छा देखा भैया, अभी विश्व हास्य दिवस अपन होते रही, लगला सुनल जाए एक ठो लोकगीत।

0: हाँ पंचभाई देखल जा, नियामत अली के आवाज़ में इतना बढ़िया लोकगीत अपन पंचभाई सुनत रहे हैं, और एक के साथ अपने कार्यक्रम के समय पूरा होता चले के, पंचों
1: पंचो
0: जय
1: जय हिंद।
0: हिंद।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत मीडियम वेव 330.63 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्स के साथ FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बजना चाह रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे केंद्र से सुनेंगे भोजपुरी में समाचार और हिंदी में क्षेत्रीय समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहले हवे कि पछिला 9 साली के दौरान 9 लाख से बेसी नौजवानन के सरकारी नौकरी दीहल गयल हो। ई कौन हो राज्य में सबसे बेसी नियुक्तियन का प्रक्रिया के सकुशल अपारदर्शी तरीका से पूरा करले का रिकॉर्ड हो। मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ओरी से नया चयनित 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकन और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का नया चयनित 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानिकन के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के संबोधित करत रहले। वहां के कहने की खाली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यह बरिस 32,000 से बेसी नियुक्ति के प्रक्रिया के पूरा करी। इकरे अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग हजारों शिक्षकन का भर्ती प्रक्रिया पूरा करी। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के करीब 15,000 भर्ती करे के हवे। वहां के बतवली की वर्तमान वित्तीय बरिस में 1.5 लाख से बेसी सरकारी भर्ती होके के बा। मुख्यमंत्री कहले कि सरकारी क्षेत्र में रोजगारी उपलब्ध करवले के साथे साथे ओहू लोगन बदे व्यवस्था बनवले हो जे खुद का स्टार्टअप स्थापित करेल चाहत हवे।
1: नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले, हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करें, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई। कहीं पे पीएम स्टार्टअप की योजना है, कहीं पीएम स्टैंडअप की योजना है, कहीं सीएम युवा उद्यमी योजना है, कहीं पीएम मुद्रा की योजना है। ये सभी योजनाएं भी कार्य हो रही।
0: मुख्यमंत्री कहले कि एमएसएमई सेक्टरों में ढेरी संख्या में नौजवानन के रोजगारे मिलल हो, ऐसे सुरक्षा का बढ़िया माहौल बनल बा, प्रदेश दंगा मुक्त आ गुंडा मुक्त भेल हो। ये मौका पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य सुरक्षा आ औषधिक प्रशासन विभाग का राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और चिकित्सा शिक्षा आ स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हो मौजूद रहले। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला बदे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज प्रदेश के कई गो केंद्रन पर सफलता के साथे पूरा हो गई। दोपहरिया 2 बजे ले से संझा 7 बजे ले भयल 3 घंटा का परीक्षा में ढेरी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थिति दर्ज करवले। यह दौरान परीक्षा केंद्रन पर सुरक्षा का कड़े इंतजाम कैल गेल रहे। परीक्षा का शुचिता बनावे रखे बदे आयोजक संस्था की ओर से पुरहर सतर्कता बरतल गई। प्रदेश सरकार आउटसोर्स अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारन का सुरक्षा बदे नया नियम लागू कैले हो। नया नियम के मुताबिक अब कौनहु आउटसोर्स चाहे अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिन ले काम लिहल अवैध हुई। रोजाना काम बदे 8 से 9 घंटा तय कैल गेल बा। 6 दिन का लगातार काम के बाद 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश दीहल जरूरी हो। साथ ही 1 साली में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश सुनिश्चित कैके कर्मचारी के शोषण पर रोक की लगवले का पहल कैल गेल हो। सरकार नागरिकता संशोधन नियम 2026 के अधिसूचित कई दिएले हो। एकरे तहत OCI कार्ड पंजीकरण अब डिजिटल हुई। अधिसूचना के मुताबिक OCI कार्ड पंजीकरण का सज्जो आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा कैल जाए। कौशाम्बी जिला के मंझनपुर थाना क्षेत्र में आज खुदाई के दौरान एगो माटी का टीला ढही गईल, जिकरे मलबा में 6 से बेसी लोगी दबी गईले। गांव के लोगी दबल सज्जो लोगिन के मलबा से निकाले के अस्पताल पहुंचावले। बाकिर एहमे माई बेटी के सतही 3 जने का जान नहीं बचावल जा सकल। सूचना पर पहुंचल प्रशासनिक अब पुलिस अधिकारियन का दल घटना के जांची में जुटी गई हो। बलिया जिला के कोतवाली क्षेत्र में शिवरामपुर घाट के लगे आज सवेरे मुंडन संस्कार के दौरान 2 कसूरियन के साथ ही 4 को नौजवानन गंगा नदी में डूबी गई ले। सूचना पर पहुंचल स्थानीय गोताखोरन का टीमी आ SDRF चारों लोगन के लाशी बरामद कई लिहलस। मौका पर पहुंचल जिलाधिकारी बतवले के मुंडन संस्कार के दौरान मरे वाला सज्जो नौजवान अपने मोबाइल से फोन रील बनावत रहले। यह दौरान उनका संतुलन बिगड़ गेल आ गहिर पानी में चली गई। प्रदेश के ज्यादातर जिलन में गरज चमक के साथ भइल बरखा के बाद मौसम सुहावना हो गेल बा। आसमान में कहीं कहीं बादल छवले हो, अपूर्वा बिहारी चलने का क्रम जारी बा। अयोध्या सुल्तानपुर अंबेडकर नगर में अजहूम गरज चमकी के साथ तेज बयारी के बीच बरखा फैले का खबर हो। रायबरेली में बरखा के साथ ओलू परल। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम के ये बदलाव का प्रभाव अगला एक हफ्ता ले बनल रही। पश्चिमी विक्षोभ के नाते आवे वाला 5 मई से प्रदेश के कछु जगह पर गरज चमकी के साथ हल्लुक से मध्यम बरखा भेल का पूर्वानुमान हो। समाचार पूरा भेल, नमस्कार। आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के दौरान 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई है। यह किसी भी राज्य में सर्वाधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को सकुशल और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा नवचयनित 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नवचयनित 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को संपन्न करेगा। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग हजारों शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगा, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लगभग 15,000 भर्तियां करनी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया सम्पन्न होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उन लोगों के लिए भी व्यवस्था बनाई है जो स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं।
1: नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले, हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करें, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें। उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई कहीं

0: पे पीएम स्टार्टअप की योजना है, कहीं पीएम स्टैंडअप की योजना है, कहीं सीएम युवा उद्यमी योजना है, कहीं पीएम मुद्रा की योजना है, ये सभी योजनाएं भी कार्य हो रही।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में भी बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है, इससे सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना है, प्रदेश दंगा मुक्त और गुंडा मुक्त हुआ है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुई 3 घंटे की परीक्षा में अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए आयोजक संस्था द्वारा पूरी सतर्कता बरती गई। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिनों तक काम लेना अवैध होगा। प्रतिदिन कार्य के लिए 8 से 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं। 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य है। साथ ही 1 साल में 10 दिन का आकस्मिक अवकाश सुनिश्चित कर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगाने की पहल की गई है। सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत ओसीआई कार्ड पंजीकरण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। अधिसूचना के अनुसार ओसीआई कार्ड पंजीकरण के सभी आवेदन अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा किए जाएंगे। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र में आज खुदाई के दौरान एक मिट्टी का टीला ढह गया, जिसके मलबे में 6 से अधिक लोग दब गए। ग्रामीणों ने दबे सभी लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इनमें से मां बेटी सहित 3 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। सूचना पर पहुंची प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों का दल घटना की जाँच में जुट गया है। बलिया जिले के कोतवाली क्षेत्र में शिवरामपुर घाट के पास आज सुबह मुंडन संस्कार के दौरान 2 किशोरियों सहित 4 युवा गंगा नदी में डूब गए। सूचना पर पहुंची स्थानीय गोताखोरों की टीम और एसडीआरएफ के चारों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए। मौके पर पहुंची जिलाधिकारी ने बताया कि मुंडन संस्कार के दौरान मरने वाले सभी युवा अपने मोबाइल से रील बना रहे थे। इस दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वह गहरे पानी में चले गए। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ हुई वर्षा के बाद मौसम सुहाना हो गया है। आसमान में छिटपुट बादल छाए हुए हैं और पूर्वा हवा चलने का क्रम जारी है। अयोध्या, सुल्तानपुर और अम्बेडकर नगर में आज भी गरज चमक के साथ तेज हवा के बीच वर्षा होने की खबर है। रायबरेली में बारिश के साथ ओले भी पड़े। मौसम विभाग के अनुसार मौसम के इस बदलाव का प्रभाव अगले 1 सप्ताह तक बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 5 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने का पूर्वानुमान है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।

मीडियम एफ 313.03 मीटर अर्थात 909 किलो हर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है उनका दैनिक कार्यक्रम खेती बारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में।

0: www.thepointofinquiry.in याद रहे www.होला
1: ओकर सब सबसे पहला बात रहे के ध्यान दें बचाव करें तो सब अपने जाए जैसे इसमें मान लो भैया हो पछुआ हवा चलता पुरुआ हवा चलता अक्सर देखल देखल जला भैया हो गांव में आग लगने के समस्या बड़ा देख ले मावला
2: कहे कि भैया जब फसल कटाई के बाद जो फसल अवशेष बचाला लोग सोचल है कि ओके जला देवल जा
1: जितना जल्दी हो सके जला दे
2: ओके जलौले के चक्कर में का होला कबो कबो एक बैग हवा जब चले लगाला तो आग मतलब विकराल रूप ग्रहण कर लेला और कई जनी के नुकसान करेला
1: भैया जौन कह जल ने अपन अवशेष भी जलावल है जैसे मान लो कौन चीज रखल भैया हो चल अपन बाटे वही के जला द फालतू चीज बाटे ओके जला द कूड़ा करकट बाके जला दा अपन ई देख अगर मान लो जला वही के बाट है तो ई ध्यान रखें कि संझा के चाहे सुबेरे हवा जब ने चले ठंडा रहे मौसम उसमें अपन धीरे से अपन जला दें अपन शांति से रहे
2: भैया हो सके तो जलौले के समस्या के निजात पा लेल जाए और ओके अगर खेत में फसल अवशेष बात है तो जुताई कर देवल जाए
1: भैया अपन कहे पानी भर के यूरिया अगर छीट दे तो जुताई कर दे तो निश्चित रूप से जो बाटे वो अपन हरी खाद के अपन काम कर
2: काहे कि इसमें भैया जो पंच भाई लोग खेत के जुताई करोले रहना हो उनके तो बहुत फायदा मिलल काहे कि दो तीन दिन से लगातार जो बारिश होत बाटे वो जो फसल अवशेष जुताई करा देना वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए
1: सही कहला भैया
2: और उनके जो खाद में जो उनके कार्बन का मात्रा का जो बढ़ोतरी हुई उनके अगले फसल में जब हुई है तो बहुत लाभ हुई
1: मतलब जैसे धान के फसल में बहुत तेजी से अपन बढ़िया लाभ
2: और अगर कौन कहीं आग लगने के घटना की जानकारी हो गई बा तो तुरंत डायल 101 पर सूचना देके फायर ब्रिगेड के बुला के आग बुझौले के समस्या मतलब करे चाहिए कि आग जल्दी जल्दी बुझा देवल जा और खुद अपने जागरूक होके अगर हो सके तो आग बुझौले में मदद करे के चाहिए
1: भैया देखो बढ़ चल के अपन पहले तो अपन ध्यान दे कि पहले बुझा लें नहीं हो सके तत्काल तुरंत अपन सब पुलिस सहायता अपन लेके अपन फायर ब्रिगेड के 101 पर अपन डायल करके तुरंत अपन सहायता ले लें भैया देखिए इतना चर्चा लगे हाथ सुनल जाए एक ठो बातचीत मिट्टी में कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाएं पर विद्यापट पाठक से ओम प्रकाश त्रिपाठी भी बतियावत ने अपने पंच भाई सुने और लाभ उठावें
3: विद्यापति पाठक जी आप पूर्व सहायक निदेशक कृषि विभाग गोरखपुर हैं पाठक जी सबसे पहले आपके अपने बैठकी में स्वागत बा अपन किसान भाई लोग जब खेती करे के बारे में सोचेला तब सबसे पहले माटी के ऊपर उनका ध्यान जाला और माटी के बारे में सोचला पे पता चलेला कि पंच भाई लोग कई तरह के उर्वरक और कंपोस्ट वाली खाद या और कुछ छोड़ के जौन माटी के स्वास्थ्य भाव के बढ़ावल चाहेला लेकिन कुछ चीज ऐसन होले जौन की माटी में न रहला से अपने उत्पादन पर प्रभाव पड़ेला तो माटी स्वस्थ कैसे रहे माटी स्वस्थ बा कि नहीं ये कैसे जानकारी पंच भाई लोग करें
4: आपकी मिट्टी स्वस्थ है कि नहीं है इसके लिए ये जरूरी है कि उस मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व अगर हों तो हम उसको स्वस्थ मानेंगे सबसे पहले यदि भूमि का पीएच आपका 6.5 से 8.5 के बीच में है तो समझिए कि आपकी मिट्टी सामान्य रूप से स्वस्थ है न वो ऊसर है न वो अम्लीय है अब अगर उसका गठन का मतलब कि उसमें बालू की मात्रा कितनी है उसमें अन्य आपकी चिकनी मिट्टी कितनी है तो विशेष कर से जो बलुई से जो चिकनी दोमट मिट्टी होती है वो बिल्कुल स्वस्थ भूमि मानी जाती है उसमें फसल बढ़िया होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा भी अच्छी
3: है पंच भाई लोग बलुई दोमट कहे
4: हाँ जो कि बलुई दोमट से लेकर के दोमट बलुई दोमट या चिकनी दोमट अगर इस टाइप की मिट्टी है अच्छा। तो समझिए कि आपकी मिट्टी आपके फसल के लिए अति उत्तम है अब उसमें एक जीवांश कार्बन होता है
3: अच्छा।
4: अगर जीवांश कार्बन मिट्टी के अंदर 0.8% से अधिक है तो आपकी मिट्टी पूर्ण रूपेण स्वस्थ मानी जाती है
3: अच्छा।
4: अब इसी प्रकार उसमें मुख्य तत्व जैसे वैसे तत्व तो 18 तत्व होते हैं जो कि जमीन के अंदर होना चाहिए लेकिन अगर उसमें फास्फेट जो पहले से अगर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है पोटाश 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मौजूद है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ जाएगी
3: अब आप बतैली है कि हमें जो सूक्ष्म जीवांश व कार्बन ऊ हो के चाहिए तो सबसे बड़ी बात तो यह भाई कि पहचानल कैसे जा
4: जी जी।
3: कि वो हमें कार्बन बा कि नहीं बा
4: एक
3: खातिर पंच भाई लोग कौन विधि अपना
4: देखे बहुत ही सामान्य विधि हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि वो जब अपने खेत में जाएं तो सबसे पहले मिट्टी को हाथ में ले लें और मिट्टी को हाथ में लेने पर अगर वो मिट्टी भुरभुरी है
3: अच्छा
4: और हाथ में लेने के बाद वो चिपकती नहीं है एवं कंकड़ हाथ में चुभते नहीं है तो समझिए कि आपकी मिट्टी

0: में ह्यूमस है, आपके मिट्टी में कार्बन मौजूद है।
1: अच्छा।
0: अगर हम मिट्टी को अपने भूमि को देखेंगे तो भूमि उनकी काले भूरे रंग की दिखाई देगी, और अगर ऊपर पानी डाला जाएगा तो बहुत ही कम देर में वो पानी सोख लेगा, यानी पानी अवशोषित हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मिट्टी सही है, इसमें कार्बन मौजूद है, इसमें जीवांश कार्बन उपलब्ध है, और वो हमारी फसल के लिए अति उत्तम है।
1: अच्छा, ये कार्बन जो आप बतैली है,
0: जी जी,
1: अगर मान लिया जाए कि पंच भाई लोग गए पहचान कैले, पहचान का तरीका आप बता दिली कि अगर मिट्टी कठोर नहीं बा और मिट्टी जोन बा मुलायम बा, हाथे में चपकत नहीं बा, तो कि मान के चले कि भाई इमें कार्बन जोन बा, और अगर कठोर बा तो भाई कार्बन का कमी बा,
0: जी जी,
1: और अगर वो कार्बन नहीं बा
0: जी जी जी,
1: तो उससे अपने उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा?
0: बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर मिट्टी के अंदर कार्बन नहीं है, जीवांश कार्बन नहीं है, तो सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है। सबसे पहले तो असर पड़ता है कि हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा उसमें कम मिलेगी।
1: अच्छा।
0: अगर उसमें कार्बन की मात्रा कम है तो हमारे जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे मॉलिब्डेनम, बोरान, तांबा, मैग्नीज, लोहा, जिंक, सल्फर, ये जो तमाम किस्म के हमारे सूक्ष्म तत्व हैं, वो उसकी मात्रा कम मिलेगी। लाभदायक जो हमारे जीवाणु है उसकी मात्रा कम मिलेगी। हमारी फसल की, हमारी जो मिट्टी उतनी भुरभुरी नहीं रहेगी, पानी सोखने की क्षमता उतनी नहीं रहेगी, तो ये सीधा उत्पादन पर असर डालता है। इसीलिए जरूरी है कि जमीन में 0.8% से ज्यादा कार्बन हो, तभी हमारे फसल के लिए उपयुक्त होगा।
1: अच्छा, आप बतैली कि इतना कार्बन चाहिए, तो अगर ये कार्बन का कमी बा
0: जी जी,
1: तो का पंच भाई कोनो ऐसा विधि बा जोने से ओके पूरा कर सकेला?
0: जी जी, बहुत ही आवश्यक, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखें, आजकल का जो प्रवेश चल रहा है वो ज्यादातर किसान भाइयों के अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि रासायनिक खाद ज्यादा से ज्यादा खेतों में डाला जाए, और रासायनिक खादों, रासायनिक उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग करके किसान अपने खेत को, खेत की भौतिक दशा बिल्कुल निम्न स्तर से बनाता हुआ चला जा रहा है। परिवेश भी हमारा बदलता गया। जैसे पहले हरी खाद बोने का प्रचलन था, नीम की खली हम लोग डालते थे देहातों में, तेल निकालने के बाद से जो उसका अवशेष बनता उसको हम लोग खेत में डालते थे। हमारे गांव पर या घर पर पशुओं के रखने का प्रचलन ज्यादा था, क्योंकि हल से जुताई होती थी तो गोबर की मात्रा ज्यादा मिलती थी, तो ज्यादातर किसान भाइयों के पास गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में हो जाता था। आज के परिवेश में ट्रैक्टर से जुताई हो रही है, और ज्यादातर यंत्रीकरण की व्यवस्था होने के कारण जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमारा ध्यान बहुत ही कम जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा कुप्रभाव हमारे फसल के ऊपर पड़ रहा है।
1: मतलब जो रासायनिक खाद खेते में,
0: हाँ, रासायनिक खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं, इससे हमारे खेत की दशा बिगड़ती जा रही है। अब हम ये सुझाव देंगे कि कैसे इसको, कैसे कार्बन की मात्रा बढ़ावे, इसके लिए हम किसान भाइयों को सबसे पहले सुझाव देंगे कि वो जीवांश खाद का प्रयोग करें। जीवांश खाद का मतलब कि कंपोस्ट खाद डालें, उसमें गोबर की खाद डालें, बर्मी कंपोस्ट बनावें, जो बहुत ही आसान है। उनके घर पर जो आपके जड़, पत्ती, तना, फल आदि का जो अवशेष बचता है उसको इकट्ठा करके, उसको थोड़ा सा सड़ी हुई गोबर की खाद लेकर के उसको सड़ा लें, और सड़ाने के बाद से, सड़ने के बाद से अगर उसको खेत में डाला जाए तो आसानी से हमारे खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। अब थोड़ा सा इसका हम विधि एक वैज्ञानिक तरीके से भी बता रहे हैं। मान लें कि अगर किसान भाई को कम्पोस्ट खाद बनाना है, तो कम्पोस्ट खाद में 100 किलोग्राम गोबर ले लीजिए, 15 क्विंटल फसल अवशेष का ले लीजिए, जो कि फसल के तमाम अवशेष बचते हैं,
1: धान काटल गई ओकर डंठल
0: जी जी जी जी जी,
1: सब लेके बनावल
0: जाए। हाँ, और उसके बाद से कुछ मिट्टी मिला लीजिए, और मिला करके इसको इकट्ठा कर लीजिए। ये 90 दिन में ये खाद आपकी तैयार हो जाएगी, लगभग 30 क्विंटल की होगी। अच्छा। और आराम से ये तैयार हो जाएगी, और इसको होने के बाद से आप, अच्छा, इसका जो गड्ढा बनाएंगे 2 मीटर × 2 मीटर × 1 मीटर का गड्ढा बनता है, तो आसानी रहता है। नीचे हम कुछ छेद कर देते हैं, जैसे एक तो जमीन से ऊंचा गड्ढा होना चाहिए, जो हम जहां हम बनाएंगे कंपोस्ट खाद वो जमीन के बराबर न हो, जमीन से थोड़ा ऊंचा हो। गड्ढे की लंबाई 2 मीटर, गड्ढे की चौड़ाई 2 मीटर और गहराई 1 मीटर हो। नीचे उसके सतह पर हम कुछ छेद बना देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए अगर लकड़ी का अगर तख्ता अगर नीचे बनता है, कोई अगर हम डब्बा टाइप की चीज में अगर हम खाद तैयार कर रहे हैं, तो नीचे नीचे कम से कम 10 से 15 छेद कर दें, जिससे कि नीचे से हवा का आदान प्रदान होता रहे। इस हिसाब से अगर वो उस कंपोस्ट को लेकर के हम सड़ाते हैं तो वो 90 दिन में हमारी खाद बनकर तैयार हो जाती है और वो आराम से हम खेत में डाल करके अपने खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और जिससे कि हमारे फसल के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब ये तो हो गया कम्पोस्ट खाद का, ऐसे ही वर्मी कम्पोस्ट भी बनाया जाता है। वर्मी कम्पोस्ट में केचुए का प्रयोग

0: किया जाता है। अब केचुए उसमें दो तीन किस्म के केचुए होते हैं, वैसे ज्यादातर इधर इसेनिया फुडीडा नाम का एक होता है केचुआ जो कि लाल रंग का होता है। इसमें भी हम करते ये हैं कि स्थान का जो चुनाव करते हैं किसी पेड़ के नीचे किसी छायेदार स्थान पर वो स्थान का चुनाव करते हैं और कुछ ऊंचा स्थान होना चाहिए। इसमें सबसे नीचे 11 सेंटीमीटर ईंट या पत्थर की परत बिछा देते हैं, उसके ऊपर 20 सेंटीमीटर मोरंग या बालू की तह डालते हैं, इसके ऊपर 15 सेंटीमीटर उपजाऊ मिट्टी डाल देते हैं, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम आधा सड़ा गोबर की खाद लेके उसको छिड़क देते हैं और उसके बाद लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर घरेलू कचरा जो इसके ऊपर तमाम जो डंठल उंठल बचा रहता है उसको डालते हुए चले जाते हैं। ये स्थिति करने के बाद ये खाद हमारी तैयार हो जाती है और इसके सड़ने के बाद अगर इसका प्रयोग अगर किया जाता है तो वो भी हमारे खेत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इसी के साथ साथ प्रेसमेट खाद भी बनती है, प्रेसमेट जो कि गन्ने का जो अपशिष्ट होता है या शीरा या प्रेसमेट, ये भी जो है भूमि सुधारक के रूप में इसका प्रयोग करके अगर खेत में डालें तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और आराम से कार्बन की मात्रा 0.8% से ज्यादा हमारे जमीन में हो जाएगी और कोई भी फसल भोएंगे तो वो लाभदायक हो जाएगा। इसी क्रम में मलमूत्र की खाद भी, जैसे जहां जहां पशु बांधे जाते हैं, पशु के नीचे जो किसान भाई पुआल वाल बिछा देते हैं या जो जो गीला होता है उनके मित्र से, अगर उस अवशेष को लेकर के कहीं रख करके सड़ा लिया जाए और सड़ने के बाद अगर उसको खेत में प्रयोग किया जाए तो भी वो काफी फायदेमंद होता है, हमारे ह्यूमस की मात्रा उसमें भी ज्यादा हो जाती है।
1: भाई लोग ठंडी का सीजन जब आवे तो ले जाके पुआल जो डेली अपने पशुशाला में बिछावत रहा है और उस सड़ के ये ठंडी के सीजन भर में खाद बन जात रहा
0: जी, जी,
1: अब फिर ले जाके हर पंच भाई लोग लगे घूर रहत रहा जौने की खाद का गड्ढा कहा जाला, तो वह घूरे में ले जाके अपन जो अवशिष्ट आलू के डालत रहे फिर और वही में सड़ के वो खाद बन जाता है, तो बहुतायत मात्रा में खाद तैयार हो जाता रहा और ये जो रासायनिक उर्वरक बा एकर प्रयोग बहुत कम करे के पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया जा कि पंच भाई लोग इतना खाद तैयार नहीं कर पावत हमें और खेती लम्हर बा, कुछ ऐसा भी व्यवस्था बा जोने के खरीद के ला के और खेते में डाल जा सकाला जोने से कि कार्बन का मात्रा बढ़ावल जा सके?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आसान उपाय तो हम यह कहेंगे जो आपने कहा है कि अगर कम पैसे में अगर जमीन में कार्बन की मात्रा बढ़ानी हो तो जब हमारा खेत खाली होता है, खाली हुए खेत में अगर हमारे किसान भाई केवल हरी खाद का प्रयोग कर दें, अगर उसमें ढैंचा बो दें, सनई बो दें, उर्द बो दें, मूंग बो दें, लुबिया बो दें या दलहनी फसलें जो होती हैं उसके जो अवशेष भाग हो अगर उसके हरा वाला पोर्शन अगर उसको पलट दिया जाए तो हरी खाद लेकर के बीच का जो खाली पोर्शन जो खाली समय है जो हमारे किसान भाई प्रति रखते हैं, प्रति न रख करके उसमें हरी खाद के रूप में उसको इस्तेमाल करके सनई ढांचा बो करके उसकी पलटाई कर दें तो अच्छा खासा ह्यूमस हो जाएगा हमारी जमीन में, अच्छा खासा कार्बन हो जाएगा, कम लागत में उनको तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट तमाम सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो भी आवश्यक तत्व तो है उस जमीन में उनको मिल जाएगा, जमीन की भौतिक दशा भी सही हो जाएगी, उसकी संरचना भी सही हो जाएगी, पानी और शोषण की क्षमता भी बढ़ जाएगी, जो बहुत ही सस्ता है बहुत आसान है। या खली की खाद डालना जो हम छोड़ चुके हैं, आज मैं समझता हूं कि प्रत्येक किसान भाई के घर में तमाम जो है तिलहन की व्यवस्था होती होगी और वो तेल निकालने के बाद से खली हम जो दे देते हैं दुकानों पर, बेहतर है कि अगर उस खली का प्रयोग हम खाद के रूप में अपने जमीन में कर रहे हैं तो भी ह्यूमस की मात्रा हमारी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत ही आसान तरीका है।
1: श्री विद्यापति पाठक जी, आप अपने बीच में लिए इतना निम्न जानकारी अपने पंच भाई लोगों के दिल के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंच भाई, आशा बाटे कि आप लोग एक जानकारी से मिट्टी में जो कार्बन का मात्रा बढ़ाएबे और कार्बनिक रसायन का यूज करके मतलब अपने खेती के गुणवत्ता बढ़ा देवे और फसल का उत्पादन बढ़ाएबे। पंच भाई, बातचीत आगे बढ़त रही लेकिन लगले हाथ सुन लिया जा इकोलोग गीत।

0: हाँ किसान भाई देखल जा, नियामत अली के आवाज़ में इतना बढ़िया आप खमटा सुनत रही हैं। अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ चल लहल जाए, तो बातचीत सुनल जाए पशुओं में थनहली के लक्षण और बचाव। डॉक्टर रमाशंकर सिंह से कृष्ण भैया बतियाओ तना अपने किसान भाई सुनी और लाभ उठाएं।
1: पंच भाई आज अपने बैठकी में आए हुए डॉक्टर रमा शंकर सिंह, आप पशुपालन विभाग में उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रह चुका हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपके हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। डॉक्टर साहब दुधारू पशुओं का दाम बहुत ज्यादा बा, अगर पशु के कोनो बीमारी हो गई तो काफी नुकसान उठावे के पड़ेला। आज हम आपसे ये जानना चाहब कि थनैली जौन हवे ये का हवे और पशुओं के कैसे प्रभावित करेला।
2: पशुपालक भाई आप लोगों के हम बताओ ली चाहते कि ई जौन बा जो थनैला रोग है ये सबसे घातक बीमारी है और ये आप लोगों के बहुत ज्यादा नुकसान करेला। थनैला रोग जौन थन होला उसमें अच्छा। सूजन आ जाला और सूजन के साथ साथ वो कड़ा भी हो जाला, लाल लाल हो जाला और कड़ा हो जाला और उसमें जौन दूध आवेला वह परिवर्तन आ जाला, जैसे दूध जौन बा फटल आवेला और उसमें खून भी आवे लगेला, जब ना ध्यान दिया जाला तो बाद में मवाद जैसा हो जाला। तो ए पर आपके ध्यान दे वाली यही चीज है। अच्छा बहुत से थनैली दो तरह के माना जाला, एक तो जब हो जाला तब आ एक जोन है नाय भैला जोन एक सब क्लिनिकल कहल जाला। जैसे आप देखल जाला जब आप दूध के रख ले जाला तो बाद में जब ओके गर्म कर जाला तो फट जाला
1: जी,
2: तो वो सब क्लिनिकल होला, वो सबसे खतरनाक होला। आप लोग ही सोचल जाला कि वो कोनो बात नहीं बा, लेकिन जब ऐसा होके शुरू में तो ओकर दवा आप करा ले जाए जल्दी से जल्दी। और एकर जो लक्षण है के और हम विस्तार से आपके बताई और अलग अलग में जो कारण है उकरे अनुसार लक्षण भी हो जाला।
1: थनैली रोग कौने कारण से होला?
2: एकर तीन कारण बा। एक तो पशु अपने आप में जौन बा वह एक कारण है, अगर आप साफ सफाई नहीं रखल जाता गंदगी में रखल जाता तो वहू से जोन है थनैली हो जाये, जहाँ बैठी वहाँ सफाई नहीं कर जाये। तो पहला कारण ये है कि सफाई आपके रखे के बाद आप दूहल जाता हाथ नहीं धोल जाता बढ़िया तब वो थनैली हो जाये। ये तो कारण है जो आपके बस में ठीक कर जा सकेला, लेकिन मेन कारण एक ये जीवाणु से होला, विषाणु से होला, अगर ऊपर चोट लग जाला तबो हो जाला, आ कवक से भी होला। तीन ही कारण मेन होला जोने से हो जाला।
1: कहले के मुख्य उद्देश्य बा कि साफ सफाई पशुशाला में बहुत जरूरी है, साथे साथे जो दूध निकालता तेरे हाथ का भी सफाई जरूरी है, कोनो भी साबुन से बढ़िया से हाथ धो के ओकरे बाद जोन बा दूहे।
2: अब देखल जाए पहले तो यह है कि जैसे बियाली जब जानवर आपके आप उस समय ध्यान नहीं दे जोन पीछे से गिरेला पिसाब करेला, अगर खेड़ी ठीक से ना गिरल तो ओकरे रास्ते जब पिसाब करी तो देखल जाला कि एकदम थने पे आके नीचे गिरेला। थनैली जोन होला जो थन के छेद होला वही से अंदर जाला, कौनो जीवाण जब अंदर चल जाये चाहे विषाणु होके चाहे बैक्टीरिया होके चाहे फंगस होके, तो अगर थन के छेद जो नीचे होला अगर वहाँ खुलल लग गई तो अंदर जायी तो तुरंत जो है थनैली पैदा कर दे। तो सबसे पहले तो जब बियाले जानवर तो के खूब बढ़िया से आपके धूप पीछा सब धो के थन धो के तब के अपन हाथ धोवल जाए पहले, ओकरे बाद थन धो के तब दूध निकाल
1: मतलब...
2: हाँ जोन आप रोज यूज कर जाता साबुन और चीजें उसे आप धो ले जाए तब ओके दूध निकाल जाए। दूसरा अब दूध तो मान लेहल निकाल गई लेहल गई, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ध्यान दे वाली ही चीज है, एक तो जानवर का सफाई हो गए, दूसरा जानवर में थन का सफाई हो गए, आपके हाथ का सफाई हो गए, तीसरा ही होला कि आप अक्सर का कर जला दूध निकाल के आप रख दिया जाला और जानवर जो है आधा घंटा के अंदर अगर कहीं गंदगी में बैठ जाला तो थनैली होने के चांस ज्यादा होला। कारण ये है कि जो हम बतौली हबे कि थन के छेद जौन होला जब आप दूहल जाला तो खुलेला और ओकरे पहले बंद रहेला, ओमे जो है केराटिन नाम के चीज होला वो प्लग कर देला बंद कर देला छेद के, तो वो जो है जब आप दूधवा निकालल जाला तो वो तो जब दाबल जाये तो निकल आवेला और ओकरे बाद जो है खुलल कितना देर रहेला 17 मिनट तक वो छेद खुलल रहेला। अगर आपके केवल इतना ध्यान रहे कि दूध दहले के बाद जानवर के साफ जगह बांध दिया जाए आधा घंटा के बैठे न दिया जाए तो थनैली फैले के चांस जो है वैसे एकदम कम हो जाला। तो हमेशा यही ध्यान दिया जाए दुहले के बाद ओके कहीं साफ जगह बांध दिया जाए,
1: मतलब कोनो भी एंटीसेप्टिक जोन दवाई बा ओकरे पानी से ओके धुल दिया जाए।
2: इसमें जैसे आवेला अलग से भी दवा आवेला कुछ न मिले तो जोन आप अपने लिए यूज कर जाला जोन प्रयोग में लाई जाला वही प्रयोग आप कर जाए।
1: एकरे अलावा और का सावधानी बरतल जाए?
2: एकरे बजाय दूसर का सावधानी ही बरतल जाला कि आप जहाँ बांधल जाता जानवर उस जगह जोन बा आपके एकदम मुलायम होके चाहिए, मतलब ई ना कि उखड़ खाबड़ हो कि जानवर बैठे, बैठले के बाद जैसे चोट अगर लगेला तब वो थनैली हो जाला। आप देखेंगे कि जानवर एकदम हड़ाक दे बैठल नीचे कंकड़ पत्थर बा ओहू का सरा जला और जहाँ बांधल जा वहाँ गोबर और गंदगी न रहे। खासकर पिछला सिरा एकदम ओकर साफ रह चाहिए, अगला तो रहे चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि अपने जानवर को बचाव खातिर आप अपने बाड़ा के खूब साफ सुथरा रखल जा और जानवर के भी साफ सुथरा रखल जा। ये सबसे बड़ा आपके लिए सुझाव है।
1: अच्छा, थनैली के लिए आप बतौली है कि का सावधानी बरतल जा, एकरा बदे कोनो टीकाकरण भी उपलब्ध बा कि टीका लगवा लेल जाते बीमारी अपने पशुओं का नहीं हुई?
2: ना, एकर कोनो टीका नहीं बा। एकर आपके जो ने सबसे बड़ा उपाय साफ सफाई है बा। दूसरका बा कि एमे जैसे आपके जो बताए कि एकर कारण कितना होला, सबसे पहले अगर हो गई बा तो कारण के निवारण तो आपके करे पड़ी। अब ओमे बतौली है कि एक तो बैक्टीरियल जीवाणु से होला, दूसरा विषाणु से होला, तीसरा फंगस से होला, लेकिन ये आयल कहाँ से? सब आपके चारों तरफ जो वातावरण बा वही में रहेला सब। तो एक अगर साफ नहीं बा तो वो कारण के आपके दूर करे पड़ी। अगर हो गई तो तत्काल आपके दवा कराए पड़ी, तब जाके सही होला। दूसरा होला एक इन्फेक्शन हो गई, फिर पता चलल कि एक जानवर के आप दुहल गए, अब फिर वही हाथी जाके दूसरे जानवर को दूध दिल गई तो वो इन्फेक्शन दूसरे में चल जाये। हाँ। तो हमेशा आप ध्यान दिल जाए कि एक जानवर के जब दुहल जा तो हाथ धो के तब दूसरे जानवर के दुहल जा।

0: भैया, पशुओं में थनैली रोग का लक्षण और बचाव पर डॉक्टर रामाशंकर सिंह से कृष्ण भैया इतना बढ़िया बतियाते रहना है। डॉक्टर साहब के दिए धन्यवाद। और भैया देखा, ये समय अब जब बान है अपन मौसम बा ए पर अपन जब बदलत मौसम बा मन ध्यान रखे भैया, कब अपन सुबेरे अगर कहीं निकले के बाटे संझा के देर से आवे तो ऐसा बचाव करें। से अपन मौसम जैसे बारिश बारिश होता था ठंडा हो जाता, ये मौसम में अगर तनिको सा असावधानी करी है तो उनका तबीयत खराब हो जाएगी।
1: भैया धूप में निकलने से बचे, हो सके कि अपन अगर बहुत ज़रूरी काम ना होगा तो एकदम धूप में ना निकले, और धूप में जा निकले अगर तो तुरंत कहीं जाइले के बाद पानी ना पिए, और हो सके तो ठंडा पानी के परहेज करे सेवन करे दिन में पर, और सत्तू पिए, सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ के सेवन करें।
0: भैया
1: क्या कि
0: पानी
1: तर
0: पानी
1: हाँ
0: के पर्याप्त मात्रा शरीर में होके चाहिए,
1: आम का
0: तब आप
1: पन्ना,
0: आपका शरीर स्वस्थ रही।
1: आम का पन्ना और प्याज का सेवन करें भरपूर मात्रा में, तब धूप से बचल जा सकारा, और गर्मी और बरसात से सख्त मतलब बाहर निकलने से सख्त परहेज करें। कहें कि नया जब मौसम बदलत रहला उस समय लोगों के बीमार भइले के खतरा बहुत ज़्यादा रहला, तो भैया बचाव ही सुरक्षा है, नाते अपने आप के बचा के रखें तभी सुरक्षित रही।
0: भैया देखा, एक के साथ अपने कार्यक्रम समय पूरा होता चले के। पंचों
1: पंचों जय
0: जय जवान
1: जवान
0: जय
1: जय
0: किसान।
1: किसान।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती बारी। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

0: दरियाबाद मर्यादपुर थाना रामपुर जनपद मऊ से सुजीता चौहान के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। सुजीता चौहान, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, ये 9वीं तक की शिक्षा हासिल की हैं। इनका रंग गेहुआ है, चेहरा गोल है, नाक कान औसत और बाल काले हैं। लापता होते वक्त ये ब्लू जीन्स और ब्राउन टॉप पहनी हुई हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को सुजीता चौहान के बारे में यदि कोई जानकारी उपलब्ध हो तो वे उस जानकारी को दूरभाष संख्या 9026016106 पर सूचित कर सकते हैं। ग्राम व पोस्ट बेरुकी जमदरा थाना हल्दरपुर जनपद मऊ से मधु पांडे के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। मधु पांडे की उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच है। ये लापता होते समय हरे रंग का साड़ी पहनी हुई है। यदि मधु पांडे के बारे में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी प्राप्त हो तो वे उस जानकारी को मोबाइल संख्या क्रमशः 9793609883 और 7385433602 पर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।
1: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
2: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
1: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
2: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
1: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
2: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आज आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
4: और डायरेक्ट टू हार्ट
5: इट इज बोथ। अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD डायरेक्ट प्लस की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
5: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
5: दूरदर्शन DTH सर्विस DD डायरेक्ट प्लस।
4: फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में आज की कलाकार हैं अनीता सिंह। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं कुछ लोकगीत।

अनीता सिंह के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। देश हमारे कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कमलेश कुमार राय का भोजपुरी काव्य पाठ।

अभी आप सुन रहे थे कमलेश कुमार राय से उनके भोजपुरी काव्य पाठ। इसी के साथ देसमर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक लोक संगीत के कार्यक्रम मस्तबक में आज आप सुनेंगे मालवी निवाड़ी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे मालवाड़ी मालवी लोकगीत। इसी के साथ प्रादेशिक लोक संगीत का कार्यक्रम अस्तबक अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रजनीश पांडे की वार्ता। विषय है अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां। रात 8:15 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात 9:30 पे। रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण होगा हमारे दिल्ली केंद्र से रात 10:00।

कृपया एक बार और सुन लें। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे केंद्र से प्रसारित होगा शाम 7:31 पर और सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:15 पर।

ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात की शाम के 7:70 और 40 सेकंड हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में।

0: स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य वैज्ञानियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा युवाओं को कौशल के अनुरूप अवसर दे रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रयागराज, कल रक्षा तकनीक पर आधारित नॉट टेक सिंपोजियम का करेंगे शुभारंभ। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को बचाने में मिली सफलता, प्रशासन और SDRF की टीमों ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि राज्य में पिछले 9 वर्षों के दौरान 9 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये किसी भी प्रदेश में सर्वाधिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का रिकॉर्ड है और सभी नियुक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार के साथ साथ उनकी दक्षता के अनुरूप अवसर प्रदान करना डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता है।
2: नौजवान को रोजगार के साथ साथ उसकी प्रतिभा का लाभ ले सकें, इस सरकार के स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है और डबल इंजन सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास ये प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार का हिस्सा भी है कि नौजवान को अधिक से अधिक नौकरी मिले। हम सरकारी क्षेत्र में भी देंगे। बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं है, वो अपने तरीके से अपना स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करें, अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करें, उनके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज प्रयागराज पहुंच गए हैं। श्री सिंह आज शाम अरैल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि कल रक्षा मंत्री नॉटेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ करेंगे। ये संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी और मध्य कमान तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा आयोजित की जा रही है। इस आयोजन का उद्देश्य फील्ड तैनाती, रखरखाव प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की पहचान करना और खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नॉटेक सिंपोजियम रक्षा बलों, वैज्ञानिकों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक समुदाय के बीच एक सेतु के रूप में काम करने की पहल है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता को मजबूत करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रदेश के सभी जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और चयनित 60 जनपदों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का सफल क्रियान्वयन खरीफ 2016 से बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। इसी क्रम में कल सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खरीफ 2025 और रवि 2025-26 की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि का वितरण किया जाएगा। एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत प्रयागराज के समोसे को जनपद का आधिकारिक सिग्नेचर डिश घोषित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य हर जिले के एक विशेष व्यंजन को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान देना है। सहायक आयुक्त उद्योग सारिका सिंह ने बताया कि चयन प्रक्रिया में स्थानीय खान पान, सांस्कृतिक परंपराओं और विशेषज्ञों की राय को शामिल किया गया है।
3: प्रयागराज के हर कोने कोने में समोसे की एक नुक्कड़ पे, हर नुक्कड़ पे एक एक दुकान तो होगी ही। इसी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यहाँ से समोसा को चुना गया है। खुशी है, ODOP की तर्ज पे, जैसे ODOP में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सभी डिस्ट्रिक्ट को पहचान मिले, उसी तरीके से ODOC भी बहुत ही आगे जाएगी यह स्कीम, क्योंकि हर चीज का सवाल पेट से होता है, स्वाद से होता है, तो ये उससे भी आगे जाएगी।
1: प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ साथ उनका सम्मान करने की पहल की है। इस क्रम में आगामी 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे करीब 1,43,000 शिक्षा मित्रों को पिछले महीने से 18,000 प्रतिमाह बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ मिलना शुरू हो गया है और अब 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री सम्मान समारोह के औपचारिक शुभारंभ के साथ शिक्षा मित्रों से संवाद करेंगे। शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी से उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मानदेय में बढ़ोतरी और सम्मान की ये पहल शिक्षा मित्रों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को नई दिशा देगी। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची के सत्यापन का काम तेज कर दिया गया है। अंतिम मतदाता सूची जून महीने की 10 तारीख को जारी की जाएगी। वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की त्रुटि न होने पाए, इसके लिए सत्यापन दोबारा किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण 2025 की अनंतिम सूची दिसंबर में जारी की थी, जिसमें 12,69,00,000 वोटर्स दर्ज किए गए थे। पिछले पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के मुकाबले 40,19,000 मतदाता बढ़े हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
5: इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पुष्टि करने और पत्रकारिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए सूचना व्यवस्था मजबूत करने के व्यवहारिक तरीकों के लिए एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह दिन प्रेस की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। यह सरकारों को प्रेस की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता का सम्मान करने की याद दिलाता है और मीडिया पेशेवरों के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों पर चिंतन करने का भी दिन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ क्षेत्र के विरसड़ तप्पा थरौली गांव में पानी की टंकी पर फंसे दो बच्चों को बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन और SDRF ने बच्चों को सुरक्षित बचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया और भारतीय वायुसेना की टीम ने अत्यंत सावधानी से दोनों फंसे बच्चों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित नीचे उतार लिया। यह हादसा आज सुबह उस समय हुआ जब रील बनाने के लिए टंकी पर चढ़े 5 बच्चों में से सीढ़ी टूटने के कारण 3 बच्चे नीचे गिर गए, जिनमें एक की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। वहीं 2 बच्चे टंकी के ऊपर ही फंस गए थे। बलिया नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर घाट के पास गंगा नदी में आज सुबह मुंडन संस्कार के दौरान 2 किशोरियों समेत 4 युवक युवती डूब गए। स्थानीय गोताखोरों और SDRF टीम की मदद से 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 1 की तलाश अभी जारी है। ये सभी जिले के चितबड़ा गांव क्षेत्र से कल्याणीपुर मुंडन संस्कार के लिए यहां पहुंचे थे। उधर कौशाम्बी जिले के मंझनपुर क्षेत्र के चाकथामा गांव में सुबह घर की पुताई के लिए मिट्टी निकाल रही महिलाओं पर अचानक मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि कई अन्य महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि घटना में घायल लोगों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। रायबरेली, महाराजगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर जिलों में सुबह बारिश और आंधी से जनजीवन प्रभावित हुआ। उधर तराई क्षेत्र के पीलीभीत जिले में भी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इन जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूर्वा हवा चलने का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मौसम के इस बदलाव का असर अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आगामी 5 मई से प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना भी बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 357 कनिष्ठ औषधि विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य वैज्ञानिकों को सौंपे नियुक्ति पत्र, कहा युवाओं को कौशल के अनुरूप अवसर दे रही है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रयागराज, कल रक्षा तकनीक पर आधारित नॉटेक सिंपोजियम का करेंगे शुभारंभ। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में पानी की टंकी पर फंसे 2 बच्चों को बचाने में मिली सफलता, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने हेलीकॉप्टर के जरिए किया रेस्क्यू। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत, मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
6: .03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
7: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
8: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
9: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
8: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
9: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
8: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
9: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
7: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
10: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
11: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
11: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
10: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
11: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
10: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एके फिल्म के अंतर्गत फिल्म अनपढ़ के कुछ फिल्मी गीत। गीतों को लेकर हाजिर है आपका प्यारा रेडियो दोस्त मृत्युंजय सिन्हा।

लता मंगेशकर को सुन रहे थे फिल्म अनपढ़ में। शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की थी और संगीत मदन मोहन का था। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म के तहत फिल्म अदालत के कुछ गीत।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म अनपढ़ में। शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की थी और धुन तैयार किया था मदन मोहन ने। और आइए लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म अनपढ़ में।

आइए एक बार फिर लता मंगेशकर को सुनते हैं फिल्म अनपढ़ में। शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की है और धुन तैयार किया है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लिया है। शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की और संगीत मदन मोहन का है। फिल्म है अनपढ़।

कार्यक्रम के अंत में आइए, फिल्म अनपढ़ का ये नगमा सुनते हैं। शब्द रचना राजा मेहदी अली खां की है और संगीत मदन मोहन का है और आवाज लता मंगेशकर की है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म अनपढ़ में। गीत लिखा था राजा मेहदी अली खान ने और संगीत दिया था मदन मोहन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ FM 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे रजनीश पांडे की एक वार्ता, विषय है अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियां।

0: चंद्रकांत हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की यथार्थवादी परंपरा के एक सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उभरे।
1: उनकी कहानियां न केवल सामाजिक यथार्थ को उजागर करती हैं, बल्कि मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक परिवर्तनों की जटिलताओं को भी गहराई से चित्रित करती हैं। यशपाल ने उन्हें हिंदी साहित्य का मैक्सिम गोर्की कहा, जो उनकी रचनाओं में निहित सामाजिक संवेदना और यथार्थ के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम श्रीराम वर्मा था, लेकिन अपने साहित्यिक क्षेत्र में पहचान बनाने के लिए उन्होंने अमरकांत नाम अपनाया। यह नाम उनके बचपन में एक साधु द्वारा दिए गए अमरनाथ नाम से भी प्रेरित था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बलिया में हुई और बाद में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही साहित्य के प्रति उनकी गहरी रुचि थी और किशोरावस्था में उन्होंने कहानी लेखन शुरू कर दिया। अमरकांत का जीवन स्वतंत्रता संग्राम के दौर से प्रभावित रहा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें उनके व्यक्तित्व और लेखन को गहरे रूप से प्रभावित किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके अनुभवों ने उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संघर्ष को उकेरने की प्रेरणा दी। अमरकांत जी के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके व्यक्तिगत संघर्ष की अहम भूमिका थी। उन्होंने कभी भी परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके। हर हाल में वे एक आम व्यक्ति की तरह संघर्ष करते रहे, शोषण का शिकार होते रहे और पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन के लिए हर तरह के कष्टों को गले लगाते रहे। उनका यही भोगा हुआ यथार्थ उनके कथा साहित्य में अपनी पूरी समग्रता के साथ प्रस्तुत हुआ है। उनके व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण बात थी ईमानदारी। अमरकांत ने हमेशा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। वे कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन कार्य से जुड़े रहे, इसके बावजूद वे अवसरवादी नहीं बने। वे अपने अंदर एक सीमा के निर्धारण के साथ जीते रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने स्वयं भी कभी उस सीमा का उल्लंघन नहीं किया। अमरकांत बाहर से जितने सुलझे वह सहज लगते हैं, वास्तव में अंदर से वे उतने ही उलझे और परेशान रहते थे। कारण यह था कि वे अपनी परेशानियों को अपने तक रखना पसंद करते

0: लेखक संघ की गोष्ठियों में भाग लिया। इन गोष्ठियों ने उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को निखारा। हालांकि 1954 में हृदय रोग के कारण उन्हें पत्रकारिता छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वे लखनऊ चले गए। इस कठिन दौर में भी उन्होंने लेखन को नहीं छोड़ा। उनकी रचनाएं सामाजिक यथार्थ को और भी गहराई से उजागर करने लगीं। अमरकांत की रचनाएं हिंदी साहित्य में यथार्थवादी धारा की एक मील का पत्थर हैं। अमरकांत की कहानियां मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय जीवन की वास्तविकता को उनके केंद्र में रखती हैं। उनकी रचनाएं सामाजिक परिवर्तनों, आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार और मानवीय मूल्यों के हास जैसे विषयों को गहराई से उजागर करती हैं। अमरकांत की कहानियां प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन उनकी अपनी मौलिक शैली है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमरकांत प्रेमचंद को दोहराते नहीं, बल्कि उनसे एक कदम आगे की बात करते हैं। उनकी कहानी जिंदगी और जोंक इस बात का उदाहरण है कि वे कैसे सामाजिक यथार्थ को सूक्ष्मता से चित्रित करते हैं। इस कहानी में रजुआ पात्र के द्वारा निम्न मध्यवर्गीय समाज के मनोविज्ञान को दर्शाया गया है, जो पाठक को गहरे भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करता है। राजेंद्र यादव ने इस कहानी के बारे में लिखा, मैं आज तक तय नहीं कर पाया कि जिंदगी और जोंक जीवन के प्रति आस्था की कहानी है या जुगुप्सा आस्थाहीनता और डिसगस्ट की। यह टिप्पणी उनकी कहानियों की जटिलता और गहराई को दर्शाती है। अमरकांत की कहानियां मध्यवर्ग के जीवन की विसंगतियों को उजागर करती हैं। उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी में नौकरी और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह में डूबे एक व्यक्ति की व्यथा को दर्शाया गया है। यह कहानी न केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है। उनकी कहानी हत्यारे में सामाजिक और राजनीतिक मूल्यों के ह्रास को चित्रित किया गया है, जिसमें वे नेतृत्व और छात्र राजनीति की विडंबनाओं पर प्रश्न उठाते हैं। कहना न होगा कि भारतीय साहित्य और समाज के संदर्भ में अमरकांत ने नई कहानी लेखन में भारतीयता और कहानी कहने की कला दोनों रूपों को अपनी कहानियों की सर्जना में प्रकट किया। गौर किया जाए तो दो विभिन्न कालखंड में पैदा होने के बावजूद प्रेमचंद कहानी लेखन में जितने पठनीय और प्रभावशाली हैं, उतने ही पठनीय और मननीय अमरकांत नई कहानी आंदोलन के दौर में हमेशा बने रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह भारतीयता की वह जमीन है जहां से अमरकांत कहानी लिखने की प्रेरणा पाते हैं। दूसरी वजह उनके कहानी में कहानीपन की अनिवार्यता। मेरा ख्याल है कि मुख्य रूप से यही दो तत्व हैं जो उन्होंने प्रेमचंद की विरासत से सीख कर अपनी कहानी संसार में इसकी खास तौर से निशानदेही की। जहां भारतीयता का आशय धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत है, अमरकांत की कहानियां आम आदमी के जीवन, उसकी आकांक्षाओं, निराशाओं और संघर्षों को केंद्र में रखती हैं। उनकी कहानी दोपहर का भोजन में एक गरीब परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी को इतनी सहजता से दर्शाया गया है कि पाठक उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। अमरकांत ने आम आदमी को और उसके व्यक्तित्व की द्वंद्वात्मकता को अपनी कहानियों का केंद्र बिंदु बनाया है। अमरकांत की कहानियों का शिल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनकी भाषा सरल, सहज और जीवंत है, जो पाठक को तुरंत अपनी ओर आकर्षित करती है। वे आंचलिक मुहावरों और शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनकी कहानियों को स्थानीयता का रंग प्रदान करती है। उनकी कहानियां कथानक प्रधान होने के साथ साथ चरित्र प्रधान भी हैं, जहां पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण गहराई से किया जाता है। हालांकि कुछ आलोचकों ने अमरकांत की कहानियों में पात्रों के संघर्ष की कमी को रेखांकित किया है। विश्वनाथ त्रिपाठी और राजेंद्र यादव ने इस बात पर सवाल उठाया कि अमरकांत के पात्र सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष क्यों नहीं करते। यह आलोचना उनकी रचनाओं की निष्क्रियता को दर्शाती है, लेकिन यह भी तथ्य है कि अमरकांत का उद्देश्य यथार्थ को यथास्थिति में प्रस्तुत करना था, न कि उसे बदलने की प्रेरणा देना। उनकी कहानियां सामाजिक यथार्थ को आईना दिखाने का काम करती हैं, न कि आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत करने का। अमरकांत की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार और मानवीय मूल्यों के ह्रास जैसे मुद्दों को उजागर करती हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
1: अमरकांत का जीवन और उनकी कहानियाँ अभी आप सुन

रहे थे ये वार्ता, वार्ताकार थे रजनीश पांडे। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, लीजिए सुनिए देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, मीडियम 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।

0: बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ, लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:44:35 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
8: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना

ही है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Kerala, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing Punjab Kings at Ahmedabad in another fixture. And now the news in detail. All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam, and the Union Territory of Puducherry, to be held tomorrow. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of postal ballots will be taken up first, and counting of electronic voting machines will start at 8:30 a.m. Early trends are expected to emerge by noon. Election Commission has put in place robust security arrangements for smooth counting in 4 states and 1 Union Territory. Voting for all 126 seats in Assam, 140 in Kerala and 30 seats in Puducherry was held on the 9th of April. Polling for all 234 assembly constituencies in Tamil Nadu and for the first phase in West Bengal covering 152 seats was held on the 23rd of April. Voting for the second phase in West Bengal took place on the 29th of last month for 142 constituencies. In West Bengal, counting will take place across 77 centres. We have more from our correspondent.
3: After an intense campaign and record voter participation, all eyes are now on tomorrow's verdict, which will decide who governs West Bengal for the next 5 years. According to the Election Commission, postal ballots will be counted first, followed by electronic voting machines in multiple rounds. Results for 293 constituencies are expected through the day, while the remaining Faltha constituency will go for the fresh polling later this month. Central forces, state police personnel and election officials deployed to ensure a smooth and transparent counting process. CCTV surveillance and multi-layer security arrangements have been put in place at strong rooms and counting halls. Early trends are expected within the first few hours of counting, while the final picture may be emerged by evening. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Assam, the fate of 722 candidates will be decided tomorrow. Our Guwahati correspondent has filed this report.
4: In Assam, elaborate multi-layered security arrangements have been put in place to ensure a smooth and transparent counting process in the state. The entire exercise will be closely monitored by 126 counting observers. They will be supported by nearly 6,000 counting personnel and over 2,300 micro-observers deployed across the state. Assam Chief Electoral Officer Anurag Goel has described the 2026 assembly elections as historic, with Assam witnessing a single-phase poll after nearly 3 to 3.5 decades. He also added that the election recorded the highest voter turnout in the last 5 assembly polls, reflecting strong public participation in the democratic process. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: Moving on to the southern part of India, in Kerala.

0: है आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति आकाशवाणी।
1: समय की तरंगों पर तैरती एक ऐसी आवाज जिसने 9 दशकों तक भारत के हृदय की धड़कन को शब्द दिए हैं। आज जब आकाशवाणी अपनी यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रहा है तो हम लौट रहे हैं उस विरासत की ओर जहां स्वर और शब्द मिलकर राष्ट्र की चेतना जगाते थे।
2: ये आकाशवाणी है।
1: ये शब्द सिर्फ एक सूचना नहीं, एक संस्कृति की धड़कन है। जब किताबें कुछ ही लोगों की मेज तक सीमित थी तो इस आवाज ने बंद दरवाजों को खोलकर साहित्य और संस्कृति को आम आदमी के चूल्हे चौके और बैठक तक पहुंचाया।
3: एक ऐसा मंच जहां शब्द पन्नों की एक कैद से आजाद होकर सीधे हिंदुस्तान के दिल में उतर गए। 90 साल और एक अटूट रिश्ता, ये कहानी है आकाशवाणी और भारतीय साहित्य के साथ संस्कृति के उस मिलन की जिसने भारत की सोच को गढ़ा।
4: साहित्यकार जो देना चाहता है वो अनेक आगत युगों तक रहेगा और उसकी रचना कालजयी हो सकती, समय की सीमा को पार करती है। साहित्यकार को जीवित रखने के लिए उसके सृजनात्मक शक्ति को अक्षय रखना होगा।
1: यह आवाज थी कवयित्री महादेवी वर्मा की। 50 और 60 के दशक में आकाशवाणी के गलियारे भारत के साहित्यिक संसद जैसे थे। यहाँ निराला अपनी गूंजती आवाज में कविता पढ़ते थे तो बच्चन अपनी मधुशाला की रूह उतारते थे।

0: ये थी हरिवंश राय बच्चन के स्वर में उनकी कृति मधुशाला की कुछ पंक्तियां।
1: पद्मश्री से सम्मानित हिंदी पत्रकार और लेखक विजय दत्त श्रीधर का मानना है कि साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ भाषा और विषयों के चयन को लेकर आकाशवाणी ने अपनी अनूठी पहचान दशकों से कायम रखी है।
2: आकाशवाणी का भारत के जनजीवन में लोक प्रसारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है और उसका महत्व जब अकेला प्रिंट मीडिया था सामने तब भी बरकरार था, टेलीविजन मीडिया आया तब भी बरकरार रहा, अब सोशल मीडिया और निजी चैनलों की बाढ़ आ गई है तब भी आकाशवाणी का महत्व बरकरार है और इसका कारण है उसकी विश्वसनीयता, उसकी भाषा में, प्रस्तुति में, विषयों के चयन में संयम है, एक सुसंस्कृति है। फिर आकाशवाणी ने कई बहुत अद्भुत काम किए, पहले किसानों की, विज्ञान संबंधी, युवाओं के लिए कितनी सारी जानकारियां ये नियमित रूप से आकाशवाणी समाज तक पहुंचाता रहा है।
0: कई साहित्यकारों के लिए आकाशवाणी एक संस्कार रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखिका ममता कालिया अपनी यादों को साझा करते हुए कहती हैं,
3: मुझे सन 50 का जमाना याद आ रहा है जब मैं 9 साल की थी। मेरे पिता ने तब आकाशवाणी ज्वाइन किया। मेरे पिता का नाम था श्री विद्या भूषण अग्रवाल और मेरे चाचा भी रेडियो में थे, उनका नाम था श्री भारत भूषण अग्रवाल और विख्यात कवि थे वो। और मेरी साहित्य की यात्रा में रेडियो ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और देखो, रेडियो कहता था इस बार कविताएं ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप कविताएं लिख के लाइए, तो रेडियो की वजह से मैंने 10-10 कविताएं लिख दी। मेरी भाषा में जो आज सरलता है जिसके कारण शायद लोग पढ़ लेते हैं मुझे, मुझे याद है कि बचपन में जैनेन्द्र कुमार तक ऐसे थे कि वो अपनी कहानी लिख के पापा को दिखाते थे कि देख लो रेडियो के लायक है कि नहीं, इसमें कोई कठिन शब्द तो नहीं है। पापा हमेशा कहा करते थे कि भाई रेडियो की भाषा सरल भाषा होनी चाहिए। विष्णु प्रभाकर के नाटक देखिए, रेडियो से ही वो इतने विख्यात साहित्यकार बने, क्योंकि रेडियो में जो था कि उनकी कहानी नाट्य रूपांतर हुआ था और वो जा न सकी। गृहस्थी नाम की कहानी थी उनकी जो अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में प्रथम आई थी, उसी पर रेडियो का नाटक बना और वो नाटक जाने कितनी बार खेला गया। मैंने ही अनुवाद किया था जब मैं एमए में आई तो मैंने डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लो का जो प्ले है दिल्ली स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ, वो बहुत सुना गया। आप समझो उस समय आकाशवाणी एक गढ़ था कि जो भी अच्छी रचना है तो सबसे पहले सोचते थे इसको रेडियो को दे दे।
1: बहुत सारे श्रोताओं को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि साहित्यकारों को भी आकाशवाणी में ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वरिष्ठ साहित्यकार अब्दुल बिस्मिल्ला एक ऐसा ही अनुभव साझा करते हुए कहते हैं,
4: आकाशवाणी से संबंध बना तब मुझे लगा कि ये तो केवल गाने तक सीमित नहीं है भाई, और केवल समाचार तक सीमित नहीं है, और सामान्य जनता जो है वो गानों पर, लोकगीतों के बड़ी बहार थी सर, इसमें साहित्य भी कहीं होता है ये तो हमें पता ही नहीं था। ये तो तब पता चला जब पहली बार मुझे ही जब पहली बार बुलाया गया, ये बात मैं कर रहा हूँ 74 से 80 के बीच का कोई सन रहा होगा कि जबकि बनारस में रेडियो स्टेशन खुला। अच्छा, रेडियो में तो ये भी था कि समय के आधार पर उतने समय में वो समाप्त हो जाए। मेरी कहानी पहुंची जब वहाँ तो डायरेक्टर साहब ने मुझे बुलवाया, इसमें फिर ऑडिशन होता है, कहानी हमारी उनके पास थी ही, कहा कि इसको कुछ नहीं करना, पढ़ना है आप और इतने मिनट में इसको खत्म करना है। तो पता चला हर तीसरे महीने में बुलाया जाने लगा वहाँ, तो कभी कविता पाठ, तो कभी कहानी पाठ, कभी वार्ता के लिए कोई विषय दे दिया, कभी कोई बड़ी हस्ती पहुंच गए तो कहते थे साहब इंटरव्यू आप ले लीजिए। इसके बाद तो फिर साहब फिर वो इतने प्रसारण शुरू हो गए और मुझे यह देखकर वाकई प्रसन्नता हो रही है कि वो आज भी जारी है, जबकि जैसा कि लोग कहते हैं कि अब तो आ गया मोबाइल का युग, लेकिन इसके बावजूद भी आकाशवाणी न केवल सक्रिय है बल्कि ये भी भूमिका को अदा कर रहा है और आज भी साहित्य को महत्व उतना ही दे रहा है। आप लोगों के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम इसका भाग रहे हैं, हिस्सा रहे, अंग रहे हैं।
0: आकाशवाणी के जरिए साहित्य सिर्फ महानगरीय हिंदी तक सीमित नहीं रहा, आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारतीयता के असली रंग बिखेरे। जालंधर से हीर रांझा की गूंज हो, कोलकाता से टैगोर की रचनाएं, या चेन्नई से संगम साहित्य की चर्चा, आकाशवाणी ने भारत को एक सूत्र में पिरोया।
1: आकाशवाणी का ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन सर्वभाषा कवि सम्मेलन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास रहा है, जिसका प्रसारण 1956 से होता आया है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आकाशवाणी सर्वभाषा कवि सम्मेलन का हिस्सा रहे वरिष्ठ साहित्यकार और कवि अब्दुल बिस्मिल्ला अपने अनुभवों को कुछ यूं साझा करते हैं।
4: 26 जनवरी जो होती है उस पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ये आकाशवाणी कराता था, हमको इसकी जानकारी थी नहीं। तो जो कविता हमारी चुनी गई थी वो कविता हमें भेजी गई और हमसे कहा गया कि आप इसका अंग्रेजी अनुवाद, तो अंग्रेजी अनुवाद जरूरी होता है क्योंकि वो अंग्रेजी से फिर वो विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होता है, यानी हर भाषा की कविता का हर भाषा में अनुवाद होता है।
1: उत्तर पूर्व से लेकर पूरे देश तक आवाजों को जोड़ने वाला सेतु रहा आकाशवाणी। कवि और नाटककार राजीव कुमार फुकन के अनुभव इसे और खास बनाते हैं।
5: बचपन से ही रेडियो पर प्रसारित होने वाली कविताएं, नाटकों और साहित्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता गया। लेखन के दौरान रेडियो पर प्रसारित होने वाली नाटक, उनकी कहानियां और पात्र मेरे मन में बसे रहती है। अखिल भारतीय रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे भारत का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित होता है। जब मेरी कविताएं या नाटक अखिल भारतीय रेडियो पर प्रसारित होते हैं तो मुझे उनका जीवंत रूप दिखाई देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र के लोगों का आकाशवाणी से गहरा जुड़ाव रहा है और यह आज भी कायम है।
1: सिर्फ कविता कहानी ही नहीं, हवा महल और झलकी जैसे कार्यक्रमों ने कहानी कहने की कला को पुनर्जीवित किया। रेडियो नाटकों ने अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों को उस व्यक्ति तक पहुंचाया जिसने कभी थिएटर नहीं देखा था।
0: और इन सब से लोगों में पढ़ने की ललक जगी। रेडियो पर सुनी गई कहानियों ने पुस्तकालयों की कतारें लंबी कर दी। आकाशवाणी सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि एक ऐसी पाठशाला रही जहां कलाकारों को तराशा गया।
1: नाटकों के माध्यम से अपना करियर शुरू करने वाले और बाद में टीवी और फिल्मों में लोकप्रिय अभिनेता बने राजीव वर्मा अपने शुरुआती दिनों को कुछ यूं याद करते हैं।
6: पहले तो मैं आकाशवाणी को ही धन्यवाद करना चाहूंगा कि इसने मेरे रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा के जो मेरा एक लंबा अरसा रहा है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान मैं आकाशवाणी का मानता हूँ। आकाशवाणी ने मेरी आवाज को, मेरे तलफ्फुस को, उच्चारण को और मेरी जो एक अभिव्यक्ति की जो एक कला है उसको जो परिमार्जन किया है आकाशवाणी ने ही किया है। आकाशवाणी से मेरा संबंध मुझे लगता है कि 1967 से है। 67 में मैं यहाँ ऑडिशन दिया था और उसके साथ फिर युवावाणी में भी मैं काफी काम किया हूँ एक कैजुअल अनाउंसर की तरह। तो ये मैं ये समझता हूँ कि मेरे व्यक्तिगत जीवन की और मेरे व्यक्तित्व के निर्माण और परिमार्जन की सबसे बड़ी जो शिक्षा मुझे मिली है वो आकाशवाणी से मिली है। और उस समय यानी हम लोगों को शहर में और कहीं भी अगर जाते थे तो आकाशवाणी के कलाकार के नाम से जाना जाता था। मुझे ये सौभाग्य रहा कि मैं कुछ साल दिल्ली में भी रहा, कुछ साल बल्कि काफी साल मैं 4-5 साल इंदौर में रहा और बंबई में तो 30-35 साल गुजारे। मैंने सारी जगह मैं आकाशवाणी विविध भारती से कनेक्टेड रहा और लगातार मैं वहां जाता रहा। तो ये नशा जो है ये खत्म नहीं हो सकता, श्रोताओं के दिमाग से भी ये सबसे बड़ी बात है।
1: एक दौर था जब शास्त्रीय संगीत महफिलों तक सीमित था, लेकिन आकाशवाणी ने इसे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के माध्यम से वैश्विक पहचान दी। खजुराहो हो या कोणार्क, हर बड़े उत्सव की गूंज आकाशवाणी के माध्यम से करोड़ों कानों तक पहुंची।

0: सुतगण।
1: प्रख्यात ध्रुपद कलाकार पद्मश्री उमाकांत गुंदेचा बताते हैं,
2: मैं और मेरा छोटा भाई रमाकांत, हम दोनों भाई जो हैं वो 1985 में जो है हमने पहला ऑडिशन दिया था और उस समय हमें सीधा बी हाई ग्रेड मिला था। उस समय बी हाई एकदम डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात होती, ये हम लोगों की भी खुशकिस्मती रही कि फिर कहीं हम लोग गए ही नहीं। मैंने यहाँ इस आकाशवाणी से शुरुआत किया और अभी तक हम इसी आकाशवाणी से यानी आकाशवाणी भोपाल से हम लोग जुड़े हुए हैं। आकाशवाणी का अपना जो स्टाफ कलाकार स्टाफ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का रहा है कि जो अच्छे अच्छे कलाकार जिन्होंने रेडियो आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दी हैं और सेवाएं देकर के जो है उन्होंने अपना घर भी चलाया है, उस तरीके से उनकी कला को भी एक बल मिला है। तो मैं समझता हूं कि आकाशवाणी का प्रसारण होने वाला कार्यक्रम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कलाकार समाज को इकट्ठा करके कलाकारों को जो है यहाँ पर रखा।
1: भारत के महान शास्त्रीय गायक या गायिकाएं, चाहे ध्रुपद हो, ख्याल हो या

0: उमरी, हर कलाकार की एक ही चाह, आकाशवाणी का ग्रेड। आकाशवाणी का ग्रेडेशन सिस्टम केवल एक प्रमाण पत्र नहीं, बल्कि कलाकार के लिए सम्मान की सबसे बड़ी मुहर बन गया। ए ग्रेड या टॉप ग्रेड कलाकार होना भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक तपस्या की सिद्धि जैसा माना जाता है। उस्ताद अमजद अली खान,
1: ऑल इंडिया रेडियो का बहुत पुराना संबंध है मेरा। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी के साथ ग्वालियर से आता था यहाँ। उस वक्त पिताजी को टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थे वो, ऑल इंडिया रेडियो के 150 रुपया मिलता था। अर्ली 60s की बात है, दैट वाज द हाईएस्ट फी ऑफ ऑल इंडिया रेडियो टॉप ग्रेड म्यूजिशियंस।

0: दिल्ली के भव्य स्टूडियो से दूर आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रों ने भारत के असली हृदय यानी लोक संस्कृति को जीवित रखा। आकाशवाणी के लोक संगीत कार्यक्रमों ने यह साबित किया कि भारत केवल राज्यों का समूह नहीं बल्कि लोक संस्कृतियों का एक अटूट सूत्र है।
1: गुणवत्ता को सर्वोपरि रखते हुए हर तरह के कार्यक्रमों को जगह देना, हर वर्ग के श्रोताओं को अपने साथ जोड़ना आकाशवाणी की सबसे बड़ी ताकत रही है। पद्मश्री से सम्मानित गायिका मालिनी अवस्थी कहती हैं,
2: 2:30 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम प्रतिदिन आकाशवाणी से होता था। अब वक्त बदल गया होगा शायद, वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए। अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहाँ भी यहाँ भी, वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे खाटी कलाकार गाते थे, तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं। लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहाँ के पारंपरिक लोक कलाकार, उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे और मुरारी लाल जी को भी सुनते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता, सुबह 7:15 बजे दिल्ली आकाशवाणी से होता था, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उसको फिल्म में के स्वर आरोह अवरोह पकड़ो, फिर एक वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा, सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर नहीं था।
0: कुछ ऐसे कार्यक्रम जिन्होंने इतिहास रचा, वंदना के भक्ति स्वर हूँ, विविध भारती का रंगारंग सफर, संगीत सरिता, संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम, रेडियो रूपक या फिर रेडियो नाटक, इन कार्यक्रमों ने कला और संस्कृति को आम आदमी की भाषा में पिरोया। शास्त्रीय संगीत और खासकर कर्नाटक म्यूजिक को गरिमा प्रदान करने में आकाशवाणी ने महती भूमिका निभाई है। भारत के कई आकाशवाणी केंद्रों में बतौर प्रशासक और प्रसारक जुड़े रहे डॉक्टर वागीश शास्त्री, जो अपने आप में बड़े संगीतज्ञ रहे, उनके अनुभव किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
3: मुझे बड़े बड़े कलाकारों से मिलने का मौका जरूर मिला, रविशंकर जी, विजय राघव राव जी, हाफिज अहमद खान साहब, सुमति मुटाटकर जी, कर्नाटक म्यूजिक में डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा, शमंगुड़ी श्रीनिवास अय्यर, जी एन बाल सुब्रमण्यम, श्रीरंगम गोपाल रत्नम, संध्यावंदनम श्रीनिवास राव, टी के गोविंद राव, येमिनी शंकर शास्त्री, महान कलाकार आकाशवाणी के साथ जुड़े थे। ये तम वाद्य वृंदा भी एक हिंदुस्तानी यूनिट दिल्ली में और चेन्नई में एक कर्नाटिक यूनिट साउथ इंडियन म्यूजिक बेस करके, तो उसमें पूर्ण चंद्र राव, कामा शास्त्री, येमिनी शास्त्री, शंकर शास्त्री, ऐसे लोग उधर काम किया। दिल्ली में सचदेव पवार जी जैसे लोग भी, उसका कंडक्टर जैसे काम किया और बहुत सारे

0: Hello there, listeners. Welcome to the magical world of music.
1: Those were such happy times and not so long ago.
0: Come, dream away in a session of Western music where we try to dream a rainbow to every cloud.
1: But they're back again, just like a long lost friend.
2: आकाशवाणी ने जहां भारतीय संगीत की परंपराओं को सहेजा, वहीं पाश्चात्य संगीत के श्रोताओं के लिए भी हमेशा कुछ नया, कुछ अनूठा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यही वजह रही कि एक समर्पित श्रोता वर्ग आकाशवाणी के पाश्चात्य संगीत कार्यक्रमों को सराहता आया है। इन्हीं प्रयासों की कहानी वरिष्ठ प्रसारक और आकाशवाणी की पाश्चात्य संगीत इकाई से जुड़े रहे मनोज माइनकर अपने अनुभवों के जरिए कुछ यूं साझा करते हैं।
3: न सिर्फ भारतीय कला संस्कृति बल्कि विश्व की कई विधाओं को भी आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक पहुंचाया है सुलभ अंदाज में। आकाशवाणी में पाश्चात्य संगीत जैसे विधा से मेरा संबंध लगभग 37 वर्षों का रहा है। मेरे कार्यकाल के दौरान 1989 में जब मैंने ज्वाइन किया था आकाशवाणी, मैं उन लोगों के भी संपर्क में आया जिन्होंने मुझसे पहले शायद 37 या 37 से ज्यादा समय इसी क्षेत्र में बिताए थे। आकाशवाणी के पास वेस्टर्न म्यूजिक की जितनी वैरायटी, जितनी विधाएं, जितनी उपविधाएं रही हैं और हैं, उतनी संभवतः किसी अन्य चैनल पर आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। अच्छा, बात सिर्फ वेस्टर्न क्लासिकल की नहीं है, वेस्टर्न म्यूजिक में बहुत सारी विधाएं हैं और आकाशवाणी पॉप से लेकर रॉक, फिर रॉक की उपविधाएं, जैज, कंट्री, डिवोशनल, वर्ल्ड म्यूजिक, न जाने कितने तरह का संगीत अपने श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करता था। कुछ कार्यक्रम ऐसे थे, अ डेट विथ यू, फोर्सेस रिक्वेस्ट्स, या युवाणी चैनल पर संडे रिक्वेस्ट्स, और प्रस्तुतिकरण का अंदाज, एक इनफॉर्मल स्टाइल जो होता है, वो एफएम के आने से पहले भी रहा है पाश्चात्य संगीत अनुभाग के कार्यक्रमों में। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो सार हमारे पूरी कार्यप्रणाली में निहित है, हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक का बुके रहा है, वो उसका एक बहुत ही खूबसूरत एक सिंबल है, एक सूचक है। ये प्रवाह थमने वाला नहीं है।

0: इंडी पॉप जैसी विधा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली आवाज उषा उथुप के लिए आकाशवाणी एक गाइड, साथी और प्रेरणा रहा है।
1: हमारे दिनों में तो आकाशवाणी सुनती थी, ऑल इंडिया रेडियो, इसी से मैं बड़ी हुई हूँ। मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ दैट रेडियो इज माय कंपेनियन, माय इंस्पिरेशन, माय गाइड, माय एवरीथिंग। अगर रेडियो ना होता तो इट वुड बी इम्पॉसिबल। द रेडियो इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम इन द होल वर्ल्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट वी हैव ऑल इंडिया रेडियो। हमारी फेवरेट प्रोग्राम थी मधुर गीतम, जिसमें सारे लैंग्वेजेस होते थे, मलयालम, तेलुगु, फिर कन्नड़ा, तमिल, सब होता था। तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट एंड फौजी भाइयों की फरमाइश, दैट वाज माय फेवरेट प्रोग्राम।
2: फिल्मों और फिल्मी गानों को हिट कराने में भी आकाशवाणी का कोई सानी नहीं रहा है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक केसी बुकाड़िया बीते दौर को कुछ यूं याद करते हैं।
3: आकाशवाणी ने हमेशा हम लोगों के गाने बजाए, उन गानों के माध्यम से, इनके माध्यम से गाने लोगों तक पहुंचते रहे, गाने हिट हुए और हिट होने की वजह से फिर लोग पब्लिक सिनेमा हॉल में आते थे। तो आपका बहुत योगदान फिल्म इंडस्ट्री में रहा है और आपको मैं फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: क्या आपने कभी रंगों को सुना है या कभी पत्थर पर चलती छेनी की संगीतबद्ध टंकार को महसूस किया है? आकाशवाणी ने इस असंभव काम को भी संभव कर दिखाया। अचरज की बात है कि एक ऐसा माध्यम जो केवल सुनाई देता है, उसने चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला को भी करोड़ों लोगों की कल्पनाओं में जीवंत कर दिया।
4: The builders of a great empire needed to establish their authority on Indian soil, to make their presence seen and felt. This is how they did it, through architecture, to leave a mark on Indian skies.
2: अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र हों या आधुनिक शिल्पकार रामकिंकर बैज की विशाल प्रतिमाएं, आकाशवाणी के रेडियो फीचर ने इन मूक कलाकृतियों को भी जबान दी।
0: आकाशवाणी के आर्काइव्स आज दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संपत्तियों में से एक हैं। महात्मा गांधी की आवाज हो या महान संगीत साधकों की दुर्लभ धरोहर, यहाँ इतिहास सांस लेता है।
2: चाहे वो बंगाल का बाउल हो, झारखंड का झुमेर, छत्तीसगढ़ की पंडवानी या दक्षिण भारत की यक्षगान शैली, आकाशवाणी ने इन विलुप्त होती कलाओं को न केवल मंच दिया बल्कि उन्हें रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए सुरक्षित भी किया। लेखक, कवि और अभिनेता के साथ साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव, कार्यकारी और अकादमिक प्रमुख सच्चिदानंद जोशी कहते हैं,
5: हम सब जानते हैं कि लोक संगीत अलग अलग क्षेत्रों में होता है, लेकिन अगर उसे व्यापकता देने का कहीं काम किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है। बुंदेली लोकगीत कौन सा हो, बघेली लोकगीत कौन सा हो, निमाड़ी लोकगीत कौन सा हो, मालवी लोकगीत कौन सा हो, वो सब लोकप्रिय कराने में आकाशवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो दूरस्थ अंचल है वहाँ पर जाने वाला माध्यम आकाशवाणी ही है, तो चाहे वहाँ पर उनकी संस्कृति को पहुंचाने का काम हो, चाहे बाहर की कोई और संस्कृति की झलक उस क्षेत्र में पहुंचाने का काम हो, तो दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर आकाशवाणी की पहुंच है। भारत की पूरी लोक गीतों की परंपरा का ये संभवतः विश्व में सबसे बड़ा आर्काइव होगा और उसमें भारत के हर प्रांत की तमाम जनजातियों के गीत संग्रहित हैं। आकाशवाणी का अपना बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक का भी बहुत अच्छा आर्काइव है, थिएटर का, नाटकों का तो निश्चित तौर पर है ही आर्काइव, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा मूर्धन्य साहित्यकार होगा जो आकाशवाणी पर नहीं आया होगा, निश्चित तौर पर उस समय तो आए ही हैं। तो ये इतना बड़ा काम सहेजने का काम आकाशवाणी करता है।
0: जाने माने साहित्यकार, व्यंगकार और पत्रकार यशवंत व्यास साहित्य और संस्कृति के नजरिए से आकाशवाणी को एक समृद्ध खजाना मानते हैं।
6: आकाशवाणी एक ऐसी बूंद है जो मन पर गिरते ही यादों को जिंदा कर देती है। कितनी ही विलक्षण आवाजें इसकी दुनिया में सुरक्षित हैं। शब्द, गीत, संवाद, संगीत, सुबह उठने की धुन और रात के आखिरी गीत, वे दिन थे जब युवाणी में कविता सुनाकर आदमी मशहूर हुआ जाता था। नाटक और खबरों की पहली और आखिरी पनाहगाह थी रेडियो की वो फ्रीक्वेंसी। अभी भी वो खजाना है, अभी भी वो सबब है तमाम शोर शराबे के बीच यादों के उजाले का। आकाशवाणी अभी भी अपने साथ रहती है उसी तरह।
2: शब्दों और आवाजों की इस विरासत ने पीढ़ियों को जोड़ा है, संस्कृतियों को सवारा है और प्रतिभाओं को पहचान दी है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि भारत की आत्मा की गूंज है। सुनते रहिए आकाशवाणी।
7: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में तीन कड़ियों की श्रृंखला में दूसरा रूपक, साहित्य और संस्कृति की सतत आवृत्ति। आकाशवाणी आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर आनंद श्रीवास्तव और नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी भोपाल, आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज प्रस्तुत है नीरज मिश्र का सितार वादन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक नीरज मिश्र बनारस घराने की सुदीर्घ समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका प्रवेश मात्र 5 वर्ष की अवस्था में हुआ, जब उन्होंने अपने पिता और गुरु सुप्रसिद्ध सितार वादक अमरनाथ मिश्र से सितार वादन की विधिवत शिक्षा आरंभ की। गहन प्रशिक्षण के पश्चात नीरज मिश्र ने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सितार में स्नातकोत्तर और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एमफिल की डिग्री हासिल की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार नीरज मिश्र ने देश विदेश में अनेक प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें संकट मोचन संगीत समारोह, गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, कबीरा महोत्सव, ICCR संगीत समारोह प्रमुख हैं। उन्होंने यूरोप और मध्य पूर्व के देशों में भी सितार वादन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें इटली, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शामिल हैं। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत की है आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड कलाकार देव नारायण मिश्र ने। नीरज मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग दरबारी में आलाप, जोड़ और झाला से कर रहे हैं। विलंबित मसीद खानी गत, मध्य लय और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स एडिशन ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय नीरज मिश्रा, अ डिस्टिंग्विश्ड एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड सितार माइस्ट्रो representing the rich cultural and musical heritage of renowned Banaras Gharana. Born in Varanasi, Neeraj Mishra's formal initiation into the world of music began at early age of 5 under the able guidance of his father and guru, Amarnath Mishra. Later on, Neeraj Mishra earned his Prabhakar from Prayag Sangeet Samiti and completed M.Muse in Sitar from Banaras Hindu University and M.Phil from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. An A-grade artist of Akashwani, Neeraj Mishra has performed in various prestigious festivals across India and abroad, such as Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Kashi Ganga Mahotsav, Taj Mahotsav, Kabira Festival, ICCR Horizon Series, World Cultural Festival in India, and has captivated audiences across Europe, Middle East, Italy, Switzerland and France. In tonight's program, accompanying him on tabla is Dev Narayan Mishra, a B high grade artist of Akashwani. Neeraj Mishra is beginning his sitar recital tonight with Alap Jod Jhala in Rag Darbari. Vilambit Masit Khani Gat, Madhilay and Drut Gat is set to 3 Taal.

0: आपने सुना राग दरबारी। नीरज मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री में सितार वादन। विलंबित मसीद खानी गत 3 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग दरबारी। नीरज मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग बागेश्री। विलंबित मसीद खानी गत इज इन 3 ताल, मध्य लय इज इन 1 ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू 3 ताल।

0: राग बागेश्री के पश्चात नीरज मिश्र आज अपने कार्यक्रम का समापन सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग बागेश्री, नीरज मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र भैरवी।

0: आप सुन रहे थे सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र भैरवी में धुन। कलाकार थे नीरज मिश्र। आज के रविवासरीय संगीत सभा में आपके साथ तबले पर संगति की देव नारायण मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र भैरवी प्लेड ऑन सितार बाय नीरज मिश्रा इन टू नाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Accompanying him on tabla was Dev Narayan Mishra. Recorded earlier at Akashvani Varanasi, this program came to you from Delhi station of Akashvani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरला में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।